आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन में राहें उलझ जाएं और दिशा समझ ना आए तो प्रभु का नाम ही सही मार्ग दिखाता है।

और समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपसे लेती हूं अनुमति, छोड़ जा रही हूं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि तदनुसार 2 मई 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको जानकारी दें, आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पे कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। 6:10 का समय रहेगा प्रोग्राम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

12:10 का समय होगा प्रोग्राम घर आंगन का। दोपहर एक बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

दोपहर 3:25 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते।

शाम 7:25 का समय रहेगा प्रोग्राम सांझ ढले का। 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरी माँ। रात्रि 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हार सिंगार का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर

0: सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
3: The Election Commission of India has ordered re-polling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The re-polling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
2: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG lead at refineries and we increased our domestic production by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force 4 years ago, has created a transformational opportunity for Indian farmers, MSMEs and other businesses. In a social media post, Mr. Goyal noted that bilateral merchandise ties between India and UAE have grown strongly, crossing $100 billion, with services trade also rising steadily and opening new markets and greater value. The minister also highlighted that expansion across key sectors like gems and jewellery, engineering goods, electronics and agriculture is delivering tangible gains. He underlined that the foreign direct investment inflows from the UAE and India's overseas investments further reflect the deepening economic linkages of the two nations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. Today, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। समय नोट कर लें, 6:11 और 57 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में यही समय हुआ है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूं आज सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, यानी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।

6:32 वक्त हो चला है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ और आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता।

शिव जी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, और अब समय हो चला है कि हम जाने देश दुनिया का हाल और सुने समाचार, पहले संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 7:10 पर एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर, और प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। तो फिलहाल समय है समाचार का, आइए सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए

0: एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कोलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The Election Commission has ordered for repolling in 15 polling stations of West Bengal today. Repolling is being held at 11 polling stations of Mogarhat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country.

मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, 1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से था ये सॉन्ग। शमी कपूर, बबीता स्टारर इस फिल्म में, अम्बा लक्ष्मण राव शगुन जी ने किया था डबल रोल सरोजनी देवी और सरिता का। उप्स, कंफ्यूज हो गए ना आप। हम बात कर रहे हैं ललिता पवार जी की, जिन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती की 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अनाड़ी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब देखिए, डबल रोल की बात चल ही रही है तो किशोर कुमार लता मंगेशकर का ये डुएट एंजॉय करते हैं 1972 की फिल्म सीता और गीता से, जिसमें हेमा मालिनी जी का डबल रोल था।

हल्के बादल छाएंगे पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा। जी हाँ, ये है आज के मौसम का हाल। और ये गर्मी सिर्फ हमें नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बेहाल कर रही है। थोड़ी सी छांव, खाना और पानी, बस इन्हें हमसे इतनी सी दरकार है। अब आप सोचिए कि आप इन बेजुबानों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप हेल्प करना नहीं चाहते, नहीं कर पाते, तो भी अगर कोई कर रहा है तो उसके इस काम में खलल ना डालें। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इनका भी ख्याल रखें, जिससे कि ये जो आपके लिए करते हैं बिल्कुल चुपचाप, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, तो उसका एहसास आपको होना बहुत जरूरी है। गोल्ड सुप्रभात एंजॉय करते रहिए सुनीता के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और ये गाना है फिल्म मधुमती से लता जी की आवाज में। चलिए साथ मिलकर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

अब डालते हैं एक नजर उन प्रोग्राम्स पर जिन्हें आप आज एफएम गोल्ड पर सुन पाएंगे। सुबह 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स, जयपुर राजस्थान की झलक प्रोग्राम तस्वीर में 11:10 पर, और दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज एक्ट्रेस नरगिस जी की बातें होंगी। तो अब अगला गाना मेरे पास है फिल्म तीसरी मंजिल और आवाज आशा।

0: आशा भोंसले जी और मोहम्मद रफी साहब का ये डुएट अभी आपने एंजॉय किया आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्ली में। एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ ठीक 8:45 पर, लेकिन फिलहाल समय है आज सवेरे का, जो कि प्रस्तुत करता है समाचार सेवा प्रभाग।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो में आज की हसीन सुबह से आगाज करते हैं कार्यक्रम का और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरहत एंड टू यू एंड आवर लिसनर्स गुड मॉर्निंग गुड डे एवरीबॉडी वी वेलकम यू अलोंग दिस इज आज सवेरे वेयर वी शेयर द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन which is related to today. Today it's 2nd of May 2026 and there is a quote that I remember reading today. As Charles Dickens once said, "The sun himself is weak when he first rises and gathers strength and courage as the day gets on." So reflecting on this quote, listeners, get up and move, of course, while listening to us only. So the sun's been up for a while. It's had a head start. And now it's your turn to make it count. Make each day count.
0: बिल्कुल शगुन। फिलहाल तो लेकिन देखा जाए तो जो सूरज है अपने शबाब पर है क्योंकि गर्मी जो है वो फिर से हो गई है। बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा है एक बार फिर
1: रिस्पाइट इट ब्रॉट
0: बिल्कुल तो इसलिए अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। और हाँ जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़िए और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है
1: काउंट योर ब्लेसिंग्स
0: बिल्कुल।
1: सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और आयोग ने बताया है कि संबंधित मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में

0: बुधवार को इन मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को अमान्य घोषित किया है। आयोग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है।
1: Reserve Bank of India has said that 98.47% of 2,000 rupees denomination banknotes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes on 19th May 2023 as part of its currency management exercise. So at that time, notes worth 3.56 lakh crore rupees were in circulation. So this has now declined to 5,451 crore rupees as of 30th of last month. The facility to exchange 2,000 rupees notes has been available at 19 RBI issue offices since the withdrawal announcement.
0: और अब जनगणना की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना शुरू हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders.
0: और शगुन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही और श्री पुरी ने बताया कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
1: Stretching our boundaries a little, US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides. Iranian state-linked media, including Fars News Agency, reported that the country's leadership remains fully engaged in overseeing the countering speculation of internal instability. The diplomatic impasse comes amid intensifying violence elsewhere in West Asia.
0: और बात की जाए आईपीएल क्रिकेट की, तो आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: नाउ बैडमिंटन थॉमस कप। Indian men's badminton team will face France in the semi-finals of this Thomas Cup 2026 at Horsens in Denmark today. India advanced to the semi-finals of the tournament after dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals. Lakshya Sen gave India the perfect start, saving 2 match points to beat world number 6 Xu Tianxian 18-21.

0: 22-20, 21-17 in a thrilling opener. So the doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty then extended the lead with a hard-fought 23-21, 19-21, 21-12 win over Xiu Xiang Shei and Wang Chi Lin. India sealed the tie when Ayush Shetty held his nerve to beat Lin Chun-Yi, confirming a comprehensive team victory. The Indian women's team, led by PV Sindhu, failed to make it past the group stage as they were eliminated by China in the Uber Cup 2026.
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर. रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का. तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
0: Yes, Bharat, beginning with Chennai, where Southern Railways Chennai division has surpassed its parcel revenue target of 74.22 crore for 2025-26, earning a record 74.56 crore and then reinforcing its position as one of the Indian Railways' leading freight and logistics hubs. The division transported 1,288 tons of tyres from Korukupet and Tambaram to destinations across the country. It also partnered with the Central Warehousing Corporation to run a parcel cargo express train carrying branded tyres to Okhla. This it did by Central Warehousing Corporation. Southern Railway has also commissioned new parcel offices at Chengalpet and Jolarpet, while additional parcel terminals have been proposed to Royapuram, Tada and Mundiyapakkam.
1: और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं. दिल्ली में आज तीन महत्वपूर्ण खबर है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वगणना के माध्यम से जनगणना में अपना विवरण दर्ज किया. राजधानी दिल्ली के सभी वार्डों में जनगणना 2027 अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि यह डिजिटल पहल नागरिकों को अपने घर की जानकारी सीधे जमा करने की सुविधा देती है. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया आसान और सुरक्षित है, जिससे प्रत्येक नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उज्ज्वला योजना आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बन चुकी है. 2016 में शुरू हुई इस योजना ने कल एक दशक पूरे कर लिए. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का उपहार दिया. उन्होंने कहा कि रसोई के पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की यह तस्वीर देश में हो रहे सच्चे महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है. और राजधानी दिल्ली में कल कैच द रेन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. यह अभियान जल संरक्षण को सशक्त बनाने और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी का संकल्प बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया. इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रीमती सरकार द्वारा 50,000 तक की सब्सिडी, पानी के बिल में 10-15% तक की छूट और निःशुल्क तकनीकी सहायता जैसे कदम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
0: Farhad, we'll focus now on Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has said that efforts are underway to restructure KR Market with proper utilization of this historic building. He was speaking after inaugurating the revamped management of the ground floor parking complex at KR Market in Bengaluru yesterday. The senior minister said that private parking will be allowed alongside government parking facilities. He added that following repairs at KR Market and the relocation of vendors, the market has been made more usable. Stating that development does not happen overnight, he added that all legislators in Bengaluru will be taken into confidence for the city's development. He also spoke of a plan to construct about 138 kilometers of elevated structures and underpasses to ensure smoother vehicular movement. The elevated structures, he then added, that they will help prevent the encroachment of roadside properties. This was the update I had from Bengaluru.
1: और शगुन, मुंबई का रुख कर लेते हैं. अब नीट यूजी 2026 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने कल दिन के समय मेगा ब्लॉक न चलाने का निर्णय लिया है. हालांकि आवश्यक इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए रेलवे 2 और 3 मई को मध्यरात्रि मेगा ब्लॉक चलाएगा और ये ब्लॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्या विहार स्टेशनों के बीच मेन लाइन पर, साथ ही ठाणे और वाशी नेरूल के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर लागू रहेगा. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो संशोधित ट्रेन समय सारणी देखें और आवश्यक यात्रा व्यवस्था पहल से करें. वहीं महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड इस वर्ष फरवरी मार्च में आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित करेगा. आधिकारिक बयान के अनुसार परिणाम ऑनलाइन जारी किए दिए जाएंगे। छात्र परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों के लिए एक समर्पित

0: बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित महालक्ष्मी सरस बिक्री और प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन आज मुंबई के बांद्रा कुला परिसर स्थित एमएमआरडीए ग्राउंड में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में करेंगे। ये प्रदर्शनी आज से 14 मई तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।
1: Now turning our attention to Hyderabad, the Telangana government has introduced a new centralized procurement policy to improve accountability in educational material distribution. Chief Minister A. Revanth Reddy has set June 15th as the deadline to supply all necessary educational items to students across the state. In a review meeting, the Chief Minister emphasized that students perform better when they receive uniforms, notebooks and other educational materials on time. He pointed out that the old system had many problems. The new centralized system aims to stop these issues, and officials have been strictly warned that quality materials must be supplied without any compromise. To ensure proper distribution, the government will appoint nodal officers at the mandal level. Officials must verify that every student receives complete materials and gather feedback about quality. The government has also decided to form a coordination committee involving SC, ST, OBC, minority and education departments to work together for this initiative.
0: और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की विशेष पीठ का गठन किया है। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संबंध में 4 मई को मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। और श्रोताओ, वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। जी बिल्कुल, आज आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आज दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में बारिश के साथ आंधी आने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: If I talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees in Chennai. Bengaluru is expected to have rain or thunder showers and they would occur towards afternoon or evening. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 35 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will be, minimum temperature will be around 25 degrees and maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad, Farat.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो शगुन इतिहास में सबसे पहले क्या है खास?
1: Well, yes, today, Farat, let's tell our listeners that it's World Tuna Day. And this day, it's observed annually to highlight the importance of tuna and also promote sustainable fishing practices across the globe. Well, sharing the theme for this year, it's advocating for tuna conservation. And this theme, it focuses on the urgent need to manage tuna stocks sustainably as they are vital for, number one, global food security, number two, economies, number three, marine ecosystems. The day draws attention to threats like overfishing, also climate change, encouraging governments and industries to adopt responsible fishing practices.
0: बिल्कुल शगुन, और ट्यूना मछली के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र की सबसे मतलब महत्वपूर्ण और महंगी मछलियों में से एक है और काफी बड़ी होती है, मोटी होती है। हम बता दें अपने श्रोताओं को जिनको नहीं मालूम है। जी बिल्कुल, और अगर आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर की तरफ रुख करेंगे तो इस तरह की मछलियां जो है वो वहां पर मिल जाती हैं।
1: राइट, एंड ट्यूना इज वन ऑफ द, एज यू आर ऑल्सो टेलिंग लिसनर्स, इट्स मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीशीज विद मिलियंस ऑफ टन्स इट्स हार्वेस्टेड एनुअली एंड दिस एक्चुअली मेक्स इट्स कंजर्वेशन क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो tuna plays a crucial role in people's lives and it supports livelihoods, employment and nutrition for many coastal communities worldwide. So that's why protecting tuna stocks not only ensures economic stability for millions but also helps maintain healthy oceans and thereby balanced marine ecosystems. So we were telling you about World Tuna Day.
0: बिल्कुल, और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। और

0: सबसे पहले शगुन 1926 में क्या है खास?
1: एग्जैक्टली, द एडवेंचर्स ऑफ प्रिंस आखमेट. इट वॉज डायरेक्टेड बाई जर्मन एनिमेटर लोते राइनिगर. यूजिंग इंट्रिकेट कटआउट सिलोएट्स, had its first public screening in Berlin, and it stands today as the oldest surviving animated feature film. Now, Farhad, in 1952, first commercial jet airliner service, British Overseas Airways Corporation, BOAC, introduced passenger flights with the de Havilland Comet, ushering in jet age travel. In 1986, American explorer and Bancroft reached the North Pole by dog's sled, officially becoming the first woman in history to travel across the ice to the pole by dog sled.
0: और 1997 की बात कर लेते हैं. अब ब्रिटेन में 18 वर्षों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसके नेता टोनी ब्लेयर 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने. वहीं 1999 में मिरिया मुस्कोसो ओपनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई. और सन 2004 में मारेक बेलका पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने. वहीं सन 2010 में सेबी का प्राथमिक पूंजी बाजार में नए इश्यू की खरीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशकों की तरह शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश प्रभावी हो गया.
1: इन 2011 यूएस ऑपरेशन अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन वाज कंडक्टेड इन अबोटाबाद एंड द ऑपरेशन वाज अ मेजर ग्लोबल काउंटर टेरर माइलस्टोन.
0: और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सत्यजीत राय के बारे में. ये 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य हो या फिर चित्रकला जैसी अन्य विधाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
1: Well, yes, Satyajit Ray, a pioneer of Bengali cinema. Well, we know him for his very real portrayal of Indian society. His journey, though, began in 1950s with his debut film Pathar Panchali, which went on to win multiple international awards as well. So, Farhad, he then continued to make masterpieces, naming a few, Charulata, the Apu trilogy, throughout his career. And his impact on cinema is undeniable, right?
0: बिल्कुल शगुन. विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं. इसके अलावा विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया जा चुका है. तो एक दूरदर्शन ने इनका साक्षात्कार जो है वो लिया था, तो आइए सुन लेते हैं.
2: For instance, I've always wanted to do an epic. I had been fascinated by the Mahabharata and I'm still fascinated by Mahabharata, but I don't think the whole of Mahabharata can be tackled. So perhaps a segment of an epic, a segment of Mahabharata I'd do using our tradition of stylization, perhaps using the Kathakali. I really haven't got a very clear notion of what I want to do, but I definitely do want to do an epic, a story which everybody knows from beforehand. That is something which I want to do.
1: Wow, how great. So he has influenced generations of filmmakers and also continues to inspire them even today, Farhad, right? Today we are also remembering Leonardo da Vinci, the true genius who graced this world with his presence, and he is among the most influential artists in history, having left a significant legacy, well, not only in the realm of art but in science as well, so each discipline informing his mastery of the other. Da Vinci lived in a golden age of creativity, and among such contemporaries like Raphael and Michelangelo, and contributed his unique genius to virtually everything that he touched. So one of which is Athens in the Age of Pericles. You can find it on the internet. Renaissance Italy is a summit in human history. And so today no name better seems to symbolize Renaissance age than Leonardo da Vinci. So he not only developed his skill in drawing, in painting and sculpting during his apprenticeship, but through others working in and around the studio, he picked up knowledge in diverse fields which include chemistry, architectural drafting as well. And in 1473, he was more than halfway through his studies with Verrocchio. He completed landscape drawing of Santa Maria del Neve, a pen and ink depiction of the Arno River Valley. And this actually is the earliest work that is clearly attributable to Leonardo da Vinci.
0: बिल्कुल. और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को. उनकी गणना अगर बात की जाए तो अग्रण्य पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है. हिंदी

0: साहित्य के प्रति अनुराग और लेखक की अभिरुचि के लक्षण में पत्रकार बनने से पहले दिखाई दे चुके थे। सन 1914 से वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे। बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। विशाल भारत छोड़ने के बाद बनारसीदास ने टीकमगढ़ से मधुकर का संपादन शुरू किया। ओरछा नरेश इनका विशेष आदर करते थे और हिंदी प्रेमी भी थे। बनारसीदास के बारे में कहा जाता है कि वे वास्तव में जीवन भर पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं उन्होंने किया, और उनका अध्ययन जो था वो हिंदी, संस्कृत, भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया था। उनकी अपनी शैली थी जो बातचीत की भाषा के निकट होते हुए भी ओजपूर्ण और प्रांजल है और आकर्षक भी रही। निबंध की बात की जाए या फिर रेखा चित्र की, वर्णन उनके लिए एक लेख शैली विशेष रूप से उपयुक्त है, और उनकी रचनाओं में रेखा चित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कवि रत्न, भारत भक्त, एंड्रयूज और संस्मरण आदि काफी प्रसिद्ध भी हुए।
1: सो फॉर टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के पुष्पनाथ, द ऑथर वी नो हिम फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू डिटेक्टिव फिक्शन राइटिंग इन मलयालम। So he has been rightly called the father of Malayalam fiction. He incorporated ideologies and supernatural elements creatively in horror story writing, and he primarily focused on plausible crime stories that motivated readers to become detectives themselves and then solve the mysteries. In 1968, he released his first novel, which was Tuvanna Manushyan. This is a scientific thriller, and then went on to write over 350 works, and this includes mainstream novels, also includes science fiction and horror fiction during the 1970s and 1980s.
0: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स को। उनका पूरा नाम था विल्सन लायनल गार्टन जोन्स, और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम खिलाड़ी रहे जिन्होंने बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीता। उन्होंने 1958 और 1962 में दो बार विश्व चैंपियनशिप जीती। इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 1990 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दो बार विश्व चैंपियन रहे विल्सन जोन्स 12 बार बिलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे और 5 बार स्नूकर के राष्ट्रीय चैंपियन रहे।
1: सो टुडे लिसनर्स वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग पंडित वसंतराव देशपांडे, द रिनाउंड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट, अ ग्रेट परफॉर्मर ऑफ मराठी नाट्य संगीत। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे ही लर्न फ्रॉम सेवरल गुरुज and he thereby refused to tie himself down to a single school of schooling. He started his musical training in his hometown Nagpur, and then he also followed Suresh Babu Mane of Kirana Gharana. The most important influence on him was Dinanath Mangeshkar. So Vasantrao was the sole true inheritor of Dinanath's mercurial style of singing, and well, it is important to mention here that his renditions of rags such as Marwa and Natbhairav, Kaus, Shri Kalavati, and they had a quality to them that kept people interested. So without further ado, let's listen to his voice.

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद हेमचंद्र गोस्वामी ने। इन्होंने 1920 में तेजपुर में आयोजित असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में वो रहे और उन्होंने ब्रिटिश असम में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: वेल, टुडे इट्स ऑल्सो डेविड बेकहम्स बर्थडे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज

0: करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब

0: अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चेलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुनयी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाये रहने और हल्की बारिश

0: खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है, सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं, मां की ममता लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है, डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है, ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Poshim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallo Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the apex court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay.
4: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states and union territories. More on this from our correspondent.
5: Ministry of Home Affairs said that the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will undertake house-to-house visits for data collection. Meanwhile, self-enumeration facility under Census 2027 has commenced in Municipal Corporation of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand yesterday. The online facility will remain available till 50th of this month, after which corresponding house-to-house house listing operations in these states

0: Travelers with poor experience of airport baggage handling will be particularly interested in Japan Airlines' experiment with giving jobs to robot at Tokyo's Haneda Airport. Trials beginning this month will use Unitree's humanoid robots to move baggage, cargo and equipment across the airport. Depending on how they perform, their role could be widened to other ground handling services like cleaning aircraft cabins. If the experiment is successful, it will offer a solution to Japan's aging population and a surge in tourism. And finally, the Financial Express takes note, placement season seeing higher number of new age companies as traditional tech firms scale down recruitment. Startups cushion IT hiring slow down. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Repolling begins in 15 polling stations of two assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21 years in China. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल में दो असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। आईएमडी ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरानुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय खवातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इन पोलिंग स्टेशनों पर बुध के रोज वोट डाले गए थे। रिपोर्टों की बुनियाद पर कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाले चुनाव का कल अदम करार दिया। कमीशन ने सिलसिले में मगरबी बंगाल के आला चुनाव अफसर को तहरीर भेजी है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मगरबी बंगाल के दो हलकों के 15 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। चुनाव कमीशन ने बेजाबतगियों की इतलात मिलने के बाद इन मराकज पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान एक और वाकये में सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की फौरी सुनवाई के लिए खसूसी बेंच कायम की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने गिनती के मराकज पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के जरिए गिनती कराए जाने का हुक्म दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच आज सुबह 10:30 पर इस मामले की सुनवाई करेगी। वोटों की गिनती का अमल पीर को किया जाएगा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जदाश्त को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि अदालत गिनती के अमल की तकरूरी के बारे में इंतखाबी कमीशन के फैसले में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। इसके जवाब में पार्टी ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बिलाताखीर सुनवाई को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दी। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से मकानात की फहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इन रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में अजखुद शुमारी के अमल के मुकर्रा 15 दिन मुकम्मल होने के बाद ये काम शुरू हुआ। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक यह अमल इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता अमला घर घर जाकर आदाद शुमार इकट्ठा करेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अजखुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके बाद 16 मई से 14 जून के और इन रियासतों और मरकज के दरमियान के जेर इंतजाम इलाकों में घर घर जाकर मकानात की फहरिस्तबंदी का अमल अंजाम दिया जाएगा। मर्दमशुमारी 2027 के लिए अपनाए गए डिजिटल तरीके के हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 82 लाख घरों ने सरकारी पोर्टल se.census.gov.in के जरिए खुद शुमारी की सहूलत से इस्तेफादा किया है। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खाम तेल के वसीले की बुनियाद को 41 मुल्कों तक तौसी दे दी है। पहले इन मुल्कों की तादाद 27 थी। ये तौसी तवानाई के आलमी बहरान के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। जनूबी गुजरात में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ने बहरान से निमटने में बुनियादी किरदार अदा किया है। घरेलू पैदावार में इजाफा करने के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि रिफाइनरीज में एलपीजी की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और हमने घरेलू पैदावार में 60% तक इजाफा कर दिया है। ये पैदावार पहले 36,000 मीट्रिक टन रोजाना थी, जबकि अब यह पैदावार 54,000 मीट्रिक टन रोजाना हो गई है। जनाब पुरी ने आलमी कीमतों में इजाफे से अपने सारिफीन को महफूज रखने के लिए किए गए इकदाम का भी जिक्र किया।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की ताजा तरीन तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुजाकरात पर मबनी एक हल्के मंजरनामे पर शक का इजहार किया है और मजीद कशीदगी के खतरे का इंतबाह दिया है। ईरान ने अपनी असर नौ पेशकश सालिसों के जरिए दी थी, जिसकी तस्दीक सरकारी मीडिया ने की। ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान ने मुजाकरात में पेशरफ्त की है, अलबत्त उन्होंने कहा कि वह पेश की गई शराइत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जो वह कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने ईरान की क्यादत को बेरब्त करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार गैर एतमादी का इशारा मिल रहा है। फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क्यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्ला ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2,000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्त साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान

0: जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाबता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई जो इस खित्ते में रेल राब्तों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजिबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रूपये के करेंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। आरबीआई ने करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रूपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और यह 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रूपये थी। 2000 रूपये के नोटों को बदलने की सहूलत आरबीआई के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमलावरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। यह प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA से जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और दीगर तरह के कारोबार को यकसर तब्दीली लाने वाले मौके हासिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात में काफी मजबूती आई है और यह तजारत 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपाई को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत की और एक सनसनीखेज मुकाबले में आलमी नंबर 6 खिलाड़ी को 18-21, 22-20, 21-17 से शिकस्त दी, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने एक सख्त मुकाबले में चियूसियांग शी और वैंग ची लिन की जोड़ी को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर सबकत हासिल की। फुटबॉल में भारत 2005 के बाद से अब तक 17 साल की उम्र तक के AFC खवातीन एशियाई कप में अपनी पहली कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 5 बजे शुरू होगा। टेनिस में मैड्रिड ओपन में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में 9वीं सीड की मेरा एंड्रीवा का मुकाबला यूक्रेन की मार्टा क्योत्सक से होगा। 9वीं सीड की मेरा ने स्पेन की राजधानी में जुमरात के रोज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अमरीका की हेली बैप्टिस्ट को शिकस्त दी थी, जबकि मार्टा कोस्तेक मैड्रिड में जारी WTA 1000 मुकाबले में पहली मरतबा फाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आला दर्जे के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये उनकी 22वीं जीत थी। बोत्सवाना के शहर गैब्रोन में आज से शुरू होने वाले आलमी एथलेटिक्स रिलेज 2026 में 21 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय टीम 5 मुकाबलों में हिस्सा लेगी। ये मुकाबले 3 मई को इख्तिताम पजीर होंगे। भारतीय टीम 6 में से 5 मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने मरई बंगाल की दो

0: वाली सीटों के 15 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की खबर को शह सुर्खी बनाया है। खबरों के मुताबिक ईवीएम से छेड़छाड़ और तशद्दुद की शिकायत के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने यह फैसला लिया है। रोजामा इंकलाब और प्रताप ने राजधानी दिल्ली में डिजिटल मर्दमशुमारी के आगाज की खबर को अहमियत दी है। इस बार इस अमल में आरडब्ल्यूए को भी अहलकारों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक भारत और तंजानिया के दरमियान माली साल 2025-26 में दोतरफा तजारत 9 बिलियन डॉलर से तजावज कर गई। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सिक्किम को मुल्क की पहली पेपरलेस रियासती अदालत करार दिया। इन खबरों को रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाया किया है। खजाने के वजीर मुल्कत पंकज चौधरी ने 70वें इन्फोर्समेंट डे की तकरीब में ईडी की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि माली जराइम के खिलाफ ईडी मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। आईएमडी ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरा नुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। और बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 8:45 और 56 सेकंड। म्यूजिकल दिल्ली का सफर शुरू हो चुका है सुनीता के साथ, और कैफ भोपाली साहब फरमाते हैं कि तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है।

टीना मुनीम ऋषि कपूर साहब के थे स्क्रीन पर और टीना मुनीम ऋषि कपूर के लिए ये गाना गा रही थी। प्लेबैक किया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। ये फिल्म थी बड़े दिलवाला, जिसमें म्यूजिक था आरडी बर्मन का। वैसे आजकल जो भीषण गर्मी है ना, उसमें जी तो यही चाहता है कि कहीं ना जाया जाए, घर में ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया जाए, या फिर जब हम चाहें मौसम बदल जाए। अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर आप अपने गानों के माध्यम से हम स्टूडियो का और आपके आसपास का माहौल जरूर बदल सकते हैं। वैसे हो सकता है मौसम भी बदल जाए, तो क्या ख्याल है, पहाड़ों में चलते हैं, ढेर सारी बर्फ है आसपास। हैवी वुलन्स में जया बच्चन, डैनी डेंगजोंगपा, अभी तो जीले फिल्म का ये डुएट आवाजें, आशा भोंसले, किशोर कुमार।

जी हाँ, FM गोल्ड पर मैं हूँ सुनीता आपके साथ। लेकिन अब हम आप पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर इस म्यूजिकल दिल्लगी के पहले सेगमेंट के। अब 1977 की फिल्म थी घरौंदा और अगला गाना जो मैंने चूज किया है इसी फिल्म का है और आवाज है रूना लैला की।

तो बस अब सुनीता लेगी आपसे इजाजत अगले सैटरडे तक। अब वक्त हो चला है समाचार का। इंदु स्टूडियो में आ चुकी हैं। अगला सेगमेंट म्यूजिकल दिल्ली का आपके लिए लेकर आएंगे 9:10 पर। फिलहाल सुनीता को दीजिए इजाजत, सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रामुक्कम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीद नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्यभर के विद्यार्थियों को सभी आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक

0: और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने मध्यस्थों के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फास समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाये रहने तथा हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are in Pashchim Agarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered re-polling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bakshi will take up the matter today at around 10:30 in the morning. Field operations for the house listing and housing census under phase 1 of census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%.
2: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
1: Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the health of Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. In a social media post, the Prime Minister said that he wished Mr. Rai speedy recovery.

अगर हम कहें कि गुड मॉर्निंग सैटरडे, ये सोचती हुई कि हमें ये जिंदगी तभी अच्छी लगती है जब दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, लेकिन लड्डू ना सही, दोनों हाथों में हमारे सॉन्ग्स तो हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, सिर्फ सॉन्ग्स एंड सॉन्ग्स जो हमें बताते हैं जिंदगी की खूबसूरती। तो पहला वाला ये रहा आपके लिए, ये है म्यूजिकल दिल्ली की आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

वैसे आपसे कोई भूल नहीं हुई है अगर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड टैलेंट को तो। और ये जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है जो आपको बताएगा कि जो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा पूरा का पूरा हफ्ता रहता है, सैटरडे संडे दो दिन ऐसे हैं, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि शायद फ्राइडे इवनिंग से ही वो मूड बन जाता है कि रिलैक्स कीजिए। हम उठते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, उसके बाद फिर से हम सोने चले जाते हैं। और इस लूप को ब्रेक करने का ख्याल हमें तभी आता है जब हमारे पास ये शानदार दिन होता है, उस पे भी अगर अच्छा मौसम हो जाए तो फिर क्या कहने। मौसम के साथ साथ जो हमारा मूड का मौसम होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि हमारा मूड कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें जब दुरुस्त रहती हैं तब कोई भी गाना गुनगुनाने का दिल करता है, जैसे कि ये वाला।

और ये कारवां अगर एक जगह ऐसी जगह टिक जाए जाकर के, जब हमें और हमारे दोस्तों को लगे कि भाई चलो चांद तारे देखते हैं, तो अगर आपको भी इस चीज का शौक है चांद तारे देखने का, मतलब दिन में नहीं रात में, तो फिर क्या ये मुमकिन हो पाएगा? चाहतों ने गर समझदारियों से दोस्ती की होती, न दिनों को रातों का सहारा होता, न रातों में तारों की कहानी होती, न बरसात सुहानी होती, न ये बात हमारी होती। कहने का मतलब ये है कि प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार एनर्जी का दूसरा नाम है। वैसे प्यार से मुझे याद आया, कल आपने चांद देखा था रात को?

जब हम और तुम तैयार हैं तो फिर देरी किस बात की है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है म्यूजिकल दिल्ली। और हमें प्यार से ये बात पता चली कि प्यार तो एनर्जी का दूसरा नाम है, प्यार एक इंथुजियाज्म है। नियम तो यही है कि जो प्यार करते हैं वो दिन रात इस दुनिया को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब ये बात और है कि प्यार सब में होता है लेकिन सब में प्यार नहीं होता।

0: सफर को दिल देंगे हम।
1: और अगर आपने अपने पैसे दे दिए हैं, अपने ऊपर स्पेंड कर दिए हैं, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर ये समझ जाइए कि दुनिया की सारी चीजें कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं। यस, आनंद उठाइए, क्योंकि आप जो भी कुछ हम सब करते हैं उसका जो लास्ट जो स्टॉप है वो यही है

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

कुछ चीजें ना कई बार अचानक यूं ही याद आ जाती हैं, जैसे अभी याद आ गया। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो जो हमें याद आया वो ये है कि रोमानिया में अगर आपको बस टिकट लेना हो तो आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं ये सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये रूटीन हमें याद दिलाता है कि हेल्थ में हमें इन्वेस्ट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है कि हम एक्टिव रहें। जिंदगी कई बार समझ में नहीं आती, जैसे कि ये वाला गाना, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। तो ठीक इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी हैं हमारे आसपास।

हम और तुम, नहीं नहीं, हम और हमारी किताबें। सुना है कि फिर से पढ़ने और सुनने का समय आ चुका है। अगर आपको भी पढ़ने लिखने का कुछ मन कर रहा हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। प्रेमचंद की आप आदमी और औरत पढ़ सकते हैं, नीला फूल आपको अच्छा लगेगा जिसमें मन के भावों के गीत हैं, या फिर लानत का प्याला जिसमें बदले की कहानी है, और अगर नहीं तो फिर आप कहानी का एक बड़ा अच्छा संग्रह है जो हास्य और आयरनी के साथ सामाजिक पहलुओं को दर्शाता है। नाम है काली बिल्लियों के साए में चटोरी चुड़ैल। इसको भी आप पढ़िए और देखिए तो सही। भागी भागी सी लाइफ में ठहरा हुआ ये सैटरडे कितना हसीन लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

चाहे रहिए दूर या पास, लेकिन हम हर बार मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा नहीं रख सकते। बार बार देखते हैं कि मौसम कैसा है। वैसे तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि हम आपको बताएं आगे आने वाले दिनों में, मतलब समझ लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में जो सोमवार के बाद से आएगा, मौसम मतलब खुशगवार सा रहेगा। बहुत गर्मी, जिसको कहते हैं कि 40+ डिग्री, वैसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मौसम को लेकर के कोई भी बात कहना ऐसा ही है, क्योंकि मौसम और समय दोनों हमें चौंका देते हैं। गर्मियों में अपना ख्याल रखिए। नींबू पानी, सत्तू, आम पन्ना, बेल का शरबत, पुदीना, छाछ, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, सलाद, सब कुछ खाते हैं ना, और ना प्यास लगे तो भी पानी पीजिए।

लेकिन एक चीज है जो इस मौसम में हम सबको ध्यान रखने की बात है और उसे हम यूं ही नहीं जाने देना चाहते, और वो है पानी। पानी को बचाइए। जल जीवन मिशन के बारे में

अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। भारत सरकार की एक ये प्रमुख योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है 2028 तक ग्रामीण भारत के हर घर में नल के माध्यम से सुरक्षित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। ये हर घर जल के विजन के साथ लागू की जा रही है। तो फिर पानी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा बना रहे, उसके लिए पानी हर पल हमें ये सोचना है कि किस तरह से इसको बचा के रखना है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे म्यूजिकल दिल्ली आपको कैसी लगी? आप हमें मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा भाई। अगर आप ब्रेकअप से उबरना चाहते हैं तो एक्स का सोशल मीडिया अकाउंट देखना प्लीज बंद कर दीजिए।

0: लेकिन मैं लौट के बस जल्दी से आती हूँ। अब वक्त है ये समाचारों का। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कल श्रीकाकुलम जिले के एराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्यभर के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है।

0: Report: Sean Parnell, assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the U.S. operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the health of Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. In a social media post, the Prime Minister said that he wished Mr. Rai speedy recovery after reports of his illness surfaced. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 km per hour at a few locations. The weather agency also issued an advisory asking farmers to suspend farm operations during the period. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level as the Under-17 national team kick off their campaign against Australia in China today. The match is scheduled to start at 5 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और टेनिस में मैड्रिड ओपन के फाइनल महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुसुक से होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट।
2: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अमेरिका द्वारा ओमान की खाड़ी और समुद्री मार्गों पर लगाई गई नाकाबंदी के कारण ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये दावा पेंटागन के हवाले से एक्सियोस की एक रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका के रक्षा विभाग के सहायक सचिव सीन पार्नेल ने कहा कि यह अभियान ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित ईरानी जहाजों को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई से होर्मुज जलडमरू मध्य के पास बढ़ते तनाव के बीच ईरान के ऊर्जा निर्यात में कमी आई है। अमेरिका ने ईरान की संस्थाओं से पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने के लिए चीन स्थित कच्चे तेल टर्मिनल ऑपरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने अन्य देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने के लिए ईरान को टोल का भुगतान किया तो उन्हें भी इसी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पेगोट ने कहा कि अमेरिका ईरान के अवैध तेल व्यापार को बाधित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई चीन स्थित पेट्रोलियम टर्मिनल ऑपरेटर किंगदाओ हे ऑयल टर्मिनल कंपनी लिमिटेड के खिलाफ की गई है जिसने पिछले साल फरवरी से स्वीकृत ईरान के कच्चे तेल के लाखों बैरल का आयात किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय संघ से कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य निर्माताओं को अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करना है। ईरान पर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी न लेने के अपने फैसले का भी बचाव किया और कहा कि इस तरह की मंजूरी पहले कभी नहीं मांगी गई और इसे व्यापक रूप से पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाता है। टैरिफ बढ़ जाने से अमरीका और यूरोपीय संघ के व्यापार में तनाव बढ़ गया है। समाचार एजेंसी CBS न्यूज के अनुसार ट्रंप प्रशासन जर्मनी से 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। इसे ईरान से जुड़े अमरीकी सैन्य अभियानों को लेकर अमरीका और प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है। अमरीका के रक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो सहयोगियों की और विशेष रूप से

0: वियतनाम को खतरे में डाल सकते हैं। गुतरश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व संकट अपने तीसरे महीने में है और पूरी मानवता इसकी कीमत चुका रही है। इससे पहले कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य के एक क्षेत्र में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता में कटौती के बारे में चिंतित हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि संघर्ष के बीच रूस को अपने तेल क्षेत्र पर प्रतिबंधों और लक्षित हमलों के परिणाम स्वरूप 2026 में अब तक 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के प्रतिबंध रूस के तेल राजस्व को कम करने और उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। उन्होंने कहा कि रूस के तेल उद्योग में व्यवधान के कारण उसकी परिचालन क्षमता काफी प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन और कर्मियों के लिए स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सैन्य सुधार शुरू करने की भी घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। श्री गोयल ने बताया कि रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार से ठोस लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यूएई से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत का विदेशी निवेश दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों को और भी सुदृढ़ करता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलते स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से ईरान से बाहर निकाला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की

एक सुनहरी सी सुबह में, सुबह में एक सुनहरी शाम का जिक्र है ये। दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। तो तैयार हैं आप अपने नाम और अपनी पसंद के साथ सिर्फ और सिर्फ एफएम गोल्ड चैनल पे, यहीं पे।

आओ प्यार करें। 1964 में ये फिल्म आई थी। लता जी की आवाज, उषा खन्ना का म्यूजिक और फरमाइश आप सबकी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु,

जगताप गुलाम साबिराही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंतराव भोजने निवृत्ति आड़ोकार शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी आलिया अंसारी। ये रहा आपका गाना जो आपने सुन लिया। दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे और आप हमें मेल करते हैं fmgold@gmail.com। अपनी चॉइस का सॉन्ग बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, ठीक इस गांव की तरह।

भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा जगदीश देवांगन। आहा, एक गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, फिल्म का नाम है सागर और गाने के बोल हैं, मतलब बोल अब क्या बताएं, वो तो आप सुन ही लेंगे। लेकिन आगे जो हमारे पास नाम है वो है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा। इसके साथ साथ है ओम क्रियांश, मतलब इन्होंने दो मेल भेजी हैं, अपनी दो चॉइसेस बताई हैं, नॉट बैड। बहुत सारे गाने हमारे चॉइस के हो सकते हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव है। और इसके बाद है ये आशा नारंग, सुरेश नारंग सहारनपुर से, कृष्णा पार दिल्ली से, सुखमिंद

राजेंद्र सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय और मैं आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

और हमारे पास ये मेल आया है कैथल हरियाणा से मधु नायक का। कहते हैं, नमस्कार जी, आप बहुत से नाम शामिल करती हैं लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बहरहाल बधाई स्वीकार कीजिए। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक हैं ये। मतलब अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसी कोई नाराजगी तो नहीं है जिस तरह से आपने बोला। खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वेल, मैं अपना नाम जरूर बताऊंगी। मेरा नाम है इंदु पांडे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे दिल का मेल बॉक्स। आपके जो मैसेजेस हैं हमारे पास है। किसी ने कहा हमें कि भाई देखिए, सौदागर फिल्म में अमिताभ बच्चन का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, तो कोई भी गाना और आपकी पसंद का हमारी पसंद बन जाता है। साथ में है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत मक्कर। कनॉट प्लेस से माहिरा मलिक हैं, हिबा, आयशा, जोया, जैनब, मरियम। और शुक्रिया करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं आप सब, उसके लिए हम भी कहेंगे थैंक यू वेरी मच।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:49 और ये है दिल का मेल बॉक्स। ये है आप उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, हर पल आपका खुशियों से भरा हो। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई दुआएं देता है, मतलब दुआएं दीजिए, बहुत भर भर की दीजिए और लगती हैं, अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ये हैं टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप चित्रा कुमारी था।

आदि, डॉक्टर प्रियंका प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका वाणी साथ में है। ये नाम हमारे पास नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता। और इसके साथ साथ हमारे पास जो नाम है ये है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। जी हाँ, कुछ नाम तो मुझे पूरा पक्के से यकीन है कि आपको याद हो गए होंगे। तो ये हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, साथ में उनके पूरे परिवार के लोग जिसमें शामिल हैं निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। कहते हैं देखिए गाने तो आपके बड़े अच्छे अच्छे हैं। अरे जनाब, गाने तो आपके हैं, आपकी चॉइसेस होती है दिल का मेल बॉक्स में। और ये हमारे पास मैसेज आया है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से। कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, आप हमें कोई अच्छा सा बस गाना सुनवा दीजिए जिसमें आप हमारा नाम शामिल कीजिए, और गाना कोई भी हो सकता है। तो आपका नाम, और कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि उनकी चॉइस आपकी चॉइस बन सकती है और आपकी चॉइस उनकी चॉइस बन सकती है। तो कुल जवाब बात ये हुई कि हमारा हर गाना हमारी और आपकी पसंद का होना चाहिए। तो ये रहा फिल्म सुशीला से आपकी पसंद।

ये गाना हमें ये संदेश देता है कि देखिए खूबसूरती के साथ साथ अगर उसमें भाव हो तो बात बड़ी अच्छी होती है कि बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर ये मुस्कुरा दें तो क्या हो। ठीक वैसे ही आपके जो मैसेजेस होते हैं ना हमारे पास आते हैं दिल का मेल बॉक्स में, वो भी हमें ऐसे ही लगते हैं। जैसे कि जैन मंदिर वाली गली कुरा

वली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी ने हमें मैसेज किया है। राजेंद्र जटोलिया, उषा चारू, दिल्ली नांगलोई से इन्होंने हमें मेल किया है। और अग्रसेन यादव हैं, शकुंतला हैं, गरिमा नई दिल्ली से हैं, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हैं, मलियान सरधना मेरठ से हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, रशीद और यशफ अब्बासी हैं। गांव रथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा है, जसवीर जसी हैं, सीता और गीता हैं। जब ये भेजते हैं ना हमें सीता और गीता है तो मैं थोड़ी सी सोचने लगती हूँ कि सीता और गीता वो वाली सीता और गीता तो नहीं जो हमारे पास फिल्मों का गाना होता है, लेकिन ये सीता और गीता है। और साथ में पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पदमपुर श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा और कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, मतलब पूरी कश्यप फैमिली है इनके साथ साथ। सुरीले संगीत की धुन आहा, जो दिल का मेल बॉक्स है उसके लिए हमारे पास कई बार ऐसे तारीफों की बातें भी होती हैं कि ये सब कुछ मिला के इतना अच्छा लगता है कि बस पूछिए मत। तो आप यूं ही अच्छा लगाते रहिए, हमें अपनी चॉइसेस भेजते रहिए और बताते रहिए कि क्या है जो आप सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है। अगर आप हमें ये बताएंगे कि क्यों है आपके दिल के करीब तो शायद हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि हर गाना जब हमें पसंद आता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो साथ में अगली बार ना कारण भी लिखिएगा और बताइएगा कि ये गाना आपके दिल के आखिर इतना करीब है क्यों, बार बार याद आखिर क्यों आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के 1 साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Repolling has started in 15 booths in two constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are in Paschim Mogarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench, comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi, will take up the matter today. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The exercise will continue till 30th of this month. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today. The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2,000 rupees denomination banknotes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes from circulation on May 19, 2023 as part of its currency management exercise. The RBI, however, clarified that despite their withdrawal and return, the 2,000 rupees banknotes continue to remain legal tender. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides.
3: You cannot give Iran a nuclear weapon, because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. We've taken their air force, is non-existent, it's gone. Their navy, they had the strongest navy by far in the Middle East many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader.
2: A meeting between India and Nepal will be held in Kathmandu today to discuss a flood forecasting model ahead of the upcoming monsoon season. The Indian delegation will be led by Santosh Kumar Mal, Principal Secretary of the Water Resources Department, Bihar. This development follows the conclusion of the two-day 11th meeting of the India-Nepal Joint Committee on the Kosi and Gandak projects held in Kathmandu on the 30th of April and 1st of May. During the meeting, both sides reached agreement on several key issues related to water management and infrastructure. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. IMD has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Orissa and coastal Andhra Pradesh. The weather agency has said that coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka and Tamil Nadu are likely to experience hot and humid weather conditions today. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level.

स्वागत है आपका तस्वीर में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये तस्वीर का टाइम एकदम एक ऐसा टाइम जो हमें ले जाता है, सिखाता है और बताता है कौन सा शहर है भारत का जो हमने देखा और हमें अच्छा लगा। ये गाना सुनिए, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो बताइएगा।

जी हाँ, अलबेली प्यार की राहों में जाने पहचाने रास्तों के साथ आप हैं घर आंगन कार्यक्रम में आज फिर से हमारे साथ। और धरती फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना। और साथियों, चूंकि आज है 2 मई और भारत रत्न सत्यजीत रे जी की जयंती का दिन है, आज ही के दिन 2 मई 1921 में उनका जन्म हुआ। भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे, जिनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की संवेदनशील कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। 36 फिल्मों और दुनिया भर के 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले निर्देशक सत्यजीत रे 1992 में भारत रत्न और मानद ऑस्कर से भी सम्मानित किए गए। अपनी फिल्मों के जरिए

उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई दोस्तों, बल्कि समाज का आईना दिखलाया। हिंदी सिनेमा की इस महान विभूति को उनकी जयंती पर हम सलाम करते हैं। सफर तो अभी शुरू हुआ है, मीलों दूर चलना है, रुकना मना है, थकना मना है, मीलों आगे बढ़ना है। इन्हीं विचारों के साथ बने रहें FM गोल्ड 100.1 पर हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, कस्मे वादे फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज में। साथियों, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने वाली आधी आबादी के पास आधा नहीं बल्कि पूरा पूरा अवसर है अब खुद की पहचान बनाने का। जी हाँ, बात हम एक ऐसी किरण की करेंगे जो हजारों महिला वैज्ञानिकों के सपनों की नई उड़ान है और नाम है उसका मिशन किरण। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वाइस किरण यानी विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण पहल। ये मिशन उन प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जिनका वैज्ञानिक सफर परिवार की जिम्मेदारियों और मातृत्व के बीच कहीं थम चुका था। योजना का उद्देश्य करियर ब्रेक नहीं कम बैक है, जिसमें कई महिला वैज्ञानिकों को रिसर्च फेलोशिप, आईपीआर और सामाजिक नवाचार के अवसर मिल रहे हैं ताकि वे फिर से मुख्य धारा में जुड़ सकें। देश में स्टीम ग्रेजुएट्स में महिलाओं की मजबूत भागीदारी के साथ उनके रिसर्च करियर के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं जिम्मेदारियों के बीच छूट जाती हैं। मिशन किरण उसी गैप को भरने की शानदार पहल है दोस्तों, ताकि कोई भी सपना आंगन तक सिमट कर ना रह जाए, नापे वो अपना भी आसमान।

जी हाँ दोस्तों, आसमान के नीचे और अपने पीछे अपने निशान बनाने की कवायद से जुड़ा हुआ ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, ज्वेल थी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए, सपने देखते हुए हम इस तरह से अपने निशान बना सकते हैं अगर हम लगातार और सतत निरंतर होते हुए मेहनत करते रहें अपने सपनों के लिए। तो सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने वाले ही समाधान लाते हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 17 वर्षीय पूजा पाल ने खेतों को जोड़ा है नवाचार के एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास से, धूल रहित थ्रेशर मशीन बनाकर। अक्सर स्कूल जाते वक्त थ्रेशर मशीन की धूल से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करने वाले कई बच्चों की तरह इस परेशानी को पूजा ने भी नियति नहीं माना था दोस्तों, बल्कि अनोखा समाधान ढूंढ निकाला। देश की समृद्धि के लिए खेतों में नवाचार बोने वाली पूजा ने खूब प्रयास किए, कई बार असफल भी हुई, लेकिन उनके निरंतर प्रयास ने उन्हें इंस्पायर अवार्ड दिलाया और पूजा जापान के सकुरा साइंस प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तर प्रदेश की इकलौती छात्रा भी बनी। गेहूं मड़ाई के दौरान उड़ने वाली हानिकारक धूल को कम करने वाली उनकी अभिनव खोज के इस मॉडल में पानी आधारित और पृथक्करण तकनीक से भूसा और धूल को नियंत्रित करने का समाधान तैयार किया। छोटे से गांव के इस बेटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जिसने किसानों की सेहत, पर्यावरण और कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में समाधान खोजा और अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय भी दिया। सुनते रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 में घर आंगन की रंग रंगीली बात, क्योंकि अगला आइडिया शायद हो आपके ही आसपास।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से ये गीत। और साथियों, आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन, जिसे आप सुनते हैं रोज 12:10 पर हमारे साथ यहीं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आपकी क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, हर बात हमारे लिए अनमोल होती है और ये जानने के लिए हम हमेशा प्रतीक्षारत होते हैं। तो आपके लिए, आपके संदेशों को पाने के लिए हमारा एक दरवाजा है जो आपके पास तक पहुंचता है, और वो दरवाजा है fmgoldga@gmail.com, जहां पर हम प्रतीक्षा करते हैं आपके संदेशों की, आपके मेल्स की, कि आप बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। और देखिए, इसी प्रतीक्षा में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो है नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, जो कहते हैं कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिले, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होती रहे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप करते जाइए कोशिश और सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। उसी तरह हमारी नियमित श्रोता साथी हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, जो शांति नगर सोनीपत से हैं। उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने एक बात और कही है कि सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। बहुत खूब फरमाया आपने सिमरन जी और सुदर्शन मुखी जी, ये बात सचमुच में बहुत सही है कि अगर हम प्रयास करते रहें निरंतरता के साथ, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो सुनते रहिए आप हमारे साथ और

लता मंगेशकर और किशोर और रफी की आवाज में आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से ये गीत। दोस्तों, जितनी तेजी से हमारी जलवायु बदल रही है उतनी ही तेजी से पर्यावरणीय प्रभाव भी नजर आ रहे हैं। देखिए ना, दिल्ली एनसीआर सहित लगभग पूरे देश में हीट वेव्स के आसार भी बन रहे हैं, वो भी मई महीने की शुरुआत में। सोचिए ना, क्लाइमेट क्राइसिस की चिंता पूरी दुनिया का विषय है, पर जानते हैं आज समस्या की नहीं, हम समाधान की बात करेंगे। समाधान को जीवन का ध्यान बनाने वाली उस शख्सियत की बात करेंगे जिन्हें लोग प्यार से जनक दीदी कहते हैं। जी हाँ, वो हैं पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मैक गिलिगन। पर्यावरण संरक्षण जिनकी कवायद नहीं बल्कि जीवन शैली है। वो रहने वाली तो इंदौर की हैं, लेकिन पहचान पूरे देश की बन चुके हैं क्योंकि उनका घर और उनकी जीवन शैली जीरो वेस्ट का प्रमाण बन चुके हैं। वहां न कचरा है न बिजली का बिल आता है क्योंकि पवन चक्की और सौर कुकर से चलने वाला उनका घर खुद को ही रोशन नहीं करता बल्कि आसपास के 50 घरों तक रोशनी भी बिखेरता है। उनके बगीचे में हैं करीब 160 पेड़ और 13 तरह की फसलें भी। इतना ही नहीं बल्कि अब तक वे 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं और 6,000 से अधिक ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सौर ऊर्जा, स्वच्छता और सस्टेनेबल जीवन की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। सभी प्यार से उन्हें जनक दीदी कहते हैं क्योंकि माँ की तरह वो सिखलाती हैं प्रकृति के साथ तालमेल और कम में खुश रहने की कला। प्रकृति हमें सब देती है दोस्तों, अब लौटाने की बारी हमारी है। इसलिए चलिए आज यहीं से प्रण करें कि पर्यावरण प्रेम सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि पानी बचाने, प्लास्टिक घटाने और प्रकृति मित्र बन जीवन को अपनाने में भी लगाएंगे।

0: आन मिलो सजना। इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे साथियों ये गीत। और दोस्तों, छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे गर्मियों के इस मौसम में छोटी सी एक आदत हमारी जो है वो पारंपरिक आदत की मैं आपको बात बताने जा रही हूं और याद दिलाने भी जा रही हूं, जिससे आपकी राहत और सुकून भी जुड़े हुए हैं, और वो है इको फ्रेंडली पारंपरिक हथपंख यानी बचत और स्वास्थ्य का संगम। हाथ का पंखा एक ऐसा जुगाड़ जो सिर्फ हवा नहीं समझदारी की ठंडे मिसाल भी कहा जा सकता है। इसे प्राकृतिक ताड़ के पत्तों, बांस या खजूर के पत्तों से बनाया जाता है, और पारंपरिक हथपंख जो ये होते हैं ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली हैं। जरा सोचिए, जब बिजली कट जाए या वहीं पे ये देसी साथी काम आ जाता है, और जो सिर्फ आपकी बचत नहीं करता बल्कि हाथ की हल्की हल्की एक्सरसाइज या गतिविधि भी करवाता है, जिससे आप एक्टिव बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े जो ग्रामीण कारीगर हैं उनकी आजीविका का माध्यम भी यही होते हैं। तो ये जो हाथ के पंखे हैं, यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन कुटीर उद्योग से जुड़े ग्रामीण कारीगरों की भी मदद कर रहे होते हैं। यानी छोटी सी खरीदारी किसी परिवार की बड़ी मदद बन सकती है दोस्तों। और ऐसे में हमारे घरों में ये परंपरा तो पहले से चली आ रही थी, पर चूंकि हम बहुत ज्यादा सुविधा भोगी हो चुके हैं इसलिए हम भूल रहे हैं इन बातों को। और यही मेरी कोशिश है कि हम फिर से याद करें इन बातों को, इन समाधानों और इन परंपराओं का पालन करने की ओर हम आगे बढ़ें, पर्यावरण की मदद भी करें, सेहत की देखभाल और वोकल फॉर लोकल हुनर यानी तीनों को सपोर्ट करने वाला ये रास्ता हम अपनाएं। तो इस गर्मी थोड़ा देसी बनते हैं, जब लाइट गुल हो जाए तो एक्सरसाइज करते हैं। क्या कहना है आपका?
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यारा में उठते ही लो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: साथियों, ये अंतिम गीत आप सुन रहे हैं गोदान फिल्म से, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से आप अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, अलविदा, नमस्कार। घर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणन कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission of India's decision to appoint only central government employees as counting supervisors. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. Counsel for the Commission clarified that returning officers are state government employees and are responsible for appointing other officials. In its order, the Apex Court reiterated that the Election Commission's circular must be implemented in letter and spirit. The Supreme Court has said that no further order was required on the plea filed by the All India Trinamool Congress challenging the dismissal of its petition by the Calcutta High Court. The petition was against a circular issued by the Election Commission of India on deployment of central government personnel for vote counting in West Bengal. Polling for the 294-member West Bengal Assembly was held in two phases on April 23 and April 29. Counting of votes will take place on May 4. Nearly 37% voting turnout has been recorded till 11 a.m. in repoll in 15 booths of two assembly constituencies in West Bengal's South 24 Parganas district. Magrahat Paschim registered 38.2% voter turnout, while in Diamond Harbour it was 35.92%. In Keralam, all arrangements have been completed for the counting of votes polled in the assembly elections held across 140 constituencies on April 9. Chief Electoral Officer Ratan U. Kelkar informed that counting will begin at 8 a.m. on Monday at 140 counting centres set up across 43 locations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The exercise will continue till the 30th of this month. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the municipal corporations of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till the 15th of this month. In Bihar, the first phase of Census 2027 began today with the commencement of house listing and housing enumeration across the state. The second phase of Census 2027 is scheduled to be conducted in February next year. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted four parliamentary committees for the year 2026-27. Lok Sabha BJP MP Dr. Sanjay Jaiswal has been appointed as a chairperson of the Committee of Estimates comprising 30 members of the lower house. The Committee on Public Undertakings comprising 15 members from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha will be headed by BJP MP Bejayant Panda. Mr. Birla has appointed Congress MP from Lok Sabha KC Venugopal as the chairperson of the Public Accounts Committee, while the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be headed by Lok Sabha BJP MP Faggan Singh Kulaste. The term of these committees will be from the 1st of this month to the 30th of April next year. Punjab Police has filed FIRs under non-bailable sections against Rajya Sabha MP Sandeep Pathak, who had recently joined the BJP, along with six other Rajya Sabha MPs of the Aam Aadmi Party, that triggered a fresh political flashpoint in Punjab. According to sources, two FIRs have been filed in two different districts of Punjab. However, the names of both the districts have not yet been officially disclosed. U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में मैं संगीता हूं आप सभी के साथ। आज कलाकार बेमिसाल में हम वाकई में एक कमाल की अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज जिक्र नरगिस दत्त का। नरगिस दत्त की गिनती जो है वो हिंदी सिनेमा के महान अभिनेत्रियों में होती है और लोग उनकी अदाकारी के आज भी दीवाने हैं और 3 दशक से ज्यादा उन्होंने अदाकारी की और सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उन्होंने फिल्मों में 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और फिल्म तलाशे हक के साथ एक छोटी सी भूमिका में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म जो है ये आई थी 1935 में। हालांकि उनके अभिनय करियर की अगर बात करें तो वो शुरू हुआ था फिल्म तमन्ना से जो 1942 में आई थी। तो नरगिस ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, एक से एक यादगार फिल्में हमें दी जिन्हें हम आज भी देखते हैं, आज भी देखना हम पसंद करते हैं। और कई ऐसे अभिनेता रहे जिनके साथ उनकी खूबसूरत जोड़ी बनी और कई ऐसे काम भी नरगिस ने किए जो हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी अभिनेत्री के हिस्से आए थे। तो बने रहिए फिल्म गोल्ड के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे नरगिस दत्त की।

जी हाँ, तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अदाकारा नरगिस दत्त की। मुझे नरगिस दत्त यूं भी बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारी बचपन की स्मृतियों में शामिल है, और मुझे याद है कि दूरदर्शन पर जब राज कपूर की फिल्में आती थी, राज कपूर और नरगिस की फिल्में आती थी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने साथ में की हैं जिनमें हम चाहे आवारा की बात करें या चोरी चोरी की बात करें, श्री 420 की बात करें, तो ये जो जोड़ी है ना, ये हमारे स्मृतियों का हिस्सा है। तो यूं भी इन्हें पर्दे पर देखना, पर्दे पर निहारना बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम नरगिस की बात करें तो फातिमा राशिद नाम था और उनके पिता जो है अब्दुल रशीद थे, जो मूल रूप से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से थे। उनकी मां का नाम था जद्दनबाई और उस जमाने की वो जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। हालांकि नरगिस के लिए कहते ये हैं कि नरगिस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर में सिनेमा का माहौल था और मां की भी इच्छा ऐसी थी कि वो सिनेमा की तरफ जाएं, तो उन्होंने सिनेमा की तरफ अपना रुख कर लिया।

0: नरगिस दत्त को हम याद कर रहे हैं आज अपने इस कार्यक्रम में। और हम आपको बता दें कि महज 14 साल की उम्र में नरगिस फिल्म निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर में नजर आई। बस इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने 1940 और 1950 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420, चोरी चोरी और भी बहुत सारी फिल्में। नरगिस और राज कपूर ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और ये जोड़ी कमाल की थी।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए।
2: क्या?
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा।
1: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूँ।

1:26 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अगर अभी हमारे साथ आप जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि अपने कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं नरगिस दत्त को। महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मदर इंडिया एक फिल्म भर नहीं थी, ये फिल्म हिंदी सिनेमा जगत में खासा स्थान रखती है। नरगिस की अदाकारी ने इस फिल्म को अमर कर दिया। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा जगत दर्शकों के दिलों पर जो छाप छोड़ी इस फिल्म ने, उसे सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। मदर इंडिया फिल्म के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। और साल 1958 में इसी फिल्म में काम करते हुए सुनील दत्त से उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। इसका भी एक बड़ा प्यारा सा किस्सा है, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद, मदर इंडिया का ये खूबसूरत सा गीत।

अच्छा, इस फिल्म में मदर इंडिया में वो दृश्य अगर आपको याद हो कि फिल्म के आखिर में जो है वो खलिहान में जो आग लग जाती है, तो वो वाकई में आग सच्ची की लग गई थी और सच्ची में नरगिस उस आग में फंस गई थी, उस आग की लपटों में फंस गई थी और सुनील दत्त जो है बिल्कुल रियल लाइफ हीरो की तरह आग में कूद पड़े और नरगिस को उसमें से निकाल कर लेकर आए और वहीं से एक रागात्मक लगाव जो है वो नरगिस का शुरू हुआ सुनील दत्त के प्रति। हालांकि कई इंटरव्यू में सुनील दत्त ने यह कहा कि अगर नरगिस की जगह कोई और अभिनेत्री होती तो भी मैं उसे ऐसे ही बचाता, लेकिन नरगिस ने इसको एक अलग तरह से देखा और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और उसके बाद 1958 में उन्होंने शादी कर ली। कौन सी फिल्म आपको पसंद है नरगिस की? अगर मैं अपनी बात कहूं तो आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ये किस फिल्म का नाम मैंने ले लिया। मुझे जागते रहो फिल्म बहुत पसंद है। हालांकि ये पूरी फिल्म राज कपूर की फिल्म है और एक अतिथि कलाकार के रूप में नरगिस इस फिल्म में आती हैं, लेकिन पूरी रात की कहानी है इस फिल्म में। लेकिन सुबह भोर के समय जिस तरह नरगिस की एंट्री होती है, ऐसे लगता है कि जैसे तमाम मुश्किलों के बावजूद सुकून आया हो, जैसे काली अंधेरी रात के बाद एक उजाला आया हो, जैसे जमाने बाद माथे पर पड़ी सलवटों को किसी ने दूर कर दिया हो, जैसे कितने लंबे गम के बादलों के बीच एक छोटी सी मुस्कान आई हो। ऐसी है इस फिल्म में नरगिस की एंट्री। आपने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी है तो आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, इस फिल्म को जरूर देखिएगा। कहते हैं ना, जो अवकाश का दिन है, अवकाश एक नया आकाश देता है, तो अपने हिस्से का आकाश तलाशिए ना, इस फिल्म को देखिएगा।

कमाल का गीत है और क्या दमदार आवाज है लता दी की. मतलब ऐसे लगता है कि जैसे एक गीत जो आपकी आत्मा को छू गया हो, जो आपकी रूह में उतर गया हो. इतना कमाल का खूबसूरत गीत है और उतनी ही कमाल की पिक्चराइजेशन है इस फिल्म की. शादी के बाद नरगिस दत्त ने फिल्मों में काम करना लगभग कम कर दिया और करीब 10 साल बाद फिल्म रात और दिन के लिए काम किया. 1967 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था. ये गाना जितना खूबसूरत है, जितनी खूबसूरती से लता दी ने गाया है इसे, मन्ना डे ने गाया है इसे, इस फिल्म में नरगिस इतनी कमाल की लगती हैं. उनके चेहरे पर जो नूर है, जो सादगी है, जो सौम्यता है, वो लगता है बस निहारते रहो उन्हें.

1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस दत्त दस प्लास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और इसके साथ काम करते हुए उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अभिनेत्री से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से 1980 में संसद भवन तक का सफर तय किया।

0: और फिलहाल तो वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि ये समय समाप्त हो चुका है। लेकिन हमें यकीन है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, गाने भी आपको अच्छे लगे होंगे। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और हमारी आपकी फिर जल्दी होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बने रहिए FM गोल्ड के साथ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा

0: कि स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मॉनसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज शाम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। यह फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा दीगर अमले की तकरूरी के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
1: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमुई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमुई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की 10-9 तश्कील की है। लोकसभा के बीजेपी के मेंबर डॉ संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान जेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबराह लोकसभा के बीजेपी के मेंबर फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की पहली तारीख से अगले साल 30 अप्रैल तक होगी। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए कल से फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अज खुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके

0: राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहां भी मकानात की फेहरिस्त बंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा एमपी संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6 दिगर राज्यसभा अरकान के हमरा बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराये के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निजाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुवासलाती निजाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्जे हरारत में कमी रही। आईएमडी ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को एहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Supreme Court declines to interfere with Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. Says choice of officials rests with the Election Commission. Repolling underway at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Over 55% voter turnout reported till 1 p.m.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

0: कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

0: अयोध्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC Under-17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। Under-17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और Under-20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी कोमल और आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम। दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर को सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वैसे ही हमारे पौधों को भी सही पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर पौधे सही से खाना नहीं खाएंगे तो न तो ठीक से बढ़ेंगे और न ही

0: देंगे और ना ही हरे भरे दिखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में किसान की बात में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही विषय जिसमें आप जानेंगे कि अपने पौधों को आप कैसे अच्छे बढ़ते देख सकते हैं, कैसे उनकी पोषक तत्वों की कमी पूरी कर सकते हैं और क्या क्या आप उनकी देखभाल के लिए कदम उठा सकते हैं। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ हैं
1: निरंकार, करिए स्वीकार हमारी ओर से। नमस्कार। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें जिस तरह से पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसी तरह हमारे पौधों को भी जरूरत होती है। हम अपने लिए बात करते हैं संतुलित आहार लेने की
0: जी।
1: इसी तरह से बहुत सारे तत्व हैं जिनकी जरूरत हमारे पौधों को होती है। पोषक तत्व भी हैं, सूक्ष्म तत्व भी हैं और कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि किस तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में दी जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी एक्सेस मात्रा हो या कम हो दोनों तरह से प्रभावित होता है। पूरे के पूरे फसलों को हम अगर वैज्ञानिक ढंग से मैनेज करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिल पाएगा। ये पौधों के अंदर पोषक तत्वों की कमी को किस प्रकार से जाने, किस प्रकार उसे पूरा कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी आज विषय पर हम लेंगे। और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर रेणु पांडे जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हम ये भी देखेंगे कि जो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, कई चीजें जानेंगे, तो कोमल कई हमारे किसान हैं उनके जहन में कुछ सवाल आएंगे, वो भी कुछ जानना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें, वही जाने पहचाने नंबर हैं।
0: जी बिल्कुल, वही जाने पहचाने नंबर है, 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूले। दिल्ली के बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल करें और हमारी टेलीफोन लाइन्स जो आप सभी के लिए खुल चुकी हैं वो है 2342108 और 2342108। तो आप सभी के सवाल तो हम इंतजार करेंगे ही, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों के सवालों के जवाब जो है डॉक्टर साहिबा यहां पर दें आप सभी को, लेकिन हमारे मन में भी कुछ सवाल है। तो निरंकार, पहले अपने सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब एक बार हमारे श्रोता हमारे साथ सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करते हैं तो हमारे सवालों के जवाब रह जाते हैं।
1: और दूसरी बात यह है कि जो हम सवाल पूछेंगे हो सकता है उसके जवाब में कई भाइयों की समस्या का निदान भी साथ साथ होता रहे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फसलों के उत्पादन के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं।
2: सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। तो आपने पूछा कि जो जरूरी तत्व हैं, तो इसमें पौधों को 17 एलिमेंट्स जो हैं, इसमें से मैक्रो और माइक्रो सूक्ष्म तत्व और
1: मुख्य तत्व
2: हैं। तो जो मुख्य तत्व में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और बाकी के सूक्ष्म तत्व हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, सब ये काफी इम्पोर्टेंट हैं।
1: तो इनका काम क्या है वो भी जानना चाहेंगे, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, पोटास।
2: हाँ देखिए, नाइट्रोजन का सबसे जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो है पौधों को, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम है कि वो जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उसके बायोमास जिसे कहते हैं, उसमें
1: वनस्पतिक वृद्धि
2: बिल्कुल, उसमें उसका योगदान है। क्लोरोफिल बनता है जिससे जो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो
1: पौधा खाना तैयार करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, पौधा खाना तैयार करता
1: जी
2: है।
1: तो ये नाइट्रोजन का काम हो गया, जो ज्यादातर हमारे किसान भाई यूरिया से देते हैं
2: जी।
1: फिर फास्फोरस का नंबर आता है
2: जी। फास्फोरस दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे हम सबको ऊर्जा चाहिए होती है, पौधों को भी ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है। तो ये और जो फास्फोरस का सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसकी जड़ की ग्रोथ
0: जी।
2: जड़ अच्छी तरह से शुरुआत में ही फैले, बढ़े, उसके लिए फास्फोरस की बहुत जरूरत है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एटीपी जैसे जो भी एनर्जी है, और बहुत सारे इसके अलग अलग क्या कहते हैं इसमें इसके रोल है, महत्वपूर्ण है इसमें। और यहां तक कि फास्फोरस की कमी से पौधों की में या कहते हैं आप कह सकते हैं कि फसल में भी बहुत कमी हो जाती है।
1: जी। तो इसके साथ फिर पोटास भी किसान भाइयों को देना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, पोटास तो एक ऐसा एलिमेंट आप कह सकते हैं, ऐसा तत्व है जिसकी जो कि पौधों की रोग क्षमता को बढ़ाता है, और जैसे जो पानी जो देते हैं ना से
1: रेगुलेट करना,
2: हाँ रेगुलेट करना बिल्कुल, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पोटेशियम भी,
1: उसके पौधे की क्वालिटी, पौधे जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में भी हमने सुना है कि काफी योगदान देता है। इसके बाद सल्फर में आपने बताया, कैल्शियम आपने बताया
2: जी, तो ये सब अभी सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे आप तो नाइट्रोजन लगता है, उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम, उस सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ी कम मात्रा में लगता है, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि आप कौन सा किस चीज की खेती कर रहे हैं। जैसे अभी अगर आपने तिलहन लगाया तो उसमें सल्फर चाहिए,
1: तेल वाली में
2: सल्फर चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर पांडे एक बात और आती है, आपने बताया कि पौधे ज्यादा वनस्पतिक वृद्धि करते हैं अगर नाइट्रोजन डाल देते हैं, हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं उनके दिमाग में ये आता है कि पीला अगर पौधे की पत्ती पड़ गई है, पीली पड़ गई है तो वो तुरंत उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, चाहे वो खाद्यान्न की फसल है, सब्जी फसल है, कोई भी फसल है, तो कैसे पहचाने कि ये नाइट्रोजन की ही कमी है या फिर कोई रोग या बीमारी है?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए पीलापन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही नहीं हो सकता, उसके और भी दूसरे कारण से, एक तो फास्फोरस की कमी होगी तो भी हो सकता है, कोई बीमारी हुई तो भी हो सकता है, लेकिन एक बीमारी और खनिज तत्वों की जो कमी है इन दोनों के लक्षण में सबसे पहले तो अंतर करना जानना पड़ेगा हमें। जो भी खनिज तत्वों की कमी होती है तो वो उसके जो लक्षण होंगे या तो वो निचले पत्तों में देखेंगे सबसे पहले, या फिर जो ऊपर ग्रो हो रहे हैं ऊपर जो यंग पत्ते हैं उसमें नजर आएंगे, और जो बीमारी है वो किसी पैटर्न पे नहीं होती, वो किसी भी यंग पत्ता हो या पुराना पत्ता हो किसी भी हो सकती है
0: जी।
2: और उसमें अगर बीमारी है तो आपको किसान भाई देख सकते हैं उसमें एक या तो पौधों के पत्ते के निचली सतह पे या ऊपरी सतह पे कुछ फंगस टाइप का दिखाई देगा, फफूंद दिख सकता है, या कुछ रस्ट जैसा ब्राउन भूरे रंग का कुछ
1: स्पॉट
2: दिख सकता है। लेकिन खनिज तत्वों में या तो निचले पौधों पे पत्तों पे होगी या ऊपर वाले पे होगी।
0: डॉक्टर साहब कई बार पत्ते हमारे छेद हो जाते हैं उन पत्तों में, अच्छा खासा हरा भरा पौधा होता है लेकिन उनमें छेद हो जाते हैं, तो वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है और उसको कैसे दूर करेंगे हम?
2: देखिए छेद हो जाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि वो हमें पता होना चाहिए कि नए पत्ते हैं या पुराने पत्ते हैं, अगर पुराने पत्तों पर हो तो हो सकता है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो। और अगर एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे अगर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, खनिज तत्वों की कमी है, तो उस पर अगर आपने कुछ स्प्रे किया या वो उर्वरक दिया तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर ही, लेकिन अगर बीमारी है तो वो रिकवर नहीं होगा, वो पत्ता पौधा मर जाएगा आपका।
1: तो कई कारण हो सकते हैं, हमें पहले तो ये पहचानना है कि रोग है या बीमारी है, एकदम ऐसे ही उसमें अपने मन से उसमें नाइट्रोजन वगैरह ऐसे नहीं देनी है।
2: नहीं बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रोजन की मात्रा जैसे मैंने बताया कि किसान भाई नहीं जांच कराते हैं, नहीं देखते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं बहुत तो जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सीधे नाइट्रोजन अप्लाई कर देते हैं, अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं?
2: तो नुकसान एक तो देखिए जो पौधा है उसमें जो वनस्पतिक ग्रोथ होगी यानी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा होगी, तो उसका जो फ्लावरिंग टाइम है, जो फल आने का या फूल लगने का समय है, वो डिले हो जाएगा, उसे देर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान तो वह है, दूसरा आप अपना पैसा भी नुकसान कर रहे हैं,
1: ज्यादा कहते हैं बीमारियां भी ज्यादा लग जाती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब आपके इस जवाब पर वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल पूछ लेते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो
0: नमस्कार, स्वागत है आपका जी, कौन बोल रहे
3: हैं? बहुत शुक्रिया, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर के सिटी से
0: जी।
3: डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया आज इतने अच्छे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने कीमती समय में से किसानों के लिए थोड़ा सा समय निकाला है, इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं।
0: डॉक्टर साहब से
3: मेरा ये सवाल ये है कि हम यहाँ कश्मीर में ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ज्यादातर सब्जियों में जो हम गोबर के खाद डालते हैं या फिर पानी के नीचे एक एल्गी आता है उसको निकाल के खाद बनाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जितनी भी खादों का नाम लिया जैसे सल्फर है और बाकी सारे खादों का नाम लिया, तो हम ज्यादातर वो खाद नहीं डालते, हम ऑर्गेनिक पे ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या ना वो खरपतवार ज्यादा आता है तो हमें उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसे में कोई तरीका है कि जिससे फसल भी अच्छी आए और खरपतवार भी बहुत कम आए?
0: जी जी डॉक्टर साहब
2: जी फहीम जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये ऑर्गेनिक आप डालते हैं, सबसे पहले तो उसमें जब आप गोबर की खाद डालते हैं वो अच्छी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें जो बीज हैं कुछ

0: जो भी पशु खाते हैं वो धान गेहूं क्या कहते हैं घास के जो बीज हैं उसकी वजह से वो खरपतवार आपकी ज्यादा होती है
1: जी।
0: तो इसके लिए आपको खरपतवार के लिए या तो खाद आपका अच्छी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए।
2: हेलो तो ये मतलब मुझे लग रहा उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा कर देते हैं तो बीमारियों का भी खतरा रहता है और फसल गिर भी जाती है।
0: बिल्कुल,
2: तो हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से जानना चाहिए कि कितनी नाइट्रोजन दी जाए, कैसे पता चले?
0: देखिए, एक तो जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो बनाया गया है कि कितनी उसमें नाइट्रोजन किस फसल में कितनी नाइट्रोजन डालनी है, जैसे हम लोग धान में गेहूं में 120 केजी नाइट्रोजन पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब डालते हैं तो लगभग वो 250 केजी के आसपास आता है। तो उससे ज्यादा अगर डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होगा।
2: इनफैक्ट वातावरण को भी नुकसान,
0: बिल्कुल वातावरण को नुकसान होगा, पैसे का नुकसान है और फसल को भी नुकसान है।
2: अच्छा, इसके अलावा फास्फोरस की जो हम बात करते हैं, कई किसान भाई अगर अपने आप बिना मिट्टी की जांच कराए डाल देते हैं, ज्यादा भी डाल देते हैं, तो क्या प्रभाव उसका हो सकता है?
0: फास्फोरस का देखिए सबसे अच्छा सवाल ये है क्योंकि फास्फोरस के प्रति जागरूकता भी मेरे ख्याल से किसान भाइयों में ज्यादा नहीं है। तो अगर जो किसान भाई डीएपी डालते हैं उनके तो ठीक है कि उसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, लेकिन जो सिर्फ यूरिया डालते हैं उनके लिए फास्फोरस अलग से डालना बहुत जरूरी है। तो फास्फोरस का क्या होता है कि जो हम कहते हैं अगर आपने मान लीजिए 100 केजी फास्फोरस डाला तो प्लांट सिर्फ जो पौधा सिर्फ आपका 15 से 20 केजी लेगा, बाकी का फास्फोरस जमीन में मिट्टी में फिक्स हो जाएगा
1: जी।
0: क्योंकि तो इसलिए आपने इसे पूछा कि अगर एक्सेस डाल दिया तो क्या, ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, वो पौधों को नहीं मिलेगा। तो मतलब मिट्टी में फास्फोरस तो है लेकिन पौधों को अवेलेबल उसको होता नहीं है।
2: रुक साहब, बीच में रुकना चाहेंगे, एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो
3: हेलो,
2: स्वागत है, नमस्कार कार्यक्रम में, आप कहाँ से बोल रहे हैं, परिचय दीजिए।
3: नमस्कार सर, मैं संतोष मिश्रा बोल रहा हूँ, मधुबनी बिहार से।
2: जी संतोष जी,
3: सर डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है, जैसे मैंने बैगन और भिंडी लगाया हूँ उसके जितने पत्ते होते हैं ना वो बीच बीच में छेद हो जाता है, किस कारण से होता है सर?
2: बैंगन और भिंडी में कह रहे हैं पत्तियों में छेद हो जाते हैं।
0: अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि पत्ती अगर ये हो सकता है कि कीड़े का भी प्रकोप हो इसमें।
2: हाँ,
1: तो वो कैसे पहचानेंगे मैम कि कीड़े का प्रकोप है या कोई पोषक तत्व की कमी है?
0: अब मैंने इससे पहले बताया था कि अगर जो पत्ते हैं वो निचले पत्ते हैं या कि ऊपर के पत्ते हैं।
2: बिल्कुल, यानी पोषक तत्वों की कमी की वजह से पत्ते के रंग पे असर पड़ेगा, ना कि वो कटे छटेगा।
0: नहीं कटेगा, अगर जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम की कमी अगर होती है तो वो निचले पत्तों पर होगा और बीच बीच में उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं।
2: नहीं नहीं, कट कह रहे हैं,
0: कट नहीं लगेगा, कट अगर है तो
2: कलर बदलेगा
0: जी।
2: तो हो सकता है कि किसी कीट का प्रकोप हो सकता है, और आज हमारा विषय तो पोषक तत्वों से जुड़ा हुआ है
0: जी।
2: तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो पोषक तत्वों से जुड़े सवाल ही हमें करेंगे, क्योंकि उसके एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो फास्फोरस की आपने बात करी, या पोटास की भी कर लेते हैं
0: जी। पोटास तो उसका एक ये है कि आपने पोटास डाला जितना पौधा लेगा, और उसमें पोटास की एक अच्छी खासियत है कि अगर एक्सेस भी पड़ गया, ज्यादा भी पड़ गया तो उससे पौधे को नुकसान नहीं होता है।
2: वैसे बताते हैं कि हमारे देश में पोटास की तो काफी मात्रा है जमीन के अंदर, काफी इलाकों में, कुछ इलाकों में ही कमी है, तो ज्यादातर हमारे किसान इसको नहीं देते हैं, तो क्या देना जरूरी है?
0: देना चाहिए। देखिए, ये जब मिट्टी की जांच हम भी करते हैं तो अभी तक तो ये दिख रहा है कि पोटास की मात्रा है जितनी चाहिए पौधों को, लेकिन अगर हम दे देंगे तो जितनी मात्रा जैसे 60 केजी प्रति हेक्टेयर का
2: सिफारिश,
0: 40 केजी प्रति हेक्टेयर का सिफारिश की जाती है,
2: अगर वो जांच करा के दें तो ज्यादा
0: बहुत अच्छा रहेगा। असल में सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करना वो बहुत जरूरी है, और अगर उसमें जो सॉइल पीएच, जो पीएच की रेंज है, पीएच मात्रा है, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है, ये बताता है कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट किस पीएच पर मिलेंगे, अगर है कि नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, खासतौर से हमारे किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपने पौधों की उचित देखभाल कर पाएं, लेकिन जैसे हमारा आज का विषय है वो जुड़ा हुआ है पौधों से, और पौधे फूल के भी हो सकते हैं, फल के भी हो सकते हैं, या किसी सब्जी के भी हो सकते हैं, तो ये सभी लोग लगा सकते हैं, चाहे किचन गार्डन करने

0: वाले करने वाले हमारे लोग हों या घर में फूल लगाने वाले कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं, तो उनके लिए मिट्टी की या खाद पानी की किस तरीके से वो देखभाल करें? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग जो अपने घरों में पौधे लगाते हैं उसमें बिना जांचे बिना समझे उसमें कुछ भी खाद पानी या कुछ भी पोषक तत्व डाल देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ज्यादातर तो वो देसी खाद ही डालते हैं।
2: जी जी जी हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी लेकर आते हैं तो उसकी कहाँ वो जांच कराएंगे।
0: जी,
2: तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो कोई अगर सीरियसली चाहते हैं कि वो किचन गार्डन कर रहे हैं, तो एक पॉकेट पीएच मीटर आता है, छोटा सा पीएच मीटर आता है, इसी मीटर होता है, तो उसमें आप मिट्टी को घर में भी जांच कर सकते हैं। आप 1 ग्राम या नहीं 20 ग्राम मिट्टी लीजिए, उसको पानी में घोलिए और उसको आप पीएच चेक कर सकते हैं, तो उससे आप एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि इसमें पीएच कितना है।
1: एसिडिक है कि अल्कलाइन है?
2: बिल्कुल, और जो जितने हमारे तत्व हैं इसको ज्यादा 6 से 7 पीएच के बीच में लगभग सारे ही मिलते हैं पौधों को।
1: अगर ज्यादा पीएच है तो फिर कम मात्रा,
2: ज्यादा पीएच है तो उसमें कुछ जो हमारे तत्व हैं पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, जो जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारे उनकी कमी हो जाती है, और कम पीएच होगा तो भी कुछ तत्वों की कमी हो जाती है,
1: क्योंकि भूमि क्षारीय हो जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो अभी हमने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की बात करी, और आपने बहुत ही दो महत्वपूर्ण और भी बताए हैं, कैल्शियम और सल्फर।
2: जी,
1: इनकी कमी से जैसे तिलहनी में आपने खास तौर पे बताया है, तो क्या नुकसान होते हैं अगर इनकी कमी होती है?
2: अगर सल्फर की कमी होती है तो जो यील्ड है तिलहन की उसमें कमी होती है।
0: जी,
2: जो सीड यील्ड है
1: तेल, उसमें तेल, की मात्रा।
2: तेल की मात्रा की कमी हो जाती है।
0: जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद, और फिर करेंगे विषय से संबंधित और भी बहुत सारे सवाल जवाब।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं कि पौधों में पोषक तत्व की कमी और उसका निदान आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इंसान के शरीर को सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयां लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पौधों के लिए भी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है, उनमें भी उनको भी बहुत सारी जरूरत होती है। तो वो कमी आप किस तरीके से पहचाने और किस तरीके से उस कमी को दूर करें और कैसे उनकी जो एक समान स्थिति है वो बनाए रखें, इन सभी जानकारियों को लेकर आज हम आए हैं अपने इस कार्यक्रम किसान की बात में। पौधों में पोषक तत्वों की कमी और उसका निदान विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर रेणु पांडे, आप वैज्ञानिक है पादप कार्य के संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: हाँ तो डॉक्टर साहब, हम जैसे जिक्र कर रहे थे आयरन का, कोमल ने भी जिक्र करा, इंसानों के अंदर जिक्र होता है कि भाई आयरन की कमी है, डॉक्टर साहब बताते हैं तो गोलियां लिखती हैं, और आपने बताया कि पौधों के अंदर भी आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी को कैसे पहचाने और इसको कैसे पूरी कर सकते हैं?
5: जी, ये आयरन की कमी होती है जब मिट्टी का पीएच

0: बहुत ज्यादा होता है, और पौधों में इसकी कमी जो है नए पत्तों में होती है। ज्यादातर पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा कमी अगर हो गई तो बिल्कुल कागज की तरह सफेद हो जाएंगे पत्ते।
1: जी
0: तो उस वक्त क्या होता है कि अगर ज्यादा लंबा चल गया, अगर आपने आयरन नहीं दिया तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है वो बना ही नहीं है। और इसका निदान के लिए क्या है कि इसमें अगर आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर फेरस सल्फेट स्प्रे कर दें तो वो रिकवर हो जाता है पत्ता।
1: फेरस सल्फेट जो उर्वरक है
0: जी
1: उसको डाल देंगे तो उससे होगा।
0: जी
1: अच्छा, एक सवाल और आता है। आपने जैसे कि पीछे बताया अभी कि पौधों की कमी में, पौधों के अंदर पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो उसके नीचे वाले पत्ते सूखने लगते हैं। हमें पता लग गया कि हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, और पौधा अलग अलग स्टेज में हमारे होते हैं, जिस स्टेज में भी उस पता लगता है, तो क्या हम तुरंत उस समय भी उसमें खाद अप्लाई कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, 2 तरीके खाद अप्लाई करने के भी। एक तो आप मिट्टी में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली उसको स्प्रे कर सकते हैं। अब मिट्टी में डालेंगे तो क्या है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो जड़ों से लेगा ऊपर, और फिर वो पौधा जड़ से ऊपर जाएगा, पत्तों में जाएगा, वहां पर अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, तो उसमें वक्त
1: टाइम
0: लगेगा।
1: लगेगा।
0: बिल्कुल। तो जैसे डायरेक्ट डॉक्टर हमें डायरेक्ट इंजेक्शन देता है तो उसी तरह ब्लड में चलाता है, वैसे ही आप उसको अगर स्प्रे करें, फोलियर स्प्रे जो कहते हैं, पत्तों पर छिड़काव करेंगे
1: जी,
0: तो वो उससे जल्दी रिकवर होता है। और इसके लिए अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप 2% यूरिया स्प्रे बना करके उस पर छिड़काव कर सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कई बार कि हमारे जो किसान हैं या जो पौधे जिन्होंने भी रखे हैं वो किसी भी समय पर खाद दे देते हैं बिना जांचे बिना समझे। तो सही समय क्या होता है, और क्या एक ही खाद सभी पौधों के लिए लागू हो जाती है? क्या वही खाद सभी पौधों में दी जा सकती है, या उसको अलग अलग किस तरीके से दिया जाए?
0: देखिए, खाद तो अलग अलग स्टेज होता है। जैसे अगर हम
2: जैसे गमले में लगे हुए पौधों की थोड़ी जरूरत अलग होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उस पे तो आपको बहुत ही कम देना पड़ेगा, और उसमें क्योंकि आपने एक बार लगाया तो आप दोबारा नहीं उखाड़ेंगे
2: जी।
0: अगर वो एनुअल प्लांट है, जैसे वार्षिक मतलब फूल वाला लगाया है, तो आपने जब लगाया उस वक्त उसे थोड़ा खाद दे दीजिए, और कुछ गोबर की खाद के साथ थोड़ा सा यूरिया और फास्फोरस, ये सब दे सकते हैं।
1: और वैसे भी जो खेत में फसलें उगाई जाती हैं उनके मुकाबले में बहुत कम मात्रा में गमलों में जरूरत होती
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि फास्फोरस की जो बात हम करते हैं, जड़ों के विकास के लिए जरूरी है। किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं, चाहे वो सब्जी बो रहे हैं या खाद्यान्न बो रहे हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, तो खेत की तैयारी के टाइम में खासतौर पर उसे देते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि उसका तरीका क्या होना चाहिए। कई लोग तो उसका भी छिड़काव कर देते हैं, या उसको पौधे की जड़ के नीचे डालना चाहिए, या यूरिया के साथ ही ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कई भाई, तो क्या सही तरीका है?
0: देखिए, सही तरीका खेतों में जो लगाते हैं फसल, तो उसमें जब खेत की तैयारी करते हैं तो पोटास और फास्फोरस, अगर आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, तो ये दोनों को आप जमीन में, इसको हम बेसल डोज कहते हैं, वो डालिए, और यूरिया का 50% डालते हैं जब हम बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त।
1: नहीं, जड़ के नीचे होना चाहिए या ऊपर डालना चाहिए?
0: नहीं, जड़ के नीचे, अगर जड़ के नीचे डाले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हल के साथ, जैसे बीज के साथ साथ डाल रहे हैं, तो वो फरो में जो कहते हैं उसमें डालते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा
2: जी। डॉक्टर साहब, आप पूसा से हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हैं, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय समय पर जो है कुछ और जानकारियां भी चाहिए होती हैं, तो क्या पूसा की कोई ऐसी हेल्पलाइन या कुछ ऐसी जो मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे कि हमारे श्रोता जो है वो उनसे सीधे तौर पर जुड़ सके, या वो उन्हें ज्यादा अच्छी से समस्याओं का समाधान दे सके समय समय पर इस विषय से जुड़े हुए, अगर कुछ है तो उसके बारे में?
0: जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमारे पूसा का अपना एक YouTube पर पूसा समाचार चैनल है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इस पर हर शनिवार को, जैसे आज भी शनिवार है, हर शनिवार को इस पर एक नया एपिसोड डाला जाता है, और ज्यादातर ये जो अभी सीजन चल रहा है उसके हिसाब से डाला जाता है,
2: और समसामयिक कार्य उसमें बताए
0: जी जी, जी। और इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर आप लिख लें नंबर, इसमें क्या होगा कि आपके पौधों में कुछ भी, अगर खेती किसानी से कुछ भी चीज अगर होता है, तो आप फोटो खींच करके आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारे ग्रुप में घूमता है, इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो जिसको भी जिस इसका पता है वो उसका निदान बता देते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको शेयर कर देती हूं
2: जी,
0: 9560297502।
1: एक बार फिर से रिपीट कर देंगे,
0: 9560297502।

0: यानी कि ये वो नंबर है पूसा का, जिस पर आप अपने जो भी आपने पौधा लगाया, फसल लगाई है, उससे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है या उसे किसी बीमारी ने घेर लिया है, तो आप अपने पौधे की फोटो खींचे और आप इस पर भेज सकते हैं।
1: कोमल जी, हिंदी में भी बता दीजिए एक बार
0: जी। 9560297502 ये पूसा का हेल्पलाइन नंबर है और आप इस पर कभी भी मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जब हम किसान भाई देते हैं, जितने भी सारे हम फर्टिलाइजर देते हैं, इससे हमारे पर्यावरण को अगर ज्यादा मात्रा में दे देते हैं तो क्या नुकसान पहुंच सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अब नाइट्रोजन डालते हैं, ज्यादा यूरिया डालते हैं, तो वो यूरिया हो या फॉस्फोरस हो, वो चला जाता है जमीन के अंदर, और अंदर जो पानी है हमारा, जिससे हम वापस ऊपर लेके पीते हैं, वो पानी कंटामिनेट हो जाता है, तो कई तरह की बीमारियां होती है। वैसे ही फॉस्फोरस जो है वो अगर ज्यादा डाल दिया तो वो सरफेस रन ऑफ होता है, जब पानी के साथ बह करके तालाब में या नदियों में चला जाता है, तो वहां पर भी जो ये शैवाल की ग्रोथ हमने देखा है, बहुत सारे उस तरह से मछलियां भी उसमें तालाब में मर जाती हैं, इस वजह से कि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है।
1: अच्छा, समय की बाध्यता है, हम ये जानना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए कि वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो उर्वरकों और खादों के इस्तेमाल करते वक्त हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए।
2: सबसे पहले तो किस तरह की खाद डाल रहे हैं, राइट फर्टिलाइजर, किस वक्त डाल रहे हैं, राइट टाइम, मतलब जो पौधे की किस वक्त कितनी ग्रोथ, किस स्टेज में डाल रहे हैं, पौधों की जरूरत है उनको, और राइट प्लेस, मतलब कि सही जगह पर डालना है, कि अगर आप जड़ में डाल रहे हैं या आप सीधा छिड़काव कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है
0: जी। यानी कि सही समय पर सही खाद का और सही जगह पर उसका उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब ये जो सही समय आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को जो है वो यहीं पर समेटें, समय की बाध्यता है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। लेकिन डॉक्टर रेणु पांडे, आप स्टूडियो में आई और हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, इतने सहज भाव से हमें समझाया, हमारे कॉलर्स के जवाब दिए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: जी। और निरंकार, अब जो हमारे कार्यक्रम का समय है वो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन चलते चलते हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आज हमने जितना भी सीखा कि पौधों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनके छोटे छोटे से निदान हैं, और ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि बस हमें जरूरत है तो बस उन्हें समझने की। याद रखिए, जैसा पोषण होगा वैसे ही आपके पौधे की बढ़त भी होगी। तो इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम किसान की बात से मुझे यानी कोमल
1: और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का

0: कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबर सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से 4 दिन के दौरे पर म्यांमार में हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ जनरल ये विन यू, रक्षा मंत्री जनरल यू हट्युन आंग और म्यांमार सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bakshi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bakshi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. He noted that every counting table already has agents, supervisors and observers, and questioned concerns over the presence of central government employees. Repolling is underway at 15 booths in South's 24 Parganas district in West Bengal. Of these, 11 booths are in Paschim Magrahat and 4 in the Diamond Harbour Assembly constituency. The Election Commission has recorded the overall voter turnout of nearly 56%.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा।
2: नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
3: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। तो 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है, अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है, मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब भी डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था, उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनुभाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनुभाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई। तो चिनू भाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कांटेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
2: तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
3: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया। तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान का महत्व समझाया।
2: उनका रिएक्शन कैसा था जब
3: उसका लोगों? वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है और आप जब भी ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी और वो परिवार ने हाँ कहीं।
2: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान स्टार्ट हुआ, जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मरण हुआ था। तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, और जब मैं आप डॉक्टरों से बात की तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
3: लोपा जी, उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं, जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत की स्मिमेर अस्पताल

0: बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था, वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड़ की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो जो बच्ची है वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था, और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी। और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी, और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का उनके किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया, और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी।
1: ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, से बात की और आंखों में आंसू आ गए?
0: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना, और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आक्रन है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना, और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हर एक केस अलग अलग है। लेकिन मुझे 2 केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था, और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया, और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के माता पिता को, के जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग है, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए है, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ, और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसे बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था, तो अक्टूबर 2021 में जो लड़का था, वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
1: ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
0: नहीं, मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी, और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके, और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ, और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है, और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर 1 साल के बाद मैंने हाँ कही। हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई, बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे, और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड के लिए आपका नाम गया, जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स और आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन

0: में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेनडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेनडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है।
1: आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे?
0: लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं, जो पार्थिव देखा, वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वड़ाप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिनेश भाई माल्यवाला जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की तो वो बताया और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

3:25 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है साहब। और शनिवार की बहुत ही जबरदस्त गर्मी भरी दोपहर में आपसे मिलने आपकी दोस्त सीमा वर्मा आई है। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गर्मी जितनी ज्यादा है उतना हमारा ये अंदर ख्याल भी ज्यादा है कि हमने अपना पूरा ध्यान रखना है। तो पानी की बोतल, छतरी या टोपी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप हाइड्रेटेड रहें। और अब और ज्यादा ज्ञान नहीं बता दूं आपको कि आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम मन भावन से। जो मन को भाता है वही जुबां पर आता है। हमें मेल करने के लिए fmgoldairdelhi@gmail.com है जी, fmgoldairdelhi@gmail.com, जिस पर आपको अपनी फरमाइश भेजनी है। और अगर कारण भेज देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, थोड़ा मजा आ जाता है। जाने तो सही कि काहे आप ये गीत आज सुनना चाहते हैं, लेकिन हर बार की तरह पहला गीत सीमा की तरफ से।

इसे भी देखिए, अपनी अपनी आदत कहा जाता है। कई बार दिल में तकलीफ होती है तो आप 10 लोगों के सामने अपने दिल का दर्द खोल कर रख देते हैं, ऐसा होता है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिल भरा हुआ होता है लेकिन फिर भी किसी के आगे कुछ नहीं कहते। तो ये एक अलग, बहुत ही डिफरेंट सी बात है। हर आदमी ज़िंदगी को एक अलग अंदाज से जीता है। और वैसे भी दर्द की अगर बात चली है इस गीत में, तो किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, किसी ने हमसे पूछा कि कैसे हो, हमने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां जो भी आएं, आप बस शांति से, धैर्य से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि समय का एक बहुत खूबसूरत एक एंगल क्या होता है कि ये बदलता रहता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके जो संदेश हैं, आपके मैसेजेस हैं।

पर हमारी नजर बिल्कुल टिक गई है साहब। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी हैं, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ नाम और भेजे हैं। नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति हैं, राधे हैं और दीपक हैं इनके साथ। एक और नाम है श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। तो ये इन्होंने हमें अपने नाम भेजे हैं। अच्छा, मैं ना पता क्या महसूस कर रही हूँ कि आपके जितने भी मैसेजेस हैं ना, आप बस उसमें लिख दे रहे हैं कि हमारा नाम शामिल करिए किसी भी गीत के साथ। अगर आप सब यही लिखते रहेंगे किसी भी गीत के साथ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसने कौन सा गीत सुनना है। तो थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डालिए और बताइए कि कौन सा गीत सुनना है आपने, कौन सी फिल्म का गीत सुनना है। यहाँ पर एक और आया है जी मैसेज, आशा नारंग है इनके साथ, सुरेश नारंग है और ये आया है जी हमें सहारनपुर से। और ताज मोहम्मद साहब गुलाम साबिर राही हैं, ये महराज जहाँ हैं और आज़ाद नगर हरिद्वार से इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। अगला संदेशा हम पढ़ रहे हैं, कुम्हार हिड़ा सहारनपुर से ये आया है संदेशा। सैयद मसरूर साहब हैं और शाइना हसन हैं, नाजिया हैं, इब्राहिम हैं। और अगला संदेशा जी पंजाब से आया है, हरजिंदर छिंदा हैं इनके साथ, जसवीर हैं और सीता और गीता भी हैं। चलिए पंजाब की बात करिए तो चंडीगढ़ भी ज़्यादा दूर नहीं है, बात कर ही लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा साहब हैं, रितिका मल्होत्रा हैं, प्रतीक हैं, अनिल हैं, जयवीर हैं, साथ में डॉक्टर अमनदीप हैं और कालका से इन्होंने दो तीन नाम और भेजे हैं, शुभ चंद्र बजाज हैं, साहिल हैं और बिट्टा बजाज हैं। तो चलिए नाम बहुत सारे मैंने ले लिए हैं, अब बारी है एक गीत की। गीत अपने दौर के बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार फिल्म का है और जो लोग 60s में फिल्में देखने के शौकीन होंगे वो फट से पहचान जाएंगे कि कौन सा गाना है।

कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सितार का पीस देखिए इस गाने में हमने सुना। चलिए अब रफ़ी साहब के इस गाए गीत के बाद कुछ आपके जो मैसेजेस हैं उन्हें एक बार फिर से उन पर नज़र डालते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको वो ईमेल आईडी बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, जिस पर आप हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप मैसेज नहीं करेंगे तो फिर ये प्रोग्राम जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो fmgoldairdelhi@gmail.com, और ये भी याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं FM Gold 100.1, और ये भी याद दिला दूं

शनिवार की साथी आपकी दोस्त सीमा वर्मा आपके साथ है। तो अब अगला संदेशा लेना है मुझे, और एक के बाद एक बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, आपने हमें छत्तीसगढ़ से ये संदेशा भेजा है और आपने अभी गाने के बोल भी लिख दिए हैं। ऐसे ही कीजिए, ऐसा ना कहें कि आप किसी भी गाने में शामिल कर लें, भेज दीजिए अपनी फरमाइश, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कितने भी नाम ले लूं फरमाइश किसी एक की होती है, लेकिन हर बार की तरह मैं सच बता रही हूं कि अच्छा लगता है किसी और की फरमाइश अपनी फरमाइश बना लेना। महाराष्ट्र से हमारे पास दिलीप रामेकर जी का संदेश आया है, इनके साथ कुछ नाम और हैं, हर्षा हैं, अक्षय हैं और रुद्रा हैं, इनके साथ रुचिका हैं और इनके साथ है पूरा का पूरा रामेकर परिवार। और एक और संदेशा है, इसको भी ले लेते हैं, गुंज डुंडवारा से ये है, शमशूर कंवर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं और एक दो नाम इन्होंने और दिए हैं, इनके साथ अदनान खान हैं और अनु खान हैं इनके साथ। और अब मुझे लग रहा है कि एक गाना चलाना ज़रूरी है, लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो नाम पढ़ना शुरू किए हैं, है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र से एक और मैसेज ले लेते हैं। सोपान जी हैं, वसंत राव जी हैं और निवृत्ति हैं, इन्होंने हमें महाराष्ट्र से ये संदेशा भेजा है। एक संदेशा हम और लेना चाहेंगे, ये हमें भेजा है विकासपुरी से विशाल ने। विशाल 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और इन्होंने लिखा है कि वैसे तो मैं उत्तम नगर में रहता हूं, लेकिन विकासपुरी में मैं एक शॉप में काम करता हूं और काम भी करता हूं, अपनी पढ़ाई भी करता हूं। और ऐसे ऐसे संदेशे पढ़ने के बाद साथियों बहुत अच्छा लगता है जब छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह अपने घर की जिम्मेदारी जो है उसे संभालते हैं और इस बात को समझते हैं कि माता पिता जो हैं वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हैं। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अब देखिए मई का महीना आ गया है, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो बिल्कुल पड़ने वाली हैं, कुछ को तो पड़ भी गई हैं, छोटे बच्चों की सबसे पहले छुट्टी पड़ जाती है ना, तो आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ सीखने की इन छुट्टियों में, कोई काम कीजिए, कोई हाथ का काम सीखिए, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि छुट्टियों के बाद आपको लगे कि छुट्टियों का हमने पूरा पूरा फायदा उठाया है। विशाल के फादर हैं जिनको ये गाना बहुत अच्छा लगता है, तो विशाल की तरफ से उनके पापा के लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

FM Gold 100.1 में आप हैं सीमा वर्मा के साथ। और जी समय बता दूं आपको, अब आप कहेंगे कि समय क्या बता रही हैं सीमा, समय तो अब ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है मुट्ठी में है जी, और उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। 3:48:10 आप मन भावन प्रोग्राम में हैं, मैं अपना नाम बता चुकी हूं और FM Gold AIR Delhi @gmail.com

com, जिस पर आप हमें अपना संदेशा भेजेंगे। अगर कोई कहानी है तो भी आप बताइए, और कारण है तो भी बताइए, नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फरमाइश है उसे भेज सकते हैं। नईम खान साहब, कैसे हैं आप? आपने हमें ये मैसेज किया है, विष्णु गार्डन में आप रहते हैं और आपके साथ अस्मा है, अनिशा है और अर्शिल है। तो ये हमने मैसेज पढ़ा और अगले मैसेज के लिए आगे बढ़ते हैं। एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और हरजिंदर सिंह भाटिया जी जमशेदपुर से हमें ये संदेशा भेज रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और संदेशा है, छत्तीसगढ़ से आया है, कौशल्या देवगन है, इनके साथ हेमलता है, रोशनलाल देवगन है। और उत्तम नगर की अगर हम बात करें तो उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल जी हैं, कमला रानी हैं, गीतिका हैं और भानु है। अब जी अगला संदेशा जो है वो जो संदेशा है उनकी पसंद का गीत बिल्कुल तैयार है। और अब आप कहेंगे कि इन्हीं की क्यों पसंद का गीत है, क्योंकि इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। इनका नाम है किशन वंजानी और इन्होंने कहा है कि आज इनकी जो मित्र हैं जिनका नाम सुमन महाजन है, आज उनका जन्मदिन है, और जिनका जन्मदिन होता है उनकी पसंद तो बजनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी पसंद जो है वो तो वो सुनती ही रहती हैं, है ना, वो सुनती ही रहती हैं अपनी पसंद, लेकिन हम कुछ अगर अपनी पसंद का उन्हें सुना दें एज अ बर्थडे गिफ्ट तो कैसा रहे? किशन साहब क्या ख्याल है, आइडिया अच्छा है ना? सुमन जी, आज आप कितने साल की हो गई हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपका बचपन आपको याद दिला देते हैं गिफ्ट के तौर पर।

सच में बचपन के दिन जब याद करते हैं तो ये लगता है कि उससे अच्छे दिन शायद जीवन में और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर जो भी हमें मिला वो एक मासूमियत जो होती है बचपन की, वो साथ रहती है हमेशा। और इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो अपना बचपन है पूरी तरह एंजॉय करने दीजिए। अब छोटे बच्चे हैं तो यहाँ वहाँ फैलावा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, करने दीजिए, शैतानी जैसी भी करते हैं, क्योंकि ये बचपन के दिन दोबारा लौट कर नहीं आते। उत्तर प्रदेश से हमारे पास आफताब अंसारी जी का संदेश आया है। इनके साथ रियाज अंसारी हैं, मोहम्मद कैफ हैं, अनवर मास्टर हैं और लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हैं। इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जी सतीश अनेजा जी हैं जो हमें चंडीगढ़ से मैसेज करते हैं, और इनके साथ बिमला अनेजा हैं, और दोनों मिलकर प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। एक बार पुनः आप जान लें, fmgold@delhi.gmail.com, समय तो अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि चलिए कोई नहीं, अगर जितने लोग इसे कर लें। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु हैं जी, इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। और अगर हम आगे देखें, भारत भूषण साहब, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण हैं, ये संस्कृति हैं और पौरुष हैं, ये हमें बेंगलुरु से संदेशा भेजते हैं। और एक बहुत सुंदर सा, बहुत खूबसूरत सा गीत आपके लिए बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन के पास है। यहाँ पर साधना रानी है, किशोर गुप्ता है, इन्होंने हमें कहाँ से संदेशा भेजा है न जाने कहाँ से भेजा है, चलिए नाम तो मैंने ले ही लिया है। और जो गीत मैं आपको कह रही थी, गीत भी बिल्कुल तैयार है और ये मैंने प्ले किया आपका गीत।

जी तो चाहता है आपके संदेश से पढ़ती रहूं, लेकिन वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, अब वक्त कह रहा है कि सीमा इजाजत ले लो। तो चलिए आज मन भावन प्रोग्राम से सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए। आप साथ रहिए एफएम गोल्ड 100.1 के। कुछ ही देर में हम समाचार सुनेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष

4:11 और पूरे 10 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपकी मनपसंद FM गोल्ड 100.1 पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपकी मुलाकात मुझसे यानी सीमा वर्मा से होगी। कार्यक्रम रहेगा गाते गुनगुनाते, जिसमें 80 और 90 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत आप और हम मिलकर सुनेंगे। मेरी मुलाकात आपके साथ 6:00 तक रहेगी। शाम 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में आप समाचार सुनेंगे और 6:10 पर सदाबहार गीत आपके साथ रहेंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर शाम आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। वहीं 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 हिंदी में समाचार होंगे, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर आप कौन सा कार्यक्रम सुन सकते हैं आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत 1956 की फिल्म नया अंदाज

0: स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता रहे थे आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं, और अगर हम फिल्मी गीतों की बात करें तो 7:25 पर शाम सांझ ढले सुनना ना भूलिएगा। इसमें आपके साथ रेशमा रहेंगी और कुछ बातें साथ कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत रहेंगे। 8:10 पर कार्यक्रम मधुरिमा आप सुन सकते हैं। रेशमा एक बार फिर आपके साथ होंगी और इस प्रोग्राम की खासियत यह होती है कि इसमें जो गीत हम आपकी नज़र करते हैं, ये गीत किस राग पर आधारित है उसका थोड़ा सा विस्तार हम जरूर करते हैं। 10:30 रात हर श्रृंगार कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें फिरोज आलम आपके साथ रहेंगे और कुछ प्यारे गीतों के साथ वो इस सफर को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। रात 11:10 पर गीत मेरे मन मीत, सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम फिरोज होंगे आपके साथ। तो ये तो एक हमने रूपरेखा बताई आपको आज के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। साथियों, हमने शुरू में कहा था कि 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज सुनेंगे, वक्त हो चला है, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। वी बिगिन विथ NTPC Green Energy Limited, a subsidiary of NTPC Limited, has invited online applications from experienced professionals for various posts in renewable energy sector, including Deputy General Manager RE with 14 vacancies, Deputy General Manager Finance with 2 vacancies, Assistant Manager RE with 28 vacancies, and Assistant Manager Finance with 2 vacancies. And the pay scale ranges between 50,000 to 1,60,000 E2 to 90,000 to 2,40,000 E6. Interested candidates can apply online through the official website. The online application process will close on 5th May 2026. All updates are available on the website, that is www.ngel.in. Indian Railways through Railway Recruitment Boards has issued an indicative notification for recruitment of 11,127 assistant loco pilots posts in Level 2 with initial pay of 19,900 rupees. Candidates aged between 18 to 30 years may apply online till 14th June 2026. For full details, kindly visit the website, that is at www.rrbapply.gov.in. I repeat the website, that is at www.rrbapply.gov.in. Inland Waterways Authority of India has invited applications for one post of section officer on deputation basis for an initial period of

0: 3 years. Eligible candidates from central, state governments, PSUs or autonomous bodies can apply through proper channel within 45 days from the date of publication in the Employment News. Applications must be sent to IWAI Noida, and for further details are available on the website, that is at www.iwai.nic.in. The website is, I repeat, www.iwai.nic.in. Indian National Centre for Ocean Information has invited online applications for regular posts, including scientific assistant, 3 posts, through direct recruitment, and scientist C, 2 posts, on deputation basis. Detailed eligibility, qualifications and application procedures available at https://vacancies.incois.gov.in. The last date for applying is 11th May 2026. Now repeat the website, kindly note, it is www.incois.gov.in. University of Delhi has invited online applications for the post of Assistant Professor in the Centre for Studies at Academic Pay Level 10. Interested candidates can apply through prescribed format within 2 weeks from the date of this advertisement in the Employment News. The detailed information is available on the website, that is at www.du.ac.in. The Central Medical Services Society, CMSS, functioning under the Ministry of Health and Family Welfare, invites applications for the post of Joint Director, General Manager, Quality Assurance, on deputation or contract basis, offering a pay level of 12 or a consolidated monthly remuneration of 2 lakh rupees plus PF. The maximum age limit is 56 years on deputation and 55 years for contract appointments. Applications must reach CMSS by 5th May 2026. Detailed information and application forms available via email or on the official website at www.cmss.gov.in, or you could also go on to www.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय CRCS में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पंजीयक स्तर 13, 2 पद, संयुक्त पंजीयक स्तर 12, 5 पद, उप पंजीयक स्तर 11, 2 पद, सहायक पंजीयक स्तर 10, 1 पद और वरिष्ठ सहकारी अधिकारी स्तर 7, 2 पद। अधिक जानकारी, आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता और अन्य नियमों और शर्तों के लिए कृपया सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.cooperation.gov.in पर लॉगिन कीजिए अथवा देखिए वेबसाइट www.crcs.gov.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राध्यापक कुल पद 7, जिनमें से 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और 1 पद EWS वर्ग के लिए तथा 2 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं। सहायक प्राध्यापक के कुल 28 पद हैं, जिनमें से 11 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जबकि EWS वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए अवश्य देखिए ये वेबसाइट www.iiscr.tirupati.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026।

0: अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए सीधे साक्षात्कार के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद हैं पुनर्वास क्लिनिकल मनोविज्ञानी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, प्रशिक्षित केयरगिवर, दिव्यांग मित्र, आया क्लीनर और गतिविधि शिक्षक। सीधे साक्षात्कार के लिए निर्धारित स्थान है AYJNISHD बांद्रा पश्चिम रिक्लेमेशन मुंबई। सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावित तिथि है 7 मई 2026। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ पदों के लिए सीधा साक्षात्कार अहमदाबाद गुजरात में लिया जाएगा और उसके लिए तिथि 8 मई 2026 है। दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 9:30 से 11:30 के बीच होगा और सीधे साक्षात्कार का समय रहेगा सवेरे 11:30 से 5:30 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखिए वेबसाइट AYJNISHD.NIC.IN। ईमेल का पता रहेगा AYJNIHH-MUM@NIC.IN। दूरभाष पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष नंबर है 02269102100। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन संलग्न कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक के पदों को भरने के लिए पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, पदों का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए अनुसंधान विभाग की वेबसाइट dhr.gov.in/vacancies। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, इट वॉज बुद्ध पूर्णिमा यस्टरडे एंड दिस ईयर इट वॉज एन इवन स्पेशल वन एज फॉर द फर्स्ट टाइम द सेक्रेड रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्ध विच आर यूजुअली हाउस्ड एट द नेशनल म्यूजियम इन हियर इन दिल्ली हैज बीन ब्रॉट टू लद्दाख फॉर पब्लिक व्यूइंग। And in the land of high passes in Ladakh, where the mountains seem to touch you and are quieter than the rest of the country, the sacred exposition of the holy relics of Gautam Buddha has brought with it a different kind of stillness, offering a rare opportunity for pilgrims, monks and locals to pay homage. The event has been described as a major, deeply spiritual occasion for the region's people to connect with the teachings of Lord Buddha. Devotees and tourists can in this season now pay their respects, and this will certainly spiritually be an enriching experience for all the visitors. So why not make a plan to visit Ladakh this season, Mukesh? Escaping the sweltering heat of the cities down here. है ना, तो ये सब तो हुई इन्फॉर्मेशन वाली बातें। एंड शैल वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस नाउ?
1: बिल्कुल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार।
2: रीपोलिंग

0: The way at 15 votes of two assembly constituencies of West Bengal, over 55% voter turnout reported till 1 p.m.
1: लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए चार संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया.
0: इंडिया एंड नेपाल डिस्कस फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल अहेड ऑफ द अपकमिंग मॉनसून सीजन.
1: मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान.
0: एंड इन आईपीएल क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस दिस इवनिंग. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Mukesh, today we will talk about World Tuna Day. Today's broadcast marks a globally significant occasion. It's May the 2nd, celebrated worldwide as World Tuna Day. It serves as a call to action to protect tuna populations, with 33.3% of the seven main tuna species previously fished at sustainable levels. Now, you might be wondering, why tuna? So, of all the species in the ocean, why dedicate an entire international day to this one fish? Stay with us as we dive deep into the story of tuna, its journey in the ocean, its incredible nutritional value, the environmental challenges it faces, and the inspiring global efforts working to secure its future. So, tuna are among the ocean's most remarkable creatures. Built for speed and endurance, these powerful fish can swim across entire oceans, maintaining warm body temperatures even in cold waters, a rare trait among fish. There are several species of tuna, including skipjack, yellowfin, albacore, and the prized bluefin. Each plays a vital role in marine ecosystems and global fisheries. Tuna is not just a fish, it's a global commodity, a cultural staple, and for many communities, it's a lifeline.
1: बिल्कुल, टूना एक मुख्य भोजन भी है और आपकी प्लेट पर जब टूना पोषक तत्वों का खजाना होती है तो आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. आइए इसे आपके घर, आपकी रसोई के और करीब लाते हैं. चाहे वो कोई झटपट बनाने वाला सैंडविच हो, सलाद हो या किसी खाने का हिस्सा हो, ट्यूना दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है. और ये सिर्फ बनाने में आसान नहीं है बल्कि ये बेहद पौष्टिक भी है. और यहां बताया गया है कि पोषण विशेषज्ञ अक्सर ट्यूना खाने की सलाह क्यों देते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है. ये सेहतमंद फैट सूजन कम करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने और यहां तक कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं. इसके अलावा बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर होता है. ट्यूना सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा विटामिन B12 का ये खजाना है. ये ऊर्जा बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है. और साथ ही खनिजों से ये भरपूर है. इसमें सेलेनियम भी शामिल है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. और आयोडीन भी है जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत जरूरी है.
0: And for people seeking affordable, high-protein diets, canned tuna has become a reliable and accessible option worldwide. But as demand grew, so did the pressure on tuna populations. And a few decades ago, the popularity of tuna came at a cost. With rising global demand, fishing fleets expanded rapidly. And in many parts of the world, weak regulations and fragmented management led to its overfishing. Some tuna stocks began to decline at alarming rates. By 2017, only about 75% of tuna catches came from sustainable, healthy stocks, and the rest were under serious pressure. The situation raised urgent questions. Could tuna disappear from our oceans? Could the entire fishing communities lose their livelihoods?
1: लेकिन अभी उम्मीद बाकी है. यहीं से कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है. जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि एक कार्रवाई के लिए एक पुकार थी. सरकारें, वैज्ञानिक और मछुआरे सभी पहले कभी न देखे गए अंदाज में एक साथ आए. खाद्य और कृषि संगठन जैसे संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के बीच तालमेल बनाया. ट्यूना मछली के प्रबंधन से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा.
0: Now let us now talk about a global turnaround story. The results of these measures, which were like, today an estimated 99% of commercial

0: commercial tuna catches come from stocks that are scientifically assessed as sustainable. And out of 23 global tuna stocks, only two remain overfished. Even more inspiring is that species like Atlantic bluefin tuna, once nearly absent, are now returning to waters off southern England and Ireland. This is one of the rare environmental success stories where global cooperation truly worked.
1: तो आइए अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल फिशिंग कैसे काम करती है. तो हमने हालात को ठीक कैसे किया है, आइए उन मुख्य तरीकों को समझते हैं और आज सस्टेनेबल ट्यूना फिशिंग को आकार दे रहे हैं. इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के तरीके की. ये पहले से तय किए गए नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि कितनी फिशिंग की जा सकती है. फिशिंग का सीजन शुरू होने से पहले वैज्ञानिक पॉलिसी बनाते हैं और मछुआरे मिलकर काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि फैसले डेटा पर आधारित हों, ना कि अचानक लिए गए हों. इसके अलावा मॉनिटरिंग, कंट्रोल और निगरानी भी इसमें काम करती है. आजकल की फिशरीज में नियमों का पालन पक्का करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग, नाव पर मौजूद ऑब्जर्वर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. अब गैर कानूनी फिशिंग को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है.
0: Right, some there are some more practices, and these include the further mentioned measures like reducing bycatch. And now, what is bycatch? When unintended species like turtles, sharks, seabirds, and whales get caught, it has long been a major issue. Innovations also include like circle hooks that reduce turtle capture, bird scaring lines to protect seabirds like albatrosses, modified nets that allow non-target species to escape. And of course, there are eco-friendly practices also. Fishing gear and techniques are being redesigned to minimize damage to marine habitats and ecosystems.
1: जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के बारे में भी है. खाद्य और कृषि संगठन का कॉमन ओशंस ट्यूना प्रोजेक्ट इन चीजों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है. दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा सस्टेनेबल तरीकों पर ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जा रहे हैं. वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहां से आई है. इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना.
0: डिस्पाइट ऑल दीज प्रोग्रेस, न्यू चैलेंजेस आर ऑल्सो इमर्जिंग लाइक क्लाइमेट चेंज. वार्मिंग ओशंस आर ऑल्टरिंग ट्यूना माइग्रेशन पैटर्न्स. फिश आर मूविंग फार्दर ऑफ शोर, increasing the cost for fishers and threatening coastal livelihoods, especially in developing regions. And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026, and this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters. But agreements are only as strong as their implementation.
1: बिल्कुल अनुजा, अब हो सकता है कि हमारे श्रोता सोच रहे हों कि इन सब में उनकी या हमारी क्या भूमिका हो सकती है. असल में हमारी भूमिका काफी बड़ी है. यहाँ कुछ काम आसान दिए गए हैं. टिकाऊ स्रोतों से मिली ट्यूना मछली चुनें और इको लेवल देखें. इसके अलावा बहुत ज्यादा उपभोग से बचें, अपने सी फूड विकल्पों में संतुलन बनाए रखें. इसके साथ ही जानकारी रखें और जागरूकता फैलाएं और समुद्र संरक्षण की दिशा में काम करने वाली नीतियों और संगठनों का समर्थन करें. आप जो भी चीज खरीदते हैं उससे बाजार को एक संकेत मिलता है.
0: Absolutely. The story of tuna is a story of both warning and hope, and it reminds us how quickly natural resources can decline, but also how powerful collective action can be. From struggling stocks to a 99% sustainability rate, the journey of tuna shows that change is possible when science, policy, and people come together. So today, on World Tuna Day, let's celebrate progress, but remain vigilant, because the future of tuna is ultimately in our hands.
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो अनुजा, सबसे पहले श्रोताओं को ओडिशा ले चलें.
0: राइट मुकेश, एंड द सेंसस प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन ओडिशा, मार्किंग एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अ फुली डिजिटल पॉपुलेशन सर्वे इन इंडिया. एज पार्ट ऑफ सेंसस 2027, द फर्स्ट फेज कॉल्ड द हाउस लिस्टिंग

0: the President of the French Republic. After this, on the 9th of June 1952, Chandranagar was transferred de jure to the Union of India.
1: We commemorate freedom fighter Kadraka Mangra, who died on the 2nd of May 1945, a resident of Koraput, Odisha. Mangra participated in the Quit India movement in 1942 in response to the nationwide call of Mahatma Gandhi. He was arrested by the British police and detained in Nabarangpur sub jail.
0: In the jail, he fell severely ill due to the unhygienic living conditions and lack of medical care in the prison. He was shifted to Koraput District Jail and later on admitted to the hospital. Kadraka Mangara died in the hospital on the 2nd of May 1945. We salute the great Indian.
1: We also remember nationalist Santa Singh, who was martyred on the 2nd of May 1925. A resident of Lahore, Santa Singh participated twice in the Shahidi Jathas to Jaito Gurudwara Gangsar Nabha in 1924-25 against the British order prohibiting all prayer assemblies there.
0: When the Jatha reached the Gurudwara, Wilson Johnston, the administrator of Nabha, ordered the troops to stop the Jatha and arrest its participants. The British-led troops stopped it and arrested a large number of its members. With others, Santa Singh was also arrested and tortured to death on the 2nd of May 1925 in jail. We salute the great martyr.
1: We also remember Indian National Army Lieutenant Kapoor Singh. A resident of Punjab, he participated in the war against the British troops on the Burmese front. He was killed in action on the 2nd of May 1944. Kapoor Singh was posthumously awarded the medals of Veer Hind and Shatrunash by Netaji Subhash Chandra Bose. We salute this great son of the soil.
2: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को. उनकी गणना अग्रगणी पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है. हालांकि हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखन की अभिरुचि के लक्षण उनमें पत्रकार बनने से पहले ही दिखाई दे चुके थे. सन 1914 से ही वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे थे. बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया.
3: And today we also remember on her death anniversary, Padmaja Naidu, who was a prominent Indian freedom fighter, political leader and administrator who played an important role in India's national movement and post-independence public life. She was born on 21st of November 1900 and was the daughter of the famous poet and nationalist leader Sarojini Naidu. Inspired by her mother and Mahatma Gandhi, Padmaja Naidu joined the Indian freedom struggle at a very young age. She passed away on this day in 1975 and is remembered as a fearless freedom fighter, capable administrator and a graceful leader who carried forward the legacy of service, patriotism and women's leadership in modern India.
2: और अब हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी यशवंत सिंह परमार को. वे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे और उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. लगभग तीन दशकों तक कुशल प्रशासक के रूप में जन जन की भावनाओं संवेदनाओं को समझते हुए उन्होंने प्रगति के पथ पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नई दिशाएं पेश की. उन्होंने अपना सारा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया. वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे.
3: And today we also pay tribute to Hemchandra Goswami, who was an influential Assamese intellectual renowned as a writer, poet, historian, teacher and linguist, who significantly shaped modern Assamese literature and language during the Janaki era. He emerged as one of the Trimurti of early modern Assamese literature alongside Lakshminath Bezbarua and Chandra Kumar Agarwal, contributing to the revival and standardization of Assamese as a distinct literary medium. His multifaceted work bridged traditional Vaishnavite scholarship with colonial era reforms while advocating for Assamese identity against Bengali dominance.
2: और अब हम याद कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में शामिल सत्यजीत रे को। उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की। सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल थे। फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल थीं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे।
3: एंड एज यू जस्ट मेंशन मुकेश, शी वाज नॉट ओनली अ फिल्म डायरेक्टर बट आल्सो अ स्क्रीन राइटर, एन ऑथर, अ लिरिसिस्ट, अ मैगजीन एडिटर, एन इलस्ट्रेटर, अ कैलीग्राफर एंड अ कंपोजर। ही बिगैन कंपोजिंग हिज ओन फिल्म म्यूजिक इन 1961, क्रिएटेड आइकॉनिक सॉन्ग्स एंड थीम्स नोन फॉर देयर बंगाली कल्चरल रूट्स, शार्प सटायर and melodic simplicity. And of course, who can forget the key songs which come from Gopi Gayan Baghabayan, while his background scores are renowned for their emotive impact also.

0: और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: The iconic film Shatranj Ke Khiladi is based on a short story by the legendary Munshi Premchand. Satyajit Ray masterfully expanded the narrative, blending it with the political turmoil of 1856. In this movie, he directed this movie, and let's hear a dialogue from this picture.
2: Mirza Sajjad Ali Shah de rahe. Yahi hai safed fauj ke badshah, aur in par lal wazir hamla karne ki taak mein hai. Mir sahab, badshah bachaiye. बादशाह गया तो खेल खत्म।
0: तो श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ।

इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब जब कह ही दिया है कि यूं ही गाते गुनगुनाते हाँ ये सफर चलता रहे, तो शुरुआत करते हैं इस सफर की। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ और शनिवार की शानदार जानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। बहुत खूबसूरत गीत 80s और 90s के लाई हूँ, अलग अलग जॉनर के। पहला गीत आपकी नजर करती हूँ, आप तो साथ हैं ना 100.1 के।

है ना, और फिर वो जो उथल पुथल होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार की सरजमी पर बार बार ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि हम सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ही कुछ मिली जुली सी बात आने वाले इस गाने में भी है, सुने।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

5:28:10 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और शनिवार की जानदार शानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा गाते गुनगुनाते कार्यक्रम है जिसमें हमारा म्यूजिकल सफर जो है वो आगे बढ़ रहा है। कई बार गीतों के शब्द हमें भा जाते हैं, कई बार कुछ धुनें ऐसी होती हैं कि शब्द तो याद नहीं रहते लेकिन धुनें याद रह जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं से कोई कमी नजर नहीं आती, शब्द भी याद रह जाते हैं, लिरिक्स और धुन तो याद रहती ही है। एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं, ऐसा हो नहीं सकता आपने ये गीत ना सुना हो या फिर ये धुन आपको याद ना हो।

स्टोरी लाइन के हिसाब से किस तरह से गीत जो हैं वो लिखे जाते हैं, इसमें पता चल जाता है कि कहानी जो है वो संबंधों की कहानी होगी और कच्चे धागों की ये कहानी। वैसे बंधन कच्चे धागों का, अगर आप अपना सच्चा प्यार उसमें डालते हैं, विश्वास डालते हैं और बहुत कुछ, कहते हैं जैसे पौधे को सींचना पड़ता है वैसे रिश्तों को भी सींचना पड़ता है। एक ऐसी ही फिल्म आई, साल रहा 81, यानी 1981, 9th अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हुई। और ये जो अभी हमने रिश्तों का जिक्र किया है, इसी पर बेस्ड एक फिल्म जिसमें शमी कपूर साहब, नंदा, पद्मनी कोल्हापुरी, कुणाल कपूर, शशिकला आदि नजर आए। एक भावनात्मक फिल्म रही ये, और कन्नड़ फिल्म की रीमेक, पारिवारिक बंधनों और सामाजिक दबाव से कैसे कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है।

जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये सच्चाई है और ये सच है साथियों, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से कई बार असंतुष्ट रहते हैं। कहते हैं कि जो आपको प्राप्त है वही अगर आपको पर्याप्त हो तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं और 5:40 और पूरे 50 सेकंड हुए जाते हैं। आप उस सफर में हैं जिसे गाते गुनगुनाते कहते हैं और आपके साथ मैं सीमा वर्मा हूं। कोशिश कर रही हूं कि हर मूड के गाने आप तक पहुंचाऊं। अब जिस तरह ये जो अभी हमने सुना थोड़ा सा दर्द भरा था, और ऐसे में दर्द से भरा तो नहीं है लेकिन इमोशंस से भरा गीत आपके समक्ष अब आने जा रहा है। 1989 में एक फिल्म आई ईश्वर, बेहद खूबसूरत नाम और बहुत सुंदर अदाकारी। अनिल कपूर साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग कर साबित किया कि वो हर तरह के रोल्स को बखूबी निभा सकते हैं। अनिल कपूर साहब के साथ हमने विजय शांति को देखा। ये एक तेलुगु कल्ट फिल्म की रीमेक रही और बहुत खूबसूरत कहानी, खूबसूरत गीत। अब जो मैं आपको गीत सुनवाने जा रही हूँ नितिन मुकेश साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में है, और इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी मिलता है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और ये जो वीकेंड है, अब आज देखिए शनिवार है और वीकेंड का हम पूरा पूरा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अब कई सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, घर के काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंजॉय भी तो करना होता है। तो अगर आप परिवार के साथ देखें, घर बैठकर देखिएगा ये फिल्म, अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही सुरीले गीत कह सकते हैं इसमें। आइए सुनते हैं एक गीत।

हम हैं आवाज मोहब्बत की, हम हैं आवाज मोहब्बत की। तुम अगर याद करोगे तो ध्यान दीजिएगा, दिखाई देंगे

टाइम बता दें जी आपको, वरना आप कहेंगे कि सीमा ने समय नहीं बताया। 5:54 और पूरे 40 सेकंड हो गए हैं। और ये भी याद दिला दूं आपको, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन है जी 100.1, और शनिवार की जानदार शानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा। और अब समय बता दिया है, इसका मतलब आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना है ये। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गाना है। जैसे मैं अभी इमोशंस की बात कर रही थी, तो बहुत खूबसूरत इमोशंस हैं इसमें, प्यार है किसी के लिए। कहते हैं जिंदगी एक हसीन मौका है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए है, और अगर ये जिंदगी का मौका एक बार के लिए है तो हम किसी को खुद से दूर क्यों करें, किसी को रूठ के जाने का मौका क्यों दें? सोचिएगा जरा, अगर कुछ ऐसा होता है तो इस हसीन मौके का फायदा उठाइए और जाने वाले को रोकिए, फिर देखिए क्या

तो करती हूँ साहब आपको इस गीत के हवाले। आप शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम

मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 MHz पर। शाम के 6:11 हो गए हैं और FM गोल्ड पर इस समय आपके साथ मैं हूँ रेशमा। सुनवा रही हूँ आपको कुछ दो मधुर से गीत, और ये पहला गीत सुनवा रही हूँ मैं आपको फिल्म खामोश से हेमंत कुमार की आवाज़ में।

जी एफएम गोल्ड है ये और 6:14 और 54 सेकंड हो गए हैं, अब हो गए हैं 56 सेकंड 57 सेकंड और इस तरह से समय भागता जा रहा है और भागते भागते अभी कुछ देर में आप एक और गीत सुनेंगे और उसके बाद 6:20 भी हो जाएंगे जब एफएम गोल्ड पर समय होगा संस्कृत समाचार का। तो बस एक गीत और आपको सुनवा रही हूं मैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज शनिवार है और आज हम आपके फोन कॉल भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम शरद.
2: थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक लेकर आ रहे हैं राजेश लेख.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस राइज मॉडरेटली दिस वीक, रैप्स अप्रैल विद 7% सर्ज. मेजर यूएस स्टॉक इंडेक्सेस कंटिन्यू टू हिट रिकॉर्ड हाइज एज इन्वेस्टर्स सी स्ट्रांग कॉर्पोरेट अर्निंग्स. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप दिस वीक.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह मामूली बढ़त में रहे. अप्रैल के महीने में कुल 7% का उछाल दर्ज हुआ. मजबूत कॉरपोरेट आमदनी से निवेशक उत्साहित. प्रमुख अमरीकी शेयर सूचकांकों में रिकॉर्ड तेजी बनी रही. और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में आया उछाल.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. मुंबई से अमित है हमारे साथ. आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
2: थैंक यू मैडम. मैडम मेरे दो सवाल है एक्सपर्ट से कि क्या जरूरी है कि सपोज 12 लाख से कम यदि सीनियर सिटीजन का इनकम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्या. और नंबर दूसरा है कि सवाल था कि सपोज 12 लाख के आगे यदि इनकम जाता है 12 लाख 100 रुपए तो उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना हो सकता है. थैंक यू.
3: चलिए अमित, आपका पहला सवाल है कि अगर 12 लाख से कम है तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए फाइल करना जरूरी है. देखिए ये डिपेंड करता है. मान लीजिए उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है टैक्स सेट सोर्स तो फिर तो फाइल करना होता है. पर अमूमन 12 लाख से कम पर फाइल नहीं. पर हम लोग असूलतन क्या करते हैं कि जिन लोगों को रिबेट मिल रहा है 12 लाख का उनको टिपिकली रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि किसी भी साल में आपका एक्सीड भी कर सकता है. तो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि दो साल फाइल किया, एक साल नहीं फाइल किया, फिर उसके बाद अगले साल फाइल किया, तो कई बार आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपने पिछले साल का क्यों नहीं फाइल किया, फिर आपको पुराने रिकॉर्ड्स खोल के बताना पड़ेगा इसलिए नहीं फाइल किया. तो अगर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे
0: इट्स एडवाइजेबल.
3: हाँ, तो ऐसा एडवाइजेबल है. दूसरा आपने पूछा कि अगर 12 लाख 100 रुपए है तो देखिए 12 लाख का पहले आप रिबेट लेंगे. रिबेट लेने के बाद आप देखेंगे कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं. आपको पता होगा स्लैब 5, 10, 15, 20 अब जो न्यू रेजीम की मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर ऐसा मेरा मानना है राजेश सोनू के इस बार करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग न्यू रेजीम में आ जाएंगे क्योंकि ये 12 लाख की वजह से वो इतनी लुभावनी हो गई है. तो उसमें जिस भी स्लैब में होंगे हमें तो उस स्लैब के हिसाब से वो अपने बाकी के बचे हुए 100 रुपए पर वो टैक्स दे देंगे. जी.
0: Joining us now from Jaipur is Jitendr. A warm welcome, Jitendr.
4: हाँ सर, जैसे ये एक बात बताइए, जैसे कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा, फ्लैट और लैंड दोनों पकड़ लीजिए, रियल इस्टेट में तो दोनों आएगा
3: जी,
4: तो और लंबे समय के लिए
3: जी,
4: क्योंकि रहने के लिए तो घर है आदमी के पास
3: जी,
4: तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट का फायदा है या रियल इस्टेट में या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, अगर सिस्टमेटिक एकदम से जो उसका ईएमआई आएगा वही अगर निफ्टी 50 में लगाते जाए तो कोई हेडेक भी नहीं है, क्या आप सोचते हैं सर.
3: देखिए पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपका निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेता हूं क्योंकि आपका तीसरा एसेट क्लास बिल्कुल ही भिन्न है इन दोनों से. तो निफ्टी 50 आपको जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं उनके अंदर निवेश करने का अवसर देता है और बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं. तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जब कोविड आया था तो निफ्टी लगभग 7,500 पे आ गया था. आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है. तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ होती है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाता है. ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल बाद निफ्टी नीचे आया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है. तो इसलिए निफ्टी 50 अच्छा है. म्यूचुअल फंड्स भी लंबे वक्त के लिए अच्छा है, पर आप एसआईपी के माध्यम से आए तो ज्यादा अच्छा है. मैंने एसआईपी मुझसे बहुत
1: और लंबा वक्त आप कह रहे हैं करीब
3: ये तो खुद ही 10 साल कह रहे हैं. बिल्कुल 10 साल, मुझे लगता है कि 10 साल से कम का नजरिया नहीं रखना चाहिए. और लोग क्या करते हैं एसआईपी में म्यूचुअल फंड में करते हैं फिर 1-2 साल बाद एनएवी नीचे आती है. तो मैंने तो एसआईपी को एक नया नाम दिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो उसको कहते हैं, मैं उसको सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूं क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए. अब आपका जो पहला पोर्शन था जितेंद्र वो बहुत ट्रिकी है क्योंकि आपने कहा रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट का जो निवेश है बहुत सब्जेक्टिव होता है कि आपको आप अपार्टमेंट में कर रहे हैं, आप किसी घर में कर रहे हैं, आप लैंड में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज करके जितेंद्र नहीं बताया जा सकता. आप हालांकि मैं रियल एस्टेट पर बहुत बोलता हूं और मुझे रियल एस्टेट की काफी जानकारी है, तो कौन सा शहर है, किस प्रकार का एसेट है, वो उसकी आरओआई मतलब वहां पर ग्रोथ पीछे कैसे रही है, मैं जनरली सलाह देता हूं रियल एस्टेट वालों को. आजकल एक नया तरीका मुझे मिला क्योंकि रियल एस्टेट पे इतने सवाल आते थे, अपार्टमेंट लें, दुकान लें, कोठी बना के उसको रखें लंबे वक्त के लिए, उसको किराए पे दे दें. तो मुझे लगता है जिस तरफ जितेंद्र ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जिस तरफ शहर चल रहा हो, शहर भी चलते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जाते हैं, अरे 3 साल पहले तो यहां कुछ नहीं था, आज देखो यहां मॉल बन गया, मार्केट बन गई, अपार्टमेंट बन गए. तो जो शहर जिस तरफ चलता हो उसको प्लानिंग कहते हैं, जिस तरफ प्लानिंग

0: चल रही हो उस तरफ लैंड लेके अगर आप उसको सिक्योरली रख सकते हैं तो वो अच्छा होता है। बाकी जितेंद्र, दोनों में सीधा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। और अगर मैं एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना भी चाहूं तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा कि वो आपकी रियल एस्टेट कहां पर है, कौन डेवलपर है, अपार्टमेंट है, छोटा है, बड़ा है, और पेमेंट टर्म्स क्या थी, उस इलाके की सराउंडिंग्स कैसी हैं, तो इस सब पे आधारित हो सकता है। बाकी मैंने आपको म्यूचुअल फंड और निफ्टी का जरूर बताया, वो दोनों लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी बात है। रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा हमें और गहराई में आप ले जाएंगे बिना किसी डेवलपर का नाम लिए, तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा और बहुत कन्विंसिंग ऐसा मुझे लगता है कि मैं जवाब दे पाऊंगा अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स बताएं तो।
1: और अब अगले कॉलर दिल्ली से अमित झा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
2: हेलो, हाँ नमस्कार सभी को।
3: जी
2: कोहली सर।
0: जी नमस्कार
2: सर। पिछले सप्ताह जो मैंने सवाल आपसे प्रश्न पूछा था, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं सर।
0: जी
2: मैंने डॉलर के बारे में मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्रीय जो भी मान लीजिए चीन है, जापान है या मलेशिया है,
0: जी
2: पहले हम एशिया देश की बात कर लेते हैं, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए हम पाम ऑयल खरीदते हैं, मान लीजिए एक लीटर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक लीटर है, ठीक है सर, और हम बासमती राइस उनको निर्यात करते हैं मान लीजिए सर,
0: जी
2: तो 100 रुपए किलो बासमती राइस है, तो हम क्या करेंगे ना सर, गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए कि अगर आप 1 किलो पाम ऑयल उधर से देते हैं तो उसको आप डॉलर में पेमेंट हमें मत करिए,
0: जी
2: और ना ही हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे,
0: जी
2: आप हमसे 1 किलो बासमती राइस ले लीजिए, 1 किलो आप वो क्या कहते हैं पाम ऑयल ले दीजिए, बराबर हिसाब हो गया
0: जी,
2: ना हमें डॉलर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ी। पहली बात। दूसरे सवाल सर, दूसरा सवाल ये सर कि जो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे जो दबाव था मार्जिन को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए 70 डॉलर से लेके 120 डॉलर के बाद उन्होंने जो इंपोर्ट करना शुरू किया सर,
0: जी
2: तो हाल ही दिनों में कल जो बढ़ोतरी हुई है,
0: जी
2: तो क्या उन कंपनियों के मार्जिन पे अब थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले रखी है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। धन्यवाद सर।
0: देखिए अमित, आपका पहला सवाल जो है वो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें क्या होता था कि आप बदले में सामान के बदले, जब जब करेंसी किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी, एक सामान लिया जाता था, एक दिया जाता था। आजकल के जमाने में अमित इसको संभव नहीं, और इसलिए संभव, आपने जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का एग्जाम्पल लेके भारत से ऑयल लें, हम उनको ये दें बासमती दें, अब उनको बासमती नहीं चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो मान लीजिए भारत के पास है ही नहीं, या हमें उनसे ऑयल नहीं, हमें कुकिंग ऑयल नहीं, हमें कुछ और चाहिए, तो बार्टर। और दूसरा, वैल्यू टू वैल्यू उसको अलाइन करना भी अमित बहुत कठिन है। आप ये तो छोड़िए, मैं राजेश और सोनू के इजाजत से एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भारत और रशिया ने जब रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया तो ऐसा हुआ कि, क्योंकि अभी भारतीय रुपया 18-20 कंट्रीज में चल रहा है, उनके पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अब हम इन रुपए का क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो, ये तो बाकी जगह तो चलते नहीं है, तो आप तो बहुत इसको अलाइन करना आजकल के युग में बहुत कठिन है, और डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड मेजर किया जाता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आपके आपका आपकी आवाज मैं उम्मीद करता हूं बहुत आपकी आवाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक भी पहुंच रही होगी, हो सकता है आपके सुझाव का कोई संज्ञान लेके ऐसा कुछ कर पाए। ऐसा करिए ना, पहले आप किसी दुकान पे इसको हम यहीं पर ट्राई करते हैं कि जैसे आप दुकान पे कुछ लेने गए तो आपने रुपए की जगह उनको कोई सामान बोलिए कि ये ले लें, तो बहुत कठिन है आजकल के जमाने में, बहुत कठिन है। आपने दूसरा पूछा ओएमसीज का, बिल्कुल देखिए कीमत बढ़ाने का, जो कमर्शियल सिलेंडर पे कीमत बढ़ाने की घोषणा हुई है इसीलिए की गई है क्योंकि उनके जो मार्जिन थे वो बहुत प्रेशर में थे, तो कुछ राहत तो उनको मिलेगी। अब देखिए कितनी राहत मिलेगी, क्या आगे और भी बढ़ेंगे घटेंगे, ये सब निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस पर, कि वहां पर कितनी जल्दी ये जो स्टेलमेट बना हुआ है ये वहां पर हटता है कि नहीं हटता। तो बारीकी से नजर बना के रखिए, परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पूरे विश्व में अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि भारत में अच्छी नहीं है, पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बुरी हालत है। अमेरिका में मुझे पता लगा कि $5 प्रति गैलन अब एनर्जी प्राइसेस हो गई है, 3 से 4.6 गई, 4.6 से 5, एक गैलन में लगभग 4.25 लीटर होते हैं, वो हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं, तो वहां भी बढ़ रही है। तो देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है उसको खुद भी कीमतों से जूझना पड़ रहा है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कुछ राहत मिली होगी, पर मुझे लग रहा है लोग अपनी राहत की इस बार ज्यादा उनको चिंता है कि कहीं, हालांकि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अभी आम आदमी के ऊपर नहीं डाला, पर अगर मुझे लगता है कि $120 या उससे ऊपर रहता है तो कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
3: रत्नाकर जॉइंस अस नाउ फ्रॉम मुंबई, अ वार्म वेलकम रत्नाकर।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग।
4: मेरा सवाल ही ऐसे ही बारे में है कि जागतिक स्तर पर पेट्रोल डीजल और गैस की पोजीशन ठीक नहीं है
0: जी,
4: इसलिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर का जो वृद्धि हो गई है
0: जी।

0: बहुत हो गई है
1: जी, जी.
0: इतनी होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी जी. कम होनी चाहिए थी
1: जी.
0: तो आम आदमी के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं, उनका डेली लंच होटल में होता है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: ऐसे लोगों के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसके लिए आपकी क्या राय है? ये बढ़ोतरी ऐसी हो जाएगी तो कैसा आदमी कर सकता है? तो दूसरा सवाल है कि ऐसे हालत में आगे की रणनीति, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने ये जो नेक्स्ट वीक में कैसा शेयर मार्केट का प्रोग्रेस रहेगा?
1: देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स पे रेट बढ़ाया गया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो ठीक है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरर्स हो गए, क्लाउड किचन्स हो गई, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी. पर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है कि काफी इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर था, बल्कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ सिलेंडर पैकिंग कंपनीज लॉस में भी थी, तो उस लॉस को किसी तरह रिकवर करने की कोशिश की. मुझे यह भी नजर आता है कि कुछ डोमेस्टिक सिलेंडर, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित करता है, तो कुछ उसका लोड भी शायद कमर्शियल पर डाल रहा. बिल्कुल, देखिए एक वैश्विक समस्या है, इस सबसे हम सबको मिलकर जूझना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकारी तंत्र से भी यही आती है कि एक ऐसी परिस्थिति है जो असाधारण है. दूसरा, आपने पूछा अगले हफ्ते मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी. मार्केट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर बनाए हुए, मार्केट क्रूड ऑयल पर नजर बनाए हुए, मार्केट जो है रुपए और डॉलर पर नजर बनाए हुए, और मार्केट एफआईआई सेलिंग पे बनाए हुए. और आजकल तो मार्केट ने, अभी देखा आपने, बीच में उठती भी है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर फोर के और एनुअल, उस पर भी नजर बनाए हुए. तो ये सब फैक्टर्स रत्नाकर जी कंट्रीब्यूट करेंगे. इस समय इतनी अनिश्चितता मार्केट में फैली हुई है कि कुछ भी लंबे क्या मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है. वी आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक एक दिन हम करके मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है. तो आप समझ रहे हैं, आप तो बहुत वेटरन है, आप बहुत तजुर्बेकार है, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा.
2: आपने बात की मार्केट की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा. कल अवकाश के कारण चार दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. अमरीका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति न होने, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बने रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रहने और यूएस फेडरल रिजर्व का रुख कड़ा रहने के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क बनी रही. सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से 250 अंक बढ़कर 76,914 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 0.4% की तेजी से 100 अंक बढ़कर 23,998 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में प्रदर्शन और भी बेहतर था. इस सप्ताह के दौरान मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% बढ़ गया और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 2.5% का उछाल आया. मासिक आधार पर बात करें तो मार्च के महीने में आई तीव्र गिरावट से अप्रैल के दौरान आंशिक रूप से उभरते हुए निफ्टी में 7.5% का उछाल आया और सेंसेक्स में 6.9% की वृद्धि दर्ज हुई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रूपया डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की कमजोरी दर्ज करता हुआ 94.91 रूपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ. आप पहले ही कह चुके हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, और लेट्स होप कि जो अप्रैल में उछाल आया है उसी का अनुसरण शायद
1: वो जारी रहे, उम्मीद तो यही करते हैं.
2: और अब दिल्ली से लेते हैं अगले कॉलर. रवि, आपका स्वागत है, सवाल पूछें. रवि से हमारा संपर्क टूट गया है.
3: सो व्हाट इज देयर इन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट दैट विल दैट कैन लिफ्ट कैन बी लिफ्टेड अप द फोर रीजंस दैट वी हैव गिवन प्रोग्रेस इन यूएस ईरान टॉक्स एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूड एफआईआई सेलिंग एंड हॉकिश टोन ऑफ द फेडरल रिजर्व दे ऑल सीम टू बी स्टेइंग देयर सो व्हाट कैन लिफ्ट apart from Strait of Hormuz that you mentioned a while back.
1: Well, since you've already spoken on most of the factors, I think the only other thing remaining in this is the corporate results, because some of the results of some of the companies have been fantastic and unexpected. So I think those companies, if you're getting at lower valuations, that's a very attractive proposition, because you get something which was trading at a very high price earlier, whereas because of this sentiment it is down. So I think this gives investors a very good opportunity to get into that stock.
2: So value buying se aapko lagta hai bazaar ko bal milega.
3: Ji, joining us from Noida is Manoj. A warm welcome, Manoj.
4: Yeah, thank you for taking my question. Actually, I'm running my company since 2011, it's a 15 year, it has shown

0: proprietorship company.
1: Yeah.
0: I just wanted to explore if I can change. Somebody was suggesting that we can convert this company to HUF company, or there is some notion which is called OPC. So can you guide me, if I get some tax benefit or some benefit, maybe tax or maybe some other, then it would be, really helpful for me.
1: Mr. Manoj, that's a very interesting question. In fact, Rajesh and Sonu, that's a very different question from the kind of questions we get. And I think this is the beauty of Market Mantra, where, business, economics, finance, stock markets, taxation, practically the whole spectrum of commerce, shall I say. I think, Manoji, you're carrying on in proprietorship. So as you're aware, there's no difference between proprietor and the proprietorship as far as taxation is concerned, since your question is focused on taxation. Well, conversion to HUF is not possible. I don't think that would be possible, although I don't know your family structure, because HUF means then you will have to form an HUF and you should have a family, which I'm sure you have. Then you have to transfer the whole business to the HUF. You cannot convert your proprietorship to HUF by law. So that's the first part. Then you spoke of OPC. OPC is a one person company. It has been launched because some of the Western countries, this concept used to be there. But in India, it hasn't been very, very popular, because an OPC is a company which can be floated with only one shareholder. Normally in a company, there should be minimum of two. So I think taxation wise, I don't really see any major advantage. But normally such decisions, Manoji, I'm coming to a very important part of the answer which you should be listening to, that the decision to convert a business to a partnership or an LLP or a company is dependent on the scale that you are functioning on. If your scale is growing, if you're catering to high profile customers, if you want to reflect yourself as a larger organization, you want to make a very positive impression, then maybe go for a private limited. I think you should consider LLP instead of OPC or HUF. I think you missed mentioning LLP. LLP is becoming very popular, and the number of LLPs floated across the country have been crossing a record. So therefore, Manoji, although these questions need to be answered by looking at a lot of parameters of your business, since we do not have the specifics, I would advise you to consider LLP.
2: So हमारे जो श्रोता जिनको ना पता हो, आप LLP का full form
1: limited liability partnership कहते हैं. ये proprietorship यानी कि partner या partnership और company के बीच का एक विकल्प निकाला गया है. ये भी companies act के 2013 के अंतर्गत आता है और इसमें limited liability होती है. बहुत ही interesting discussion है. कभी मौका लगा तो इस पे खुल के बात करेंगे. और बहुत ही आज ये मैं बहुत खुश हूँ इस सवाल से, क्योंकि ये बड़ा हटके सवाल है और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल इन्होंने पूछा. मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं को जो अपना व्यवसाय करते हैं उनको ये लाभ पहुंचाएगा.
2: और नोएडा से ही है हमारे अगले कॉलर पीके शर्मा. आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछे.
3: जी धन्यवाद. गुड इवनिंग. मेरा प्रश्न कोहली साहब से ये है कि जैसे विदेश में हमारे जो बच्चे रहते हैं
1: जी,
3: और फिर भारत की इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, लेट्स से 50-50 या किसी म्यूचुअल फंड में
1: जी,
3: तो उसका जो टैक्सेशन रहेगा जब वो यूनिट्स रिडीम करेंगे
1: जी,
3: तो क्या उनको टैक्स फॉर एग्जाम्पल सपोज जर्मनी में है तो जर्मनी में भी देना पड़ेगा और भारत में भी देना पड़ेगा, दोनों जगह देना पड़ेगा या एक जगह?
1: बहुत अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा सवाल है शर्मा जी. भारत के ज्यादातर देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, इसको DTAA कहते हैं. इस अग्रीमेंट के अंतर्गत आप जब एक देश में टैक्स देते हैं तो दूसरे देश में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं. और आपको मैं ये भी बता दूं कि आयकर अधिनियम के अंदर एक ऐसा सेक्शन भी है जिसमें भारत ने अगर किसी देश के साथ ये DTAA नहीं भी किया है तो आप वहां टैक्स देके आ रहे हो, आपके ऊपर दोबारा भारत में टैक्स लग रहा है, तो आप उस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं. तो अगर जिस भी देश में वो शर्मा जी हैं उनके साथ मुझे पूरा यकीन है कि DTAA है, तो आप उस DTAA का सहारा लीजिए. और बिल्कुल भी आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा. एक बार को तो लगेगा, पर आप दूसरे देश में जहां पर आप बाद में दे रहे हैं उसमें आप, तो अगर ये वहां के रेजिडेंट्स हैं तो जो भारत में टैक्स देंगे उसका ये यूएस में या जिस भी देश में है वहां पर उसका क्रेडिट ले सकते हैं. भारत और यूएस का भी DTAA, मुझे नहीं पता कौन से देश में है. जर्मनी की आपने बात करी, जर्मनी के साथ भी है, जर्मनी में उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं.
4: Moving on, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite closed at record highs yesterday as investors weighed strong corporate earnings and a dip in crude oil prices. The Nasdaq Composite Index climbed 0.9% to 25,114 and the S&P 500 added 0.3% to 7,230, while the Dow Jones Industrial Average dipped 0.3% to 49,499. For the week,

0: The Nasdaq advanced 1.1%, S&P 500 gained 0.9%, and the Dow added over 0.5%. Sharad, we were talking about the corporate earnings in India, and it seems that is also attracting the investors in the U.S. as well, as they seem that the corporate earnings are going to go up and that there is going to be a dip in the crude oil prices. Now, how will all this play out in the coming week?
1: I think things in the US, as far as on economic parameters, Rajesh,
0: or is it short-lived?
1: Yes, okay. Yes, you said it all in one word, because I think there is a couplet in Urdu, "Dil behlane ko ghalib khayal acha hai." So I think the economic parameters do not seem to be favoring that. Because a country which is in war, you know, cannot be celebrating in stock markets. So I have a feeling that
2: and ye hamesha se dar tha ki unke margins hit honge companies ke, so maybe lagged effect ke saath shayad hame
1: ha wo lagged effect hai aapko jab ye yuddh samapt hoga. Kehte hain ki jab yuddh samapt hota hai to kya खोया क्या पाया वो बाद में पता लगता है. जब युद्ध चल रहा होता है तो इन द रश ऑफ ब्लड आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, ऐसा मुझे नजर आता है.
2: योगेश है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर. योगेश जी, सवाल पूछिए.
3: जी, मेरा सवाल ये कि जिससे इंडिया में SIP को बहुत ज्यादा जोर शोर से बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को कि SIP कर दो, भूल जाओ SIP कर दो, भूल जाओ.
1: जी जी,
3: तो क्या SIP बाहर देशों में भी SIP करी जाती है? क्या उसमें भी उसको SIP बोला जाता है? अलग अलग कंट्रीज में से किस नाम से या किस मेथड से इन्वेस्ट करने के तरीके बोले जाते हैं?
1: देखिए योगेश, SIP स्वयं ही एक निवेश करने का तरीका है. इनफैक्ट मैं तो SIP का प्रयोग खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं करता हूं, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कि आपको सब्र होना चाहिए. देखिए SIP का, बाकी देशों में भी SIP होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, SIP कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. SIP का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अलग अलग लेवल्स पे एंटर करें. तो ये तो हम किसी भी देश में कर सकते हैं, नाम भले कोई भी हो. तो SIP बाकी देशों में भी है, आपके सवाल का पहला जवाब. दूसरा, इसको इसलिए अग्रेसिवली बेचा जाता है कि यह हाल में बहुत ही कारगर तरीका निकला है, क्योंकि एक तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी इनकम से पैसा जाता रहता है तो आपको पता नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा करके. दूसरा यह कि लंबे वक्त के लिए जाता है, जो कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा असूल है, जिसने भी
2: पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट
1: है. बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाइए आप 10 साल तक अगर लेके. और मैंने देखा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग SIP की बात कहता हूं संक्षेप में, कि 10 साल के लिए अगर आपने करी, देखिए 10 साल में कोविड भी आ गया, अगर मैं 2019 में घुसता, कोविड भी आ गया, ये युद्ध भी आ गया, सरकारें भी बदली, आपने सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट जो थी एक डायरेक्शन के हिसाब से चलती गई. तो इसलिए SIP योगेश अच्छा है, इसको किसी वजह से बेचा जाता है. और आप भी अगर लंबे वक्त तक रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे.
2: और शहनाज हमारी अगली कॉलर है मुंबई से. शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे.
4: हेलो, हाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू.
2: जी,
1: गुड इवनिंग.
2: जल्दी से पूछिए.
4: शरद जी, मेरा सवाल था, मैंने 26AF फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चेक किया, तो विद द सरप्राइज मेरे 26AF में एक 18 लाख की कार रिफ्लेक्ट कर रही है.
1: अच्छा.
4: और वो भी 18 लाख से मेरे पेन से दिया, मुझे मॉनेटरी कुछ लॉस नहीं है. ओवर एंड अबाउट दैट डीलर को भी 18,000 दिया है, कुछ 1% देना होगा, क्या देना होगा
1: जी.
4: इसके आगे मैंने डीलर को और इनकम टैक्स ग्रीवेंसेस में मेल डाला, लेकिन दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. आगे चल के मुझे क्या करना है, या तो कार क्लेम करूं या तो यहाँ से उसको हटाऊं, कैसे, वो आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए. ये पर्पसली हुआ या बाय एक्सीडेंट, दैट विल लेट मी नो. अब मैं वॉल्यूम बढ़ा करती हूँ, उसके बाद आप बोलिए. थैंक यू सो मच, बाय टू ऑल.
1: अच्छा, देखिए AIS इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द, मैंने इसका नया नाम रखा आईना, इसे समझिए क्योंकि आपके पूरे ट्रांजैक्शन बता देता है. उसमें आ रहा है, तो उसमें शहनाज एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है. आप AIS खोलेंगे अपना लॉगिन करके पोर्टल पर, तो उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं, जहां पर अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं. पर आप कह रहे हैं आपने ट्रांजेक्शन किया है, TDS भी कटा है, तो वो तो वहां रिफ्लेक्ट होगा ही. अगर असल में आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो आप फीडबैक के जरिए वहां पर बता सकते हैं. और थोड़ा सा और समय होगा, अगली बार दिक्कत आएगी तो आप दोबारा पूछिएगा, हम इसको एड्रेस करेंगे.
0: Global crude oil prices declined yesterday after Iran sent its latest proposal to the United States to end the conflict. Later, US President Donald Trump told the media that he's not satisfied with the proposal. Meanwhile, Tehran has continued to restrict access to the Strait of Hormuz, while the US Navy is tightening controls on Iranian crude exports. Yesterday, Brent crude July futures settled 2% lower at $108.17 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures declined nearly 3% to $101.94 per barrel. However, Brent jumped 2.7% and WTI

0: I zoomed 8% over the week. However, Brent's June contract touched $126 and 41 cents per barrel on Thursday, its highest level since March 2022 before the contract expired. So, is this rate going to have adverse repercussions on the Indian economy?
1: Well, obviously, because 87% of our crude we are importing, so obviously it is going to have a pressure on the economy.
2: समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे चर्चा करें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू शरद फॉर बींग विद अस.
1: माई प्लेजर.
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज मॉडरेटली दिस वीक, रैप्स अप्रैल विद 7% सर्ज. Major U.S. stock indices continue to hit record highs as investors see strong corporate earnings, and global crude oil prices jump this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
2: Yeah. Yeah.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना चोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापन

0: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक संकट के दौरान भारत के ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस कदम। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं। मिस्टर तनेजा, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: मिस्टर तनेजा, अभी जो ग्लोबल क्राइसिस है, वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके पृष्ठभूमि में आप कैसे देखते हैं ताजा स्थिति को? अगर आप हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू बताएं इस दृष्टिकोण से कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहां तक इम्पैक्ट हुई है।
1: जैसा आप जानती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा जो होती है किसी भी देश के लिए बड़ी अहम होती है। अगर ऊर्जा सुरक्षा नहीं है तो आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं हो सकती, और अगर आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भारत सरकार का जो है हमेशा ये जोर रहा है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। उसी के तहत अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने जो अपना तेल हम मंगाते हैं, पहले हम जो तेल मुख्यतः 10 या 12 देशों से मंगाते थे, आज वो लगभग हम 42 अलग अलग देशों से तेल को मंगाते हैं। उसका कारण यही है कि अगर जहां से हम तेल मंगाते हैं अगर वहां पे किसी युद्ध हो जाए या और कोई कारण हो जाए तो जिससे हमारी जो सप्लाई है, हमारी जरूरत के लिए तेल है, उसमें बहुत बड़ी बाधा ना आए
0: जी।
1: और अगर आप देखें हमारी अर्थव्यवस्था, हम लगभग अपनी जरूरत का 87 से लेकर 88% तेल जो है हम अपनी जरूरत का आयात करते हैं। हम भारी मात्रा में गैस भी आयात करते हैं, लगभग 56% अपनी जरूरत का गैस आयात करते हैं, एलपीजी भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, और अगर आप देखें यूरेनियम भी हम आयात करते हैं। तो चूंकि हमारी निर्भरता आयात पे काफी है, जो तमाम देशों की है, चीन की भी काफी बड़ी निर्भरता है, जापान की तो हमसे भी ज्यादा निर्भरता है आयात के ऊपर, ऐसे में सरकार का फोकस हमेशा ये रहा कि इसको हम कैसे मजबूत किया जाए। जो पश्चिम एशिया की जो आज वहां पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि युद्ध ठीक है, अभी तोपें बंद हो गई हैं, लेकिन युद्ध जैसा माहौल तो अभी बना ही हुआ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगभग बंद है, जहां से भारी मात्रा में हमारा भी तेल आता था और हमारी भी एलपीजी आती थी और हमारी भी एलएनजी जो है वो कतार से उसी रास्ते से होकर के आती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार ने तुरंत जो है जैसे ही वहां युद्ध शुरू हुआ तो इस बात के प्रयास करे गए कि अगर जो वहां से हमारी एलएनजी आना बंद हुई है तो और कहां से लेके आई जाए। तो उसी के तहत जो है भारी मात्रा में हमने अमेरिका से एलएनजी का आयात बढ़ा दिया, नॉर्वे से बढ़ा दिया, हमने मेक्सिको से लेना शुरू कर दिया, हमने अल्जीरिया से लेना शुरू कर दिया, इसके अलावा जो जहां जहां से और उपलब्ध था वो हमने लेना शुरू किया। कुल मिलाकर के अगर आप जो है ऊर्जा सुरक्षा आज के संदर्भ में देखते हैं और उसकी तुलना अन्य विकासशील देशों से करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा जो है, जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है, उसके बावजूद उसको ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया आया। इसका मतलब ये कहना मेरा कतई नहीं है कि चुनौतियां नहीं है या एलपीजी के फ्रंट पे दिक्कतें नहीं आई, वो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। खासतौर से एलपीजी पे हमको परेशानी आई है क्योंकि हम भारी मात्रा में तो हम बहुत बड़े एलपीजी के उपभोक्ता है, दूसरे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता है। हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा एलपीजी के कनेक्शन है।
0: इनफैक्ट जो अभी सूरत

0: आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन था, उसके दौरान एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 60 दिनों से सरकार कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लगातार नजर रखे हुए है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्बाध ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपको लगता है कि जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, पूरे विश्व की तीसरे सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर है हम विश्व के, ऐसे में इस तरह का जो प्रोएक्टिव अप्रोच है सरकार का, जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है पूरे हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक कहें कि मजबूती के लिए?
1: देखिए, इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि जो पश्चिम एशिया के जो हालात हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो ऊर्जा जगत है, तेल जगत उसमें खास तौर से, उसके अंदर भारी चुनौतियां आई हैं, भारी उथल पुथल हुई है, और इसको कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा तो इतनी बड़ी चुनौती विश्व ने कभी नहीं देखी। 1970 के दशक की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन वो भी इतना बड़ा एनर्जी शॉक नहीं था जितना ये है। और वो देश जिसमें भारत, जहां पे एक तरफ तो ऊर्जा की भारी खपत क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो हमारी आयात पर इतनी ज्यादा निर्भरता, तो इस कारणों से जो है ये आवश्यक हो गया था कि भाई किस तरीके से उसको डील किया जा सके। अगर आप अन्य देशों को देखते हैं चारों तरफ उठा करके, एशिया के अंदर भी आप देखते हैं, विकासशील देशों को देखते हैं, तो उसमें देखा कि भारत में जो कीमतों पर सरकार ने काफी नियंत्रण रखा, काफी हद तक जो है, आपने बोला पुरी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि आम उपभोक्ता और खासतौर से गरीब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मार्जिनल पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी का नतीजा है कि इस सब के बावजूद कि तेल की कीमतें जो है भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, लेकिन जो भारत का आम उपभोक्ता है, खासतौर से वो जो गरीब तबके का उपभोक्ता है या गांव में रहने वाला उपभोक्ता है, उसको काफी हद तक शील्ड किया गया है, बचाया गया है, इंसुलेट करके रखा गया है। जो अगर आप पड़ोस के देशों में उठा करके देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, थाईलैंड में देखें, पड़ोस के देशों में भी आप देखते हैं तो कीमतें कहीं से कहीं चली गई हैं, और कई कई जगह वहां पे दो दो दिन की लाइनें, कतारें लगी हुई हैं क्योंकि लोगों को चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि भारत के अंदर जो है वो कीमतों को भी सरकार ने काफी हद तक जो है वो साथ के रखा है, और दूसरी तरफ ये भी निश्चित किया है कि पूरे देश में खासतौर से तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब अच्छी तरीके से उपलब्ध है, और एलपीजी के भी हमारी रिफाइनरीज है उनको जो है निर्देश दिया गया है कि वो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज करें वो एलपीजी के उत्पादन को करें। और साथ में सरकार बोलूं तो जो भारत की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाई है, उसमें खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसकी बड़ी उनकी बड़ी अहम भूमिका है, तो इन सब ने मिला करके जो है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी अपनी अपनी भूमिका है, सबने मिला करके पक्का किया है कि जो आम उपभोक्ता है उसको हम कैसे बचा के रखा जा सके। चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो रिस्पॉन्स है, जो सरकार जिस हिसाब से उसको मैनेज कर रही है, क्राइसिस को मैनेज कर रही है, वो भी बहुत बेहतरीन है अगर भारत की तुलना अन्य देशों से करें। आप
0: अन्य देशों की बात कर रहे हैं मिस्टर तनेजा, तो आज श्री पुरी ने बताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे शक्तिशाली देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-50% तक की वृद्धि देखी गई है, वहीं भारत में अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है पिछले 60 दिनों में, जब से ये कहें कि संकट शुरू हुआ है पश्चिम एशिया में। और इसके अलावा जो आपने बात कही कि आयात पर हमारी निर्भरता, उसको कम करने के लिए आपको लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू भी लें और मीडियम टर्म भी लें, तो स्ट्रैटेजी जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वो भी शामिल है?
1: देखिए, हमको ये समझना होगा कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में भी लगभग 80% फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, अर्थात वो तेल, गैस और कोयले की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की।
0: जी।
1: और भारत की अर्थव्यवस्था में भी जो है वो तेल, गैस और कोयले की भूमिका बहुत बड़ी है। बिजली का भारी भारी मात्रा में उत्पादन हम अभी भी जो है वो कोयले से करते हैं, और उसमें कोयला जो है हमको देश के अंदर ही उपलब्ध है, तो जितने भी ईंधन है उसमें कोयला एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हमको बहुत ज्यादा आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में हमारे पास कोयले के अपने भारी भंडार है, जबकि तेल की स्थिति वो नहीं है, गैस की नहीं है, और जो कुछ और ईंधन है उसमें वो स्थिति नहीं है। तो जिसको बोलते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी में सबसे पहले ये होता है जो ईंधन जिसका प्रयोग कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्या वो देश में उपलब्ध है, आप आयात करते हैं, तो कोयला एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में अपना हमारा उपलब्ध है। और दूसरी बात यह है कि रिन्यूएबल का बहुत बड़ी भूमिका है, हमने रिन्यूएबल में खासतौर से सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया, हमने जो अचीव किया वो अच्छे अच्छे विकसित देश भी उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्या है कि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारी जरूरत ऊर्जा की बहुत ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पूरे देश के अंदर जो है

0: थे। और देश के अंदर तमाम, खासतौर से जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां की जो तमाम महिलाएं हैं, खाना बनाने के लिए वो ऐसे ईंधन का प्रयोग करती थी जिससे उनकी आंखें भी खराब होती थी, जंगल भी कटते थे और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता था। तो सरकार ने ये रहा कि किस तरीके से हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो किचन में घंटों गुजारती हैं, किस तरीके से उनको ऐसी ईंधन दी जाए जिससे कि वो आसानी से खाना बना सकें और साथ में जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधरे पहले से, और साथ में उनके पास समय हो कि वो और चीजों में लगा सके अपने समय को। ये सबको देखते हुए एलपीजी का भारी विस्तार किया गया उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत भी और उसके अलावा भी। और आज ये है कि 34.5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, घर घर में आपको लाल सिलेंडर आप देखने को मिलता है
1: जी।
0: लेकिन साथ में ये भी है कि एलपीजी जो है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, या पेट्रोल हो या डीजल हो, सबका मॉलिक्यूल एक होता है, आती सब एक ही जगह से है, उनकी सब नाम प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हो जाते हैं। एलपीजी जो है वो भी कच्चे तेल से बनती है, या जहाँ गैस का उत्पादन होता है, गैस की जो फील्ड होती है वहां से वो आती है, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी मॉलिक्यूल तो वो भी वहीं से आती है। अब चूंकि हमारे पास जो है जो पीएनजी, जिसे पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, जिससे कई जगह शहरों में जगह आजकल जो घर में पाइप लग गए हैं उनसे कुकिंग गैस आती है, वो अलग है, वो नेचुरल गैस है वो, जबकि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो एक तरह का तरल पेट्रोल होता है, उसकी हमारे पास जो उपलब्धता है प्राकृतिक गैस की ज्यादा है। तो अब सरकार की कोशिश है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा जगह लोग पीएनजी को लें, और हालांकि ऐसा नहीं है, जो प्राकृतिक गैस है वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं एलएनजी की शक्ल में, लेकिन सरकार के पास उसकी जो देश में भी हमारे पास उसकी काफी अच्छी मात्रा उपलब्ध है। तो वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पीएनजी का प्रयोग करें, अर्थात पाइप के माध्यम से अपने किचन में गैस ले जाएं, जिससे कि जो एलपीजी है उन लोगों को ज्यादा आसानी से दी जा सके जिनके पास पाइप गैस की सुविधा नहीं हो।
1: श्री पुरी ने यह भी कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में भी आत्मनिर्भर होंगे, उसके लिए उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की। इसके अलावा आपको लगता है कि शायद सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो सोर्सेज हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब पर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अल्टरनेटिव स्रोत बन जाएगा
0: ऊर्जा में। जो भी आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या रोड मैप बनेंगे, नीतियां बनाना सरकार का काम है, वो नीतियां बन रही हैं और काफी कुल मिला के सरकार का फोकस है कि 2047 तक जो है हमें ऊर्जा की आजादी मिल जाए, जिसको एनर्जी इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भारत जैसे देश के लिए वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम ऊर्जा की गरीबी को भी दूर कर सकें और साथ में आयात पे जो निर्भरता है उसको हम कम से कम कर सकें। तो जैसे अमेरिका आज एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है, काफी हद तक वो नहीं था, वो भारी मात्रा में आयात करते थे और आज जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इस तरफ भी सरकार काम कर रही है, उसके तहत ही जो है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में नई जो है कोशिशें लाई गई हैं, और दूसरी तरफ जो है आणविक ऊर्जा जो है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कैपिटल वो आए, उसके लिए सरकार नई नीति लेकर के आई है, नई सोच लेकर के आई है, शांति के नाम से उस स्कीम का नाम है। लेकिन हमको ये साथ में ध्यान देना पड़ेगा कि भारत को, चूंकि हमारी बड़ी आबादी और बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आज की तारीख में भी देश में हमारे यहाँ बहुत बड़े संख्या है उन लोगों की जो ऊर्जा की गरीबी में रहते हैं या एनर्जी पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। तो एक तरफ तो हमको विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो एनर्जी पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए और ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए हमारी चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ये है, और साथ में टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी रोजाना सब चीजों को बदल रही है। तो मुझे लगता है चूंकि हमारे पास सौर ऊर्जा और जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, और धीरे धीरे हमने देखा है सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है, एक तरीके से वो एक ग्रास रूट रिवोल्यूशन बनता जा रहा है। आणविक ऊर्जा जो है उसमें भी सरकार का बहुत फोकस है, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और आ जाए, जैसे कि हमने देखा, हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी कोलापक्कम में हमने उसको लॉन्च किया अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, तो जो बहुत बड़ा एक जैसे बोलना चाहिए मील का पत्थर है उस दिशा के अंदर कि हमको की आजादी मिल सके। भारत जैसा देश एकमत होता है जहाँ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, जहाँ इंजीनियर्स की कमी नहीं, जहाँ मार्केट हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, तो मुझे तो लगता नहीं कि हम शायद 2047 से भी इसको पहले हासिल कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तमाम नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने हाइड्रोजन का जिक्र किया, इसी तरीके से और भी कुछ टेक्नोलॉजी है जिनका काफी विकास हो रहा है, तो मैं काफी ऑप्टिमिस्ट हूँ।
1: मिस्टर तनेजा, भारत में ऊर्जा सुरक्षा के मजबूतीकरण पर आपने जो चर्चा की, अभी जो एक वैश्विक चुनौती है उसके बीच कितनी बड़ी आगे के लिए लक्ष्य है, उसके विभिन्न पहलुओं पर आपने जो बात करी उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। सुर्खियों में

जी आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:26 हो गए हैं और इस समय एफएम गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ रेशमा और कार्यक्रम है सांझ ढले। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की।

तो श्रोताओं, ये जो गीत सुना आपने, इसका संगीत दिया था ओपी नैयर ने। ओपी नैयर और आशा भोसले 1958 से 72 के बीच इस जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में धूम मचा दी थी। कश्मीर की कली, किस्मत, नया दौर और मेरे सनम जैसी कई फिल्में आईं जिनमें ओपी नैयर के संगीत और आशा के स्वर थे। ओपी नैयर ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें आशा भोसले की आवाज इतनी पसंद थी कि उनकी आवाज के आगे उन्हें और कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। चुलबुलापन, लोकधुनों की छाप और अनोखा लय ओपी नैयर के संगीत का हाईलाइट होते थे और आशा इसे बखूबी निभाती थीं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:37 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ ढले मेरे यानी रेशमा के साथ। हमसाया फिल्म से आपने सुना गीत अभी जो आई थी 1968 में, और अब 1962 की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में एक और गीत सुनते हैं जिसमें एक बार फिर संगीत है ओपी नैयर का, बोल लिखे हैं एसएच बिहारी ने, और इस गीत के उस पार यानी 7:45 पर एफएम गोल्ड पर समय हो जाएगा प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।

जी, तो आज मैंने आपको सांझ ढले में सुनाए गीत जो ओपी नैयर के संगीत से सजे थे और जिनमें आवाजें थी आशा भोसले की। तो इस जोड़ी के हिट गीत आपको कैसे लगे? ये आप, मुझे लगता है कि अच्छे ही लगे होंगे, आपने खूब एंजॉय किया। लेकिन आज का सांझ ढले का सफर यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद मैं रेशमा एक बार फिर आपसे मिलूंगी 8:10 पर। कार्यक्रम होगा मधुरिमा, जिसमें शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित फिल्मी गीत सुनवाती हूं मैं आपको। और तो मधुरिमा में मिलते हैं 8:10 पर। फिलहाल आप सुनिए प्रादेशिक समाचार यहीं यानी FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज पर्यटन हितधारक सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक पैनल चर्चा हुई। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए।
1: इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को केवल ट्रांजिट शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट पहचान और पर्यटन क्षमता है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता इसका राष्ट्रीय राजधानी होना है। इसी कारण यहां संसद, राष्ट्रपति भवन और शहीद स्मारक जैसे प्रमुख स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं।
2: इस शहर में जिस तरीके से ऐतिहासिक गौरव को संभाल के रखा है, लाल किला मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार से लेकर के मेहरौली किला तक, जो कि लोगों का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और जब यहाँ की कहानी सुनी जाती है दिल्ली की, तो इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की कहानियों में जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के साथ में लोग अटैच होते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं।
1: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि राजधानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रही हैं और लगभग हर महीने पर्यटन नीति की समीक्षा भी करती हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली सरकार दिल्ली टूरिज्म बोर्ड लाने जा रही है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। श्री मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने पर बल दे रही है, जिससे फिल्म शूटिंग और इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा।
3: दिल्ली की जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बाकी दिल्ली में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, इन्फॉर्मेशन सेंटर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस टर्मिनल पर और प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कोई दिल्ली टूरिज्म का इन्फॉर्मेशन सेंटर फंक्शनल नहीं है। उन इन्फॉर्मेशन सेंटर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज पूरी दिल्ली में बनाई जाए। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें शानदार दिल्ली की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए एंट्री गेट बनाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन को दी गई है।
1: दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक संगठित, आधुनिक और वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज सेंट स्टीफंस कॉलेज में वार्षिक विदाई समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि कॉलेज के परिचित गलियारों से गुजरते हुए उन्हें समृद्ध चर्चाओं, कक्षाओं, बहसों और मित्रताओं का याद ताजा हो गई। उपराज्यपाल ने वर्ष 2026 के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और क्षमता तथा चरित्र के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे कॉलेज की समृद्ध विरासत, बौद्धिकता और विशिष्ट पहचान को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत करें। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज ग्राम कटेवड़ा में फिरनी रोड और RCC नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा यह कार्य सुशासन और अंत्योदय के मंत्र को साकार करता है। श्री सिंह ने कहा कि आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की धारा बवाना क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और सामान्य व्यापार तथा भंडारण लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
4: इसके अंतर्गत अब अलग से सामान्य व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी और संपत्ति मालिक विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड UPIC के माध्यम से संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क संपत्ति कर का 15% तय किया गया है, जो हर वर्ष कर भुगतान के समय देना होगा। भुगतान की

0: रसीद एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध डिम्ड लाइसेंस मानी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापार संचालकों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, व्यवसाय को सरल बनाना तथा अनुपालन के बोझ को कम करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सकों के लिए हर नए मामले की जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावी निगरानी, शीघ्र पहचान और मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से समय पर उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस बीमारी को अनिवार्य सूचना प्रणाली में शामिल करने से इसका शीघ्र पता लगाने और उपचार करने में आसानी होगी, जिससे विकलांगता का जोखिम कम हो जाएगा। साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। यह पहल कुष्ठ रोग को एक सामान्य और उपचार योग्य बीमारी के रूप में स्थापित करते हुए उससे जुड़े भेदभाव को कम करेगी तथा उपचार अनुपालन को बेहतर बनाएगी। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मामलों में लगभग 59% भारत में पाए जाते हैं, जिनमें 44% से अधिक मरीज निजी संस्थानों में इलाज कराते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इस निर्णय के साथ दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जहां कुष्ठ रोग अधिसूचित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम छिपे मामलों की पहचान और बीमारी के नियंत्रण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजधानी को कुष्ठ मुक्त बनाना है। आरजू के प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रभावी माध्यम है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीतियां और योजनाएं अधिक लोक केंद्रित बनती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शालीमार बाग को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण, निर्बाध जल आपूर्ति, अटल कैंटीन की स्थापना, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का विस्तार, वाटर एटीएम, पार्कों का आधुनिकीकरण और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, वहीं लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपात स्थिति की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का परीक्षण आज दोपहर करीब 12 बजे किया गया। नागरिकों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है। इसके लिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे।
5: मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। इस सुविधा के लिए ना फोन की डेटाबेस की जरूरत है, ना डेटा सिस्टम की जरूरत है और ये संपूर्ण रूप से ऑपरेटर एग्नोस्टिक है।
4: दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचना

0: रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्लू लाइन में सुप्रीम कोर्ट से इंद्रप्रस्थ के बीच निर्धारित मरम्मत कार्य के कारण आज रात से कल सवेरे तक कुछ मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। कल सुबह कुछ मार्गों पर पहली मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली रेल सेवा सवेरे 6:05 पर चलेगी। वहीं लक्ष्मीनगर से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो 6:21 पर शुरू होगी। इसके अलावा यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो सेवा सवेरे 5:50 पर चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अलग अलग मामलों में 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने पूर्वी जिले से एक आरोपी को 1 किलो 900 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में आनंद विहार बस अड्डे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 280 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। साथ ही एक अन्य मादक पदार्थ मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 100 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गाजीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पूर्वी जिला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड कार तलाश रहे लोगों को निशाना बनाता था और अग्रिम भुगतान लेकर संपर्क तोड़ देता था। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को संगीतमय राम कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध वक्ता डॉ. कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति अपने अपने राम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को संगीतमय शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों से जोड़ना है। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की हैं। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये सुविधाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की ओर से बसों और बस स्टॉप पर पानी तथा ORS की व्यवस्था की जा रही है।
1: DTC की बसों में भी पानी उपलब्ध रहे ये व्यवस्था कर रहे हैं। हर बस शेल्टर पे हमारे जल सेवक पानी और ORS के साथ में रहें, ये भी लगातार किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड हर मेडिसिन और ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ कूलिंग एरिया बना करके लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। स्कूलों में ऑलरेडी ORS और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
0: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जलदूत पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल, नेहरू प्लेस टर्मिनल और जल विहार टर्मिनल जैसे कुछ स्थानों पर शीतल जल व्यवस्था की गई है। राजधानी में आज दिन के समय धूप तेज रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दोपहर और शाम के समय हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए थे। कल जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया। और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर फिर से मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे पुल अवसंरचना को मजबूत करने और मेट्रो रेल विद्युत प्रणालियों को उन्नत बनाने के लिए 895 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये मेट्रो रेल की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोलकाता मेट्रो रेलवे के उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वो तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चाओं में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहेंगे। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 2 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 8:11 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर यह समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। आज मधुरिमा में मैं हूं आपके साथ रेशमा और आज हम चर्चा करेंगे चंचल और मधुर मिश्र राग राग पीलू की। तो आइए शुरू करते हैं इसी राग यानी राग पीलू पर आधारित इस गीत से। फिल्म है प्रेम कहानी, उसी फिल्म से ये गीत सुनते हैं।

राग पीलू पर आधारित ये गीत सुना आपने। पीलू काफी थाट से उत्पन्न राग है जो अधिकतर ठुमरी, भजन और गजलों में प्रयुक्त होता है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित होते हैं, जबकि अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग होता है। इसीलिए इसकी जाति है औड़व संपूर्ण। राग पीलू की विशेषता है कि इसमें कई अन्य रागों की छाया देखी जा सकती है, जिससे इसे संकीर्ण जाति का राग कहा जाता है और इसीलिए ये राग काफी विविधता लिए रहता है। आइए सुनते हैं इसी राग की झलक लिए ये अगला गीत फिल्म सुजाता से।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

राग को और आकर्षक बना देता है और कई बार इसमें सभी 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है जिससे ये मिश्र पीलू कहलाता है। श्रोताओं, यूं तो ये राग पीलू जो है इसका गायन समय दिन का तीसरा पहर माना गया है, लेकिन इसे किसी भी समय गाया जा सकता है, यानी ये एक सर्वकालिक राग है। अब चूंकि ये ठुमरी का राग है इसलिए गायन के अंत में पीलू या भैरवी में ठुमरी या टप्पा गाकर समापन करने की परंपरा रही है। अगर भजन या धुन के साथ गायन समाप्त होता है तो भी पीलू की छाया दिखाई देती है, यहां तक कि कुछ लोक गीत भी इस राग के बहुत नजदीक लगते हैं। चलिए अब समय है आज के मधुरिमा में अंतिम गीत का, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। तो राग पीलू पर आधारित 1957 में आई फिल्म चोरी चोरी की रीमेक आई एक 1991 में, उस फिल्म से आपको मैं गीत सुनवा रही हूं। जो 1991 में फिल्म आई उसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। इसी फिल्म से अनुराधा पौंडवाल की आवाज में ये गीत जिसमें झलक है राग पीलू की। और इस गीत के साथ मुझे यानी रेशमा को दीजिएगा अनुमति। सुनते रहिए FM गोल्ड।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राग पीलू की। तो राग पीलू चंचल प्रकृति का और श्रृंगार रस से भरा राग है, और इसीलिए ठुमरी टप्पा और भजन में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। वादी स्वर है इसका गंधार, संवादी है निषाद। इसमें अक्सर कोमल गंधार और मंद्र सप्तक के शुद्ध निषाद पर रुका जाता है, जो इस

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो भारत के नजरिए से खेल जगत में आज काफी हलचल है। क्रिकेट का सबसे बड़ा, अगर हम आईपीएल मुकाबला कहें, राइवलरी मैच कहें, या फिर अगर हम बैडमिंटन की बात करें, तो भारत के लिए बड़ा अवसर है। तो बात करेंगे सब पर, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। बीसीसीआई ने T20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। और भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामने ने पहली बार एटीपी चैलेंजर फाइनल में जगह बनाई।

0: तो आज की अगर हम सबसे बड़ी खबर की बात करें, सबसे पहले चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट की बात करते हैं जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक अभी 12वें ओवर में 3 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के मैच का जरा हाल जान लेते हैं, जहां जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया और आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।
1: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। राजस्थान ने दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की साझेदारी की। जुरेल 30 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की कप्तानी पारी खेली। डोनोवन फरेरा ने 14 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए और टीम को 225 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पथुम निशंका और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई। निशंका ने 33 गेंदों में 62, वहीं राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में आशुतोष शर्मा ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जिस तरह का प्रदर्शन अभी कर रही है मुंबई इंडियंस, अब तक के मैच को लेकर आप क्या कहेंगे?
2: मुंबई इंडियंस के लिए देखिए, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि वो अभी बाहर हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल उस एज पे पहुंच गए हैं कि अब इससे ज्यादा वो रिस्क ले नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 14 मैचेस लीग के हैं, आपको कम से कम 8 मैच जीतने होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम आप कंटेंशन में रहेंगे। 7 मैचेस में आप क्वालिफाई नहीं करते 7 जीतने के बाद, क्योंकि एक पंजाब है जो ऑलरेडी उनका एक मैच नो रिजल्ट के कारण वो 1 पॉइंट आगे ही रहते हैं लोगों से, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है अभी तक, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मुंबई इंडियंस के लिए देखिए, एक बात तो यह है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, दूसरा उनका रेपुटेशन जो है वही उनके ऊपर अब इतना ज्यादा जो इतना हैवी हो गया है उनके लिए, और सीएसके का भी वही हाल है, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन रेपुटेशन अभी है, फॉर्म नहीं है। खासकर हम सूर्य कुमार यादव की बात हर मैच में करते हैं, उनका फॉर्म बहुत खराब रहा है, न स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल पा रहे हैं, न पेस के अगेंस्ट खेल पा रहे हैं, रन नहीं है उनके बोर्ड पे, और अभी भी आज लग रहा था कि शायद एक लंबी पारी जो है देखने का मौका मिलेगा, वो भी नहीं मिला, तो उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो पा रही हैं। तो सीएसके को ये एक अवसर है कि वो मुंबई इंडियंस जो कि उनके आर्च राइवल्स हैं, तो उनके ऊपर एक और जीत हासिल करके अपनी स्थिति थोड़ी और इम्प्रूव करें।
0: बिल्कुल, दोनों ही टीम अच्छी स्थिति में नहीं है और दोनों के पास अभी अवसर है कि एक दूसरे को गिराकर थोड़ा ऊपर

0: पहुंच सकते हैं। मुंबई अंक तालिका में 9वें स्थान पर है और चेन्नई 7वें स्थान पर है। कल के मैच की बात करें, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में सुना किस तरह से 226 रन चेज किया है दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इतिहास में।
1: देखिए, कल का जो चेज था वो एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये टीम जो है 9 विकेट से जीत जाएगी, क्योंकि उनका जो ओपनिंग स्टैंड था वो बड़ा अच्छा रहा। अच्छे अंदाज से केएल राहुल जो हैं वो चेज में, जब आप उनकी इनिंग्स देखते हैं उनमें कभी आपको ये नहीं लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा शॉट्स मार रहे हैं। उनकी शॉट मेकिंग काफी सिलेक्टिव है, और वो जब तक क्रीज पे रहते हैं ऑपोजिशन को ये चैन नहीं पड़ता कि मतलब ये मैच हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल का अप्रोच सबसे अलग है। सूर्यवंशी जैसे नहीं है कि वो मौका देते हैं, वो मौका बहुत कम देते हैं
0: जी।
1: और अगर उनके बैट से 50 निकलता है 60 निकलता है तो टीम भी अश्योर हो जाती है कि ठीक है हम एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो कल हालांकि 7 विकेट से जीती टीम, वो भी बहुत कंफर्टेबली जीती है, उससे भी आराम से जीत सकती थी। तो सोचिए कि अगर 226 का आपका लक्ष्य है वो आप इतने आराम से जीत रहे हैं कि आप 9 विकेट से भी जीत सकते थे एक स्टेज पे, 7 विकेट से आपने इवेंचुअली वो मैच बड़े आराम से आपने जो है खत्म किया। लेकिन मुझे अचरज इस बात की है कि मतलब जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि डीसी का अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अटैक पे जितने रन बन रहे हैं, अटैक के जो उनकी जो एक क्वालिटी जो है वो देख के सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इतने अच्छे अटैक को इतने ज्यादा रन कैसे कंसीड कर सकती है। बैटिंग अच्छी है, काफी डीप बैटिंग है उनकी डीसी की, और उस हिसाब से उनको टॉप फोर में बहुत पहले से होना था और वहीं रहना था, लेकिन ऐसा खेल नहीं रही है टीम।
0: हम कह सकते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं रही, कुछ खिलाड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन वो अस्थिरता बनी रही।
1: नहीं, उन्होंने कुछ मैच बिल्कुल जीतते जीतते हारे हैं वो मैच। जैसे मुझे याद है डेविड मिलर का एक वो था, चेस था
0: जी,
1: उनको 2 रन पे वो जीत जाते, वो मैच मतलब जीत रहे थे, वो उन्होंने सिंगल्स नहीं लिया, एक मैच पे सिंगल नहीं लिया, दूसरे लास्ट बॉल पे जो था भागे आउट हो गए। तो द पॉइंट इज कि उनकी प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं उनको ऐसे झटके लगे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे पंजाब किंग्स के साथ वो खेले 264 बनाया अच्छा टोटल, अगले मैच में 48 घंटे बाद उनसे 100 रन भी नहीं बने। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी की बात आप कर रहे हैं ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि टीम में वो सब कुछ है जो एक T20 टीम की एक अच्छी कॉम्पोजिशन में होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, और इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स 8 अंकों के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, और जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ 4थे स्थान पर है। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने आज T20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जहां हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगे और जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। तो किस खिलाड़ी की वापसी हुई है और किसे बाहर बैठना होगा, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: 15 सदस्यीय भारतीय टीम एक मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जिसमें शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली और ऋचा घोष शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर राधा यादव टीम में वापस आ गई हैं। अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाली खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को भी टीम में जगह मिली है। प्रतिका रावल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर अमनजोत कौर चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाई। हरमनप्रीत कौर सभी मैचों की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। टीम में दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्रियंका पाटिल भी शामिल हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2026 T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। भारत को ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स भी इसी ग्रुप में हैं। वुमेन इन ब्लू 14 जून को एडबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं टीम में, कई लोगों की वापसी हुई है, यानी कुछ लोगों की वापसी हुई है, और प्रतिका रावल को टीम से बाहर किया गया है, वहीं चोट के कारण अमनजोत कौर भी बाहर रहेंगी खेल से। तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन टीम कुछ अच्छा नहीं कर पाई, अब अभी टीम को आप देखकर क्या कहते हैं?
1: देखिए, टीम हमारी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम हमारी अच्छी रही है, और मैं इस टीम को हमेशा ये मानता हूं कि हम टॉप फोर की टीम है, चाहे हम अच्छा खेल रहे हों या अच्छा ना भी खेल रहे हों, क्योंकि वुमेन ये जो है वुमेन्स क्रिकेट में ओवरऑल स्टैंडर्ड बहुत एवरेज है पांच टीमें हटा दीजिए तो बाकी पांच टीमें बहुत वीक है। तो हमारा अगर हम टॉप फोर में हैं तो वो कोई बहुत बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। हमको उससे भी बेटर होना चाहिए, हमें टॉप थ्री में रहना चाहिए। फोर से तो फाइव पे भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि सेमीफाइनल। जैसे आपने कहा कि ये टीम जो है हमारी, हमने इस बार भी देखिए एक फास्ट बॉलर, हमने एक न्यू फास्ट बॉलर लिया है, नंदिनी जो है वापस आए, मतलब पहली बार उनको नेशनल टीम में जो है ना मौका मिला है। फास्ट बॉलर है 24 वर्षीय, वो एक उनको मतलब उनका जो है अगर मुझे याद है विमेंस लीग में उन्होंने 17 विकेट लिए थे और काफी स्ट्रांग लगी थी वो। तो चेस मतलब इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो सिलेक्टर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये पहले नहीं होता था। पहले विमेंस क्रिकेट में ये हम नहीं देखते थे, ये मैं कहूं कि पिछले 3 साल में देखा गया कि सिलेक्शन मैटर्स को लेके हम बहुत फेयर हो गए। इससे रिजल्ट भी दिख रहा है, हमको रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है। और बाकी जो कोर है टीम का वो तो सेम है हमारा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टीम जो है फाइनल खेलेगी, क्योंकि इसमें वो क्षमता है। अब लंदन में कैसे खेल पाती है, क्या कर पाती है, वो अपनी जगह है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टीम की स्ट्रेंथ नहीं, कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई क्या ये लड़कियां अपने आप को उस वक्त, अब बिकॉज सेकेंड हाफ है इसका समर का, उस टाइम पे वो कैसे मैनेज कर पाती हैं, वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं और सीमिंग कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लगातार अब जो नए बदलाव हो रहे हैं तो नए नए खिलाड़ियों को भी जगह दी जा रही है। आपने नंदिनी शर्मा का जिक्र किया जिसने अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेली है वो, तो उम्मीद है कि आगे भी हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे अभी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो डेनमार्क में चल रहा है और आज सेमीफाइनल में भारत का सामना फ्रांस से होगा। लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया है कि लक्ष्य सेन चोट के कारण बाहर हो गए हैं और इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हम पूरी की पूरी पूरा क्रम दारोमदार देखें तो कहीं ना कहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर आ गया है और इसके अलावा आयुष शेट्टी है हमारे पास, तो कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी आज भारत के लिए।
1: हो जाएगा ये, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्रांस के साथ हमारे जो है सिंगल्स, एक सिंगल्स तो हमको उम्मीद थी कि लक्ष्य से मिलेगा
0: जी।
1: और लक्ष्य अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खासा फॉर्म है उनका, और उनमें यही रहा है कि इंजरी ने उनके पूरे करियर को चौपट किया हुआ है। अगर हम उनके करियर का एक ग्राफ देखेंगे, जब जब लगता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं कोई ना कोई इंजरी से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। उनको एक मैं ये मानता हूं अगर उनको 3 साल इंजरी फ्री मिल जाएं तो उनके रिजल्ट्स भी कमाल के होंगे, लेकिन अब ये हो गया है क्योंकि कल उन्होंने हमने देखा कि कितनी डाइमें मारी हैं उन्होंने।
0: बिल्कुल,
1: जहां मौका मिला है हर शटल के ऊपर उन्होंने अपनी जान बिल्कुल लगा
0: दी। इसी डाइव के कारण उन्हें कोहनी पर चोट लग गई।
1: तो ये है, तो ठीक है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये सब उसका एक हिस्सा है, लेकिन हाँ हमारे चांसेस जरूर थोड़े से कम हो जाएंगे इसमें।
0: हाँ, और लक्ष्य सेन की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। अपने श्रोताओं को बता दें हम, और क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर हालांकि एक पदक तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन फ्रांस ने जापान को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो उसमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। तो देखते हैं आज का मैच कितना रोमांचक होता है। हमने बैडमिंटन की बात की तो हम टेनिस की भी बात करेंगे, क्योंकि भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामनी ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में फ्रांस के एंटोनी गिबाउडो को सीधे सेटों में हराकर पहली बार एटीपी चैलेंजर्स फाइनल में पहुंचकर बड़ी सफलता हासिल की है। 8 साल के इस भारतीय खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में संयमित और आक्रामक खेल दिखाया है और उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। फाइनल में कल धामने का सामना बेल्जियम के बुआयसर गदामौरी से होगा।
1: देखिए, बहुत हम लोगों को सिंगल्स वाले जो वर्ल्ड है वहां से हमको अच्छी खबर मिलती नहीं है, तो जैसी भी खबर है कि एक यंगस्टर अच्छा करता है तो हम सब एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें मेन सिंगल्स में जमाना हो गया है कि हमें अच्छी खबर मिले। ठीक है, जितने भी हमारे यूकी भामरी और ये सारे जितने लोग खेलते रहे सालों साल खेले, लेकिन अपना एक जो प्रॉमिस दिखाने के बाद कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और ये देखा गया है कि हमारे जितने सिंगल्स के खिलाड़ी होते हैं बहुत जल्दी अपने लाइफ में उनको ये पता लग जाता है कि बहुत आगे का रास्ता उनसे तय नहीं होगा, इसलिए वो डबल्स खेलना शुरू कर देते हैं। सुमित नंगल के साथ भी हमने यही देखा था और आज भी यही, अभी बस उम्मीद है कि यहां कुछ और देखने को मिले।
0: चीन के सूझो से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि एएफसी अंडर 17 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने पहले ग्रुप मैच में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में कल से आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप

0: हो रहा है और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनंतजीत सिंह, राइजा और मरोज अहमद। और श्रोताओं, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय है आपसे विदा लेने का। तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त। और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
4: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
0: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य

0: सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित सीबीएस को दूरसंचार विकास केंद्र सीडॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज सीडॉट जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस सीडॉट की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
6: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 390,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उपमहानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियां सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कविगुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में, और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है, मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनी है, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने

0: ये कहानी सुनी है, ये पात्रता की रिपीटिशन हो, ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहे कि साहित्यकार चुनिए साहब, फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कभी लिख सकता हूँ, तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं, रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम में ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन पांच पांच मिनट के 6 एपिसोड होते थे, मतलब 6 दिन तक मंडे टू सैटरडे वो पांच पांच मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और पांच पांच मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जो उनका नाटक है मुझे, तो फिर मैंने दो जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा, तो रिकॉर्डिंग जब हो गई तो जब प्रसारण उसका हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुनला तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी, तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो, ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है, गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
2: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
3: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा, ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं या मेघालय की खासी लोक कथाओं

0: का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
1: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। W.G. आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हरेक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जैसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकर लाल मीना। और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है। शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी, जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला, जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।

0: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
1: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विशेष की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें एलिस इका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तेमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सव की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बचा रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
2: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
0: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस इका की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
3: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा, ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
4: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से न सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहां जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो जो लिखावट थी हाँ उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्नी के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है, तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
3: सीमा जी ये

0: यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
1: पापा शायद ना चाहते क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज डॉटर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को दुनिया के साथ ये शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
0: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं अपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
1: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ तो आप उनको मेरे फादर को जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं और ये पोइट्री ऐसी है इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है तो इसको मैं इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
0: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, इससे ज्यादा गहरा जुड़ाव क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
2: माहौल में,
0: छत्र छाया में। हाँ, तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है, और आपको क्या उम्मीदें हैं?
2: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
1: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं, हम मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर, आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
2: कल्चर
1: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाएं और बाखूबी ले जाएं। ये बहुत जरूरी बात है।
2: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो
1: दिली दिल बहुत खुश होते हैं कि ये छप गई है।
0: आपसे एक दरखास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियां आप हमें, पहले सुजाता जी।
2: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है वो पहली बारिश। जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारत। बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान

0: ऐलान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित सीबीएस को दूरसंचार विकास केंद्र सी डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में क्रांतिकारी पहल बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी करेंगे जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograhat Pushtim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for the all the 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering

0: ने आज ईरान और इसराइल अमरीका गठबंधन के बीच चल रहे तनाव को न युद्ध न शांति वाली स्थिति बताया। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री इलाही ने कहा कि ईरान ये संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन लगातार हो रहे हमलों के बीच उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही बातचीत जारी रहने की उम्मीद थी, उन्होंने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक स्थिरता उन लोगों की कार्रवाइयों पर निर्भर करती है जिन्होंने शत्रुता शुरू की थी। ईरान में मौजूदा स्थिति के बारे में श्री इलाही ने कहा कि हालात स्थिर बने हुए हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति अस्थिरता को अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से जोड़ा। श्री इलाही ने भारत के साथ ईरान के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भी प्रकाश डाला और भारत को एक महान देश बताया जिसका ईरान बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिसकी जड़ें शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक संबंधों में जुड़ी हुई हैं। श्री इलाही ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध, सहयोग और तालमेल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान द्वारा दी जाने वाली सुविधा इन संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी ईरान और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अमरीका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया। अमरीका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मौजूदा युद्धविराम के बावजूद झड़पें जारी हैं। इसराइल की सेना ने क्षेत्र के 9 गांवों के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी देने के कुछ समय बाद ये हमले किए। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने तटीय गांव बायद में एक घर में मौजूद इसराइली सैनिकों पर ड्रोन हमला किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी ये टिप्पणी पेंटागन द्वारा कल की गई उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि ईरान संघर्ष और व्यापारिक शुल्कों को लेकर बढ़ते तनाव के चलते अमरीका जर्मनी से 5000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। श्री पिस्टोरियस ने यूरोप से अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। जर्मनी में अमरीकी सैन्य उपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई और शीत युद्ध के दौरान 1960 के दशक में चरम पर पहुंच गई, जब सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए लाखों अमरीकी सैनिक यहां तैनात थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR

0: उस हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वे तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी समिति ने पाकिस्तान द्वारा बच्चों और अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने एक सम्मेलन में पंजीकृत शरणार्थियों सहित अफगान नागरिकों के खिलाफ की गई पाकिस्तान की जबरन कार्रवाइयों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समिति ने कहा कि पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न, यातना या दुर्व्यवहार के बावजूद अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर करना था। समिति ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की गहन जांच की भी मांग की और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आह्वान किया। समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित कार्यकर्ताओं इदरीस खट्टक, अली वजीर और महरंग बलूच पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी हिरासत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह द्वारा की गई है। इसमें चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: केन्या में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आई बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन से एलगियो मार्कवेट काउंटी के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार क्वाले काउंटी और किटुई काउंटी में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमरीका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव विद द वर्ल्ड न्यूज।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 20 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का, और हर सिंगार की इस महफिल को लेकर मैं हूं हाजिर आपके दरमियान। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब।

और एक बार फिर से सदाबहार गीतों की कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। और आज ऐसे ही सदाबहार कहानियों और नगमों के साथ हाजिर हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। और आज की शाम हम आपको एक ऐसे ही मौसीकी के सफर पर लेकर जा रहे हैं। आज की रात एक ऐसे ही मौसीकी के सफर पर हम आपको लेकर जा रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक नगमे हैं। और पहला नगमा एक ऐसा नगमा है जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको भी बेहद पसंद है। और आज ही नगमा सुनते ही आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आएगा। कहते हैं जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातें होती है और कुछ तस्करा होता है, तो फिर कई बार ये बात जहन में आती है कि वो ये पूछ बैठते हैं कि यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का भी इरादा है। और ऐसा ही एक नगमा है 1970 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म सच्चा झूठा में। इस फिल्म में राजेश खन्ना दोहरी भूमिका में हैं। उनके साथ मुमताज और विनोद खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। कहानी एक सरल ग्रामीण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसका एक हमशक्ल होता है एक ठग, जो उसकी सादगी और हूबहू शक्ल का फायदा उठाता है। इस फिल्म की कहानी मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा ने लिखी है और यह फिल्म 1957 की एक बंगला फिल्म ताशेर घर, जिसमें उत्तम कुमार ने अभिनय किया था, का रूपांतरण है। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और ये एक सुपरहिट फिल्म रही। राजेश खन्ना के अभिनय की उस समय समीक्षकों ने खूब सराहना की और उन्हें 1971 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने के कारण यह फिल्म 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में शामिल हो गई। तो आइए उसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी, आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं लता जी और मोहम्मद रफी साहब की।

यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में यह नगमा था फिल्म सच्चा झूठा से, और यह फिल्म आई थी 1970 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब हर सिंगार की इस महफिल में बात एक ऐसे नगमे की जो एक शुद्ध हिंदुस्तानी जबान में नहीं होने के बाद भी लोगों ने इतना पसंद किया कि वो सदाबहार और अमर गीत बन गया। तो आइए बात करते हैं उसी यादगार फिल्म की जिसने न सिर्फ सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन किया बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी दिया, और वो फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। साल 1972 में रिलीज हुई यह फिल्म एक व्यंगात्मक यानी तंजिया संगीतमय ड्रामा थी जिसे नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले मशहूर और मारूफ अभिनेता और फिल्मकार देवानंद साहब ने लिखा था, और उसके निर्माण और निर्देशन के साथ साथ इस फिल्म में देवानंद साहब ने खुद अभिनय भी किया था। उनके साथ मुमताज, जीनत अमान और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म उस दौर की एक अहम सामाजिक समस्या को उजागर करती है जिसमें हिम्पी संस्कृति का पतन, साथ ही यह फिल्म नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश देती है।

है और पश्चिमीकरण के प्रभाव से जुड़ी चुनौतियों को भी दर्शाती है। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। खासतौर पर जीनत अमान के करियर के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने एक आधुनिक हिप्पी युवती का किरदार निभाया जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। सवाल ये है कि इस फिल्म को बनाने का ख्याल देवानंद साहब के जहन में आखिर कैसे आया? तो दरअसल देवानंद साहब को हरे रामा हरे कृष्णा का ख्याल तब आया जब वे अपनी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध प्रदर्शनों से वो काफी निराश थे। उसी दौरान उन्होंने नेपाल के काठमांडू का दौरा किया जहां उनकी मुलाकात हिप्पी समुदाय से हुई। यही अनुभव इस फिल्म की प्रेरणा बना। हरे रामा हरे कृष्णा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक दौर की कहानी है, एक चेतावनी, एक संदेश और एक यादगार सिनेमाई अनुभव। इस फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। खास बात यह है कि दम मारो दम और हरे रामा हरे कृष्णा जैसे गाने युवाओं के बीच बहुत जल्द हिट हो गए और उनके सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया, जबकि देखो दीवानो ये काम न करो और साथ ही साथ फूलों का तारों का और कांची रे जैसे गीतों ने संगीतकार आर डी बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया भी। एक रोचक तथ्य यह है कि कांची रे कांची नगमे में नेपाल के प्रसिद्ध संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म में पहली बार नेपाली फोक इंस्ट्रूमेंट मॉडल वाद को बजाया था और आर डी बर्मन साहब ने उन्हें बॉलीवुड में तब मौका दिया जब उन्होंने रंजीत द्वारा रचित गीत कांचा रे कांचा को नेपाली भाषा में सुना था और उसका ट्यून उन्हें बहुत पसंद आया था। उसके बाद इस गीत के बोल और संगीत को हिंदी में कांची रे के रूप में फिर से लिखा गया जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी और ये गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आइए सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णे का वही नगमा, वही सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की, और वो फिल्म है 1973 की एक संगीतमय ड्रामा फिल्म जिसका नाम है अभिमान, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी, बिंदु, डेविड मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म खास तौर पर अपने गीतों के लिए याद की जाती है और इन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मनहर उदास जैसे गायकों ने अपनी आवाजें बख्शी है। ऐसा माना जाता है कि यह फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो महान कलाकारों के जटिल वैवाहिक जीवन पर आधारित है। वहीं इस फिल्म से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसकी कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी के जीवन से प्रेरित होकर बनाई। ऐसा भी माना जाता है कि 1954 की एक अंग्रेजी फिल्म अ स्टार इज बॉर्न का भी इस पर हल्का प्रभाव है। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि यह फिल्म 1970 की बंगाली फिल्म विलंबिता लॉय से भी प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और अमिताभ बच्चन के करियर में एक अहम किरदार निभाया। जया बच्चन को अभिमान के लिए फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी इसी फिल्म से अपने संगीत के करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने जया बहादुरी के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया था। और खास बात यह है कि इस फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या है। इस फिल्म के गानों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प वाक्या ये है कि कहते हैं ना कि जो बड़ा कलाकार होता है उसका दिल

उससे ज्यादा बड़ा और विशाल होता है। ऐसा ही हुआ इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसके बोल हैं लूटे को ये मन का नगर। इस गीत का डेमो मनहर उदास ने रिकॉर्ड किया था और इसे मूल रूप से मुकेश साहब के द्वारा गाया जाना था, लेकिन मुकेश साहब ने ये डेमो सुना तो ये कहते हुए मना कर दिया कि ये डेमो बहुत अच्छा है और इस गीत के लिए मनहर उदास को ही मौका दिया जाना चाहिए। और हुआ भी वही, मुकेश साहब के कहने पर उनको ही ये गीत गाने का मौका दिया गया और मनहर उदास साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया। तो ऐसे होते हैं बड़े कलाकार मुकेश साहब की तरह। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है ST बर्मन साहब का।

किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म अभिमान से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की हर सिंगार और हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा 1975 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आंधी से। वैसे तो इस फिल्म के सारे ही नगमे बेहद प्यारे हैं मगर यह नगमा कुछ खास है। ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं, ये उन अधूरी कहानियों की आवाज है जो कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ते बदल लेती है। सोचिए एक ऐसा मोड़ जहां दो लोग साथ तो नहीं चल पाते लेकिन एक दूसरे की यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं और यही इस नगमे की खूबसूरती को बयान करता है। तो आइए सुनते हैं वही बेहद खूबसूरत नगमा आंधी फिल्म से एक बार फिर से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत से संवारा है RD बर्मन साहब ने।

0: के बाद ठीक 11:10 पर एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों

0: और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। ये फिल्म जिसका नाम है आवारा। ये फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद राज कपूर साहब ने किया था और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस, लीला चिटनिस, के एन सिंह और शशि कपूर। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए।

नगमा था और आवाज थी मुकेश साहब की। बेहद खूबसूरत यह फिल्म है और यह फिल्म आई थी 1951 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों को लेकर हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हमारे उन महान कलाकारों ने, उन महान फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बना दी जो हमेशा के लिए यादगार रह गई। सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि ये फिल्में अमर हो गई। उसी श्रेणी में एक और फिल्म आई थी 1952 में और वो फिल्म थी आन। महबूब खान साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद महबूब खान ने किया था और इसको लिखा था एस अली रजा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में दिलीप कुमार, निमी, नादिरा, प्रेमनाथ वगैरह ने बहुत ही अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया भी गया और गायकों ने बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाजें भी बख्शी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, शमशाद बेगम और भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म के गीतों को गाया है। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है नौशाद साहब ने। तो आइए आन फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:22 और 48 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीतों की, गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो हम सबके दिल के बेहद करीब है और बहुत ही पसंदीदा नगमे होते हैं। इन नगमों को सुनने के बाद एक अलग सा सुकून हम सबके दिलो दिमाग में छा जाता है और कोशिश ये होती है कि हम इन नगमों को बार बार सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसा ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बूट पॉलिश से। ये फिल्म आई थी 1954 में। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और इस फिल्म को राज कपूर साहब ने बनाया था या उनके निर्माण में बनी थी यह फिल्म। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय दिखाए थे वो थे रतन कुमार, नाज, डेविड चंद बर्क, बुधो आडवाणी और खुद राज कपूर साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के गीतकार शैलेंद्र ने एक नेत्रहीन गायक के रूप में चली कौन से देश गाना भी गाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म का ये नगमा बूट पॉलिश का ये नगमा आशा भोसले जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में खास तौर से आपके लिए।

0: लाखों में तो बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तो बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:33 और 4 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें बार बार आप सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कई बार आप इन्हें देखना भी चाहते हैं। तो उस दौर के जो नगमे हैं यानी 1947 से लेकर के 1965 के आसपास के जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, बेहद खूबसूरत फिल्में और माइलस्टोन ये मूवी थी, वो तमाम फिल्में जो उस दौर में बनी आज भी हम उन्हें जब भी देखते हैं तो हमें उस दौर में लेकर चले जाते हैं जब सब कुछ बिल्कुल नया नया था। उसी दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था CID और ये फिल्म आई थी 1956 में। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में, इस फिल्म को लिखा था इंद्रराज आनंद ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद, शकीला, वहीदा रहमान, केन सिंह, जॉनी वॉकर और साथी कलाकारों में कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन, दिलराज, जगदीश वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और जान निसार अख्तर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था ओपी नैयर साहब ने। तो इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

फिल्म नया दौर का यह नगमा था मोहम्मद रफी साहब आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, और यह फिल्म आई थी 1957 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। गोल्डन एरा के नगमों में हम आपके लिए उन नगमों को चुनकर लाते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कई बार आप झूमने भी लगते हैं इन नगमों को सुनकर। उन्हीं नगमों में से ये नगमा था नया दौर का, जिस पर यकीनन आपने जरूर झूमना शुरू कर दिया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। और ये फिल्म है 1963 में आई मेरे महबूब के नगमे से हमने लिया है ये नगमा, और जिसके निर्देशक थे एस रवेल साहब, जिसका निर्माण भी खुद उन्होंने ही किया था, यानी HS रवेल साहब ने ही किया था। इस फिल्म के

गीतों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था उनमें राजेंद्र कुमार, साधना, निमी, अशोक कुमार, प्राण, जॉनी वॉकर, अमिता, मुमताज बेगम और मलाइका वगैरह ने बहुत ही अहम और खूबसूरत किरदार निभाया था। इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी की आवाज में, और इसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने।

फिल्म मेरे महबूब के इसी नगमे के साथ अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। आवाजें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रवि साहब ने। और यह कव्वाली है 1963 में आई फिल्म आज और कल से। तो आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती

0: 24 मई को होगी। 24 पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Pargana district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam,

0: AIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी उजाले की ओर। दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाचार और बेबस लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब वो काम करने निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इस मुहिम में कुछ और लोग भी अपने आप हाथ लगा देते हैं और तभी मिल पाता है उजाला। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की जिसको सुना रही हैं मंजू बत्रा और ये कहानी भी उन्हीं की कलम से। तो आइए सुनते हैं। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgoldairdelhi@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच गरिमा दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इस इंटरनेट पैक को भी आज ही खत्म होना था। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सुबह से ही इतनी हड़बड़ी में रही कि मोबाइल रिचार्ज करने का ना तो मुझे ख्याल रहा और ना ही वक्त। मैंने ट्रेन की लाइव लोकेशन भी चेक नहीं की। कोई मेरे जितना लापरवाह कैसे हो सकता है। गरिमा ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनाउंसमेंट को सुना।
2: कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते।
1: अनाउंसमेंट हो रही थी चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय से ठंड और कोहरे की वजह से 4 घंटे देरी से है। 4 घंटे इंतजार, गरिमा का दिल बैठ गया। वो बेमन से सामान की ट्रॉली और अपने शरीर को खींचते हुए वेटिंग रूम के बारे में पता करने लगी। मैम, यहाँ 2 तरह के वेटिंग रूम हैं, नॉन एसी और एसी। आप कौन सा वाला लेंगी? अच्छा, ये बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? फैसिलिटी और सर्विस का डिफरेंस है मैम। अच्छा अच्छा, ऐसा करो मुझे एक एसी वेटिंग रूम का टिकट दे दो। अच्छा मैम। टिकट लेने के बाद गरिमा मन ही मन सोचने लगी, यात्राएं तो महंगी सस्ती होती हैं पर इंतजार भी महंगा और सस्ता होता है। इस बात पर तो उसने कभी गौर ही नहीं किया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। एसी वेटिंग रूम का टिकट अपने पॉकेट में रखकर गरिमा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। प्लेटफॉर्म पर कोने में एक फकीर और उसकी बेटी गाना गा रहे थे।

रेलवे स्टेशन पर मध्यम रोशनी है, ऐसी रोशनी कि जिसे ना तो उजाला कहा जा सकता है और ना ही ऐसी ओझलता कि जिसे अंधेरा ही कह दिया जाए। रेलवे लाइन आपस में कितनी टकराती हैं, पर मजाल है किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रास्ता ना दिया हो। गरिमा ठंड से कांप रही थी, दिसंबर की ठंड उछल कर जनवरी के महीने में कूद आई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने कोहरे को अपने बच्चे की तरह गोद में बिठा रखा हो। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्टॉल पर नए साल के बीत जाने के बाद भी ग्रीटिंग कार्ड किसी के इंतजार में सांसें भर रहे थे। इस बार गरिमा जल्दबाजी में कोई नॉवेल अपने साथ रखना भूल गई है और ऊपर से 4 घंटे का इंतजार, अब वो क्या करे। गरिमा मन ही मन सोचती है कि उसने हमेशा ही दौड़ती ट्रेन में ठहरे जीवन के फलसफों को नॉवेल में पढ़ा है, तो क्यों ना इस बार ठहरे हुए वक्त में अपनी जिंदगी की रफ्तार को लिख लिया जाए। यही सोचकर गरिमा ने स्टॉल से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। ग्रीटिंग कार्ड लेकर गरिमा वेटिंग रूम में आ जाती है और कोने में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर ग्रीटिंग कार्ड लिखने लगी। लिखते हुए वो सोचती है उसके पास वक्त भी निर्धारित है और स्पेस भी। ग्रीटिंग कार्ड के सिर्फ 2 पेज और इंतजार के 4 घंटे, सिर्फ इस टाइम और स्पेस में उसे अपनी बात खत्म करनी होगी। इसलिए गरिमा ज्यादा स्मृतियों में ना जाकर पिछले दिसंबर के महीने में खुद को उतार देती है। हाँ,

दिसंबर के ठंड के दिन ही थे जब उसकी डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर कार्तिक दो गली छोड़कर गरिमा के फ्लैट के सामने वाले बंगले में रहते हैं। डॉक्टर कार्तिक ने पूरे बंगले को ही हॉस्पिटल बना रखा है। बेसमेंट में मरीजों को एडमिट करने का अरेंजमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर रूटीन चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेकेंड फ्लोर ही है जहां पर दवाइयों की स्मेल नहीं आती, और वो है

एक दिन गरिमा एक बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर कार्तिक के घर गई। क्या हुआ इन्हें? पैर में हल्की सी मूछ है डॉक्टर। क्या कह रहे थे नन्हे जनाब कि आपके पैर में मूछ आ गई? विभू डर के मारे गरिमा की तरफ देखता है और गरिमा डॉक्टर को जवाब देती है, कुछ नहीं डॉक्टर, कल रात रजाई में बैठकर शक्तिमान देखते रहे और सुबह मुंह से स्मोक धुआं निकाल निकाल कर अपने दुश्मनों को मारते फिर रहे थे, और फिर भी तमराज किलविश नहीं मरे तो छत पर जाकर शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूमकर सीधा टेरेस से बालकनी में आ गिरे हैं और नतीजा आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर कार्तिक और गरिमा दोनों विभू के बालमन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विभू शर्मा जाता है और गरिमा को जोर से पकड़ लेता है। गरिमा के जाने के बाद डॉक्टर कार्तिक गरिमा की पर्सनैलिटी और बिहेवियर से बड़ा खुश होते हैं, पर डॉक्टर कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र लड़की का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने नौकर मनोहर से पूछते हैं, कौन थी ये मैडम? सब प्रोफेसर है, अनाथ बच्चों को पालती है, सामने वाली बिल्डिंग में पूरे दो फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है इसने, ना जाने कहां से किस किस को उठा लाती है, कभी भी कहीं से भी कोई भी जख्मी कुत्ता उठा लाती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, ठंड में कपड़े पहनाती है, गरीब बच्चों को पेंसिल किताबें बांटती फिरती है। अभी पिछले संडे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में लोगों के सामने भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि सभी अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में शिक्षा और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलता है, पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा है साहब इसने। साहब खुद का कोई घर परिवार तो है नहीं, इसलिए अनाथों को पालती फिरती है, घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं इसने। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी तो मेरी भी नहीं हुई। साहब आपकी बात अलग है। कैसे अलग है? डॉक्टर कार्तिक ने चश्मे को टेबल पर रखते हुए पूछा। वो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन आप इन मैडम से बहुत बेहतर हैं, और हाँ इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहिए। लोगों से कपड़े मांगती फिरती है, कभी कुत्तों के लिए खाना मांगती है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। छोड़िए साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए, मैंने खाना लगा दिया है, आइए खाना खाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को मनोहर की बातों में एक संकीर्णता नजर आई और वो पूरी रात गरीब

एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान कॉलोनी के पार्क में डॉक्टर कार्तिक को गरिमा नजर आती है। उनके कदम ना चाहते हुए भी गरिमा की ओर खींचे चले आते हैं। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कार्तिक, आप कैसी तबीयत है नन्हे शक्तिमान की? अच्छा है, मैंने सुना है बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी हाँ, पूरे 16 बच्चे और 18 स्ट्रीट डॉग्स की माँ हूँ मैं। और एक हमें देखिए, पूरे घर में एन मीन तीन लोग भी नहीं। अच्छा गरिमा जी, मैं चलता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर रोज ही डॉक्टर कार्तिक और गरिमा अपनी दिनचर्या को लेकर अक्सर बातें करने लगे। एक दिन डॉक्टर कार्तिक गरिमा को अपने घर पर चाय के लिए इन्वाइट करते हैं और

कहते हैं कि उनका एक दोस्त कल शाम उनसे मिलने अमेरिका से आ रहा है और कल शाम का वक्त वो उनके और उनके फ्रेंड के साथ बिताए तो उन्हें अच्छा लगेगा। गरिमा भी हाँ कह देती है। डॉक्टर कार्तिक केतली से कप में चाय डालते हुए कहते हैं, गरिमा जी इनसे मिलिए, ये हैं अंकुर सक्सेना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ साथ स्कूलिंग की, कॉलेज भी साथ गए और फिर हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मैं MBBS करके लौट आया पर अंग्रेजी जर्नलिज्म ने इसके पैर बांध दिए और ये वहीं सेटल हो गया। आजकल ये अमेरिका की किसी न्यूज एजेंसी में सीनियर जर्नलिस्ट है। और अंकुर अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गरिमा, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी फैमिली है इनकी, पूरे 16 बच्चे और 18 डॉग्स की माँ है ये। डॉक्टर कार्तिक, मैं तो इस फैमिली को और भी बड़ा करना चाहती हूँ पर मैं करूँ क्या, मैं तो अपने आप को इस मामले में बहुत बेबस और लाचार समझती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ वो बच्चे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, जो चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों की जूठन धोते हैं, जो रेड लाइट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर जिनके हिस्से में छोटू गुड्डू जैसे शब्द ही आ पाते हैं। आपको मालूम है जब मैं इनके शरीर पर स्कूल यूनिफॉर्म देखती हूँ, कंधों पर स्कूल बैग, हाथों में रंगीन किताबें देखती हूँ, स्कूल जाते इनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी बौनी हो गई हो, मानो इन कदमों ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया हो। मेरे भीतर की इस माँ को समझा है कभी किसी ने? मैं चाहती भी नहीं कि लोग मुझे समझें पर मुझे वो ना समझें जो मैं नहीं हूँ। मेरी सैलरी से मैं बस इतने ही अनाथ बच्चों को पाल पाती हूँ। जब कोई अनाथ बच्चा मेरे दरवाजे से बिना शरण लौट जाता है मैं समझा नहीं सकती मेरा दिल कितने टुकड़ों में फट जाता है। क्या महसूस किया है आपने कभी ऐसी माँ के कलेजे को?

लंबी और गहरी सांस भरते हुए अंकुर ने गरिमा से कहा, तो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखती? बहुत सी एनजीओज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी कलम घिस गई है आर्टिकल लिखते लिखते। और आर्टिकल ही क्यों, मैंने तो कई कॉन्फ्रेंसेस में लंबे लंबे भाषण भी दिए हैं, पर मुझे कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आई एम स्टिल हेल्पलेस मिस्टर अंकुर। मैं आज भी बेसहारा हूं, मैं आज भी बेबस हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक और मिस्टर अंकुर के चेहरों की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर कार्तिक, मैं भावनाओं में बह गई थी, इस खुशी के मौके पर न जाने क्या उठपटांग बात लेकर बैठ गई। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों का डिनर का वक्त हो गया है, मुझे खाना बनाना है। क्या मेड नहीं रखी आपने? मेड नौकर रखने का मतलब है मेरे एक बच्चे की एजुकेशन का खत्म हो जाना। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंकुर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लिसन गरिमा जी, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिएगा।

0: में मॉर्निंग वॉक करते हुए गरिमा नोटिस करती है पिछले 3 दिनों से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस दिन चाय पर उनके दोस्त के सामने वो कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गई थी। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो शाम को डॉक्टर कार्तिक के घर जाती है। डॉक्टर कार्तिक अपने अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर कार्तिक कौन? गरिमा जी? जी हाँ, क्या हुआ आपको? आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते?
1: कुछ नहीं,
0: थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर होकर आप भी बीमार हो गए? यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का दिल धड़कना बंद नहीं करता। हम डॉक्टर को भी कई बार दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने किसे बुलाया अपने इलाज के लिए? डॉक्टर साहिबा आज खुद ही चली आई हमारी बीमारी पूछने। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कार्तिक? नहीं, मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूँ। क्या? यही कि आपसे मिलने से पहले मेरी सोच कितनी सीमित थी। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ। और कई जगहों पर तो मैंने ये भी कहा कि मैं लोगों की मदद करने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे शादी करने का भी वक्त नहीं मिला। शादी ना करना मेरे लिए ऐसा त्याग रहा जो मैं समाज पर उधार की तरह वसूलता रहा। पर उस दिन जब मैंने आपको सुना तो लगा एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया और फिर भी अपने आप को कितना बेबस और लाचार समझती है। गरिमा जी, मेरा दिल आपकी तरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। मुझे अपना ये बड़ा घर अब तहखाना सा लगता है। आप बुरा ना माने तो अपने नए बच्चों को यहाँ जगह दे सकती हैं। आपको पता है गरिमा जी, मुझे अभी तक जिंदगी से यही शिकायत रही कि मुझे मुझ जैसा कोई सोलमेट क्यों नहीं मिला। पर आपसे मिलने के बाद मेरी शिकायत भी खत्म हो गई। गरिमा जी, मैं आप पर कोई हक नहीं चाहता, आपका साथ चाहता हूँ। आप एक और अनाथ को अपने परिवार में शामिल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए डॉक्टर कार्तिक, आप मुझे बेबस और लाचार समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है।
1: क्या कहा?
0: बेबस और लाचार? और नहीं तो क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे पुरुषों को जिन्हें बौद्धिक और आत्मनिर्भर महिलाएं आकर्षित तो करती हैं, पर वो सिर्फ उन्हें घर की चार दीवारी के खूंटे में ही बांधना चाहते हैं। गरिमा, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा दिमाग भी विशाल है, लेकिन मैं गलत हूँ। तुम बहुत ही आत्मकेंद्रित महिला हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा? विचारों के स्तर पर बहुत बौनी हो तुम, जो अनाथ बच्चों की सेवा पर सिर्फ अपना अधिकार समझती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ ओरिएंटेड के साथ साथ लालची भी हो। डॉक्टर कार्तिक, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची और आत्मकेंद्रित कहने की?
1: मैंने तो सही को सही और गलत को गलत कहा है।
0: अब समझ आता है कि क्यों तुम्हारा सच जो जायज है व्यक्तिगत स्तर पर सिमट कर रह गया है। शट अप डॉक्टर कार्तिक।
1: शट अप डॉक्टर कार्तिक कहकर वो डॉक्टर कार्तिक के घर से लौट आई थी। ऐसा लग रहा था ग्रीटिंग कार्ड ने भी उसे शट अप कह दिया था। ग्रीटिंग कार्ड के पन्ने खत्म हो गए थे। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वक्त ने भी उसे स्टैचू बोल दिया था।
2: कृपया ध्यान दीजिए,
3: 12621।
0: प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एक्सप्रेस के खड़े होने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। गरिमा का वक्त और स्पेस खत्म हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। एक हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में टिकट, गरिमा अपने विकल्प के मझधार में फंस जाती है। ग्रीटिंग कार्ड उसे उसके प्यार तक ले जा सकता है और टिकट उसे उसकी मंजिल की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गरिमा बहुत सोचने के बाद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगती है और अपने लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंकने लगती है। पर वो देखती है कि डस्टबिन में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े पहले से मौजूद हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने अपनी रेल की टिकट को नहीं फाड़ा है, इसलिए ये मोहब्बत के परचम डस्टबिन में अभी भी किसी के इंतजार में सांसें भर रहे हैं। गरिमा अपने रेल टिकट के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में ग्रीटिंग कार्ड के कचरे पर फूल की तरह

टैक्सी में बैठी गरिमा को याद आता है कि जिस दिन उसका और डॉक्टर कार्तिक का झगड़ा हुआ था, तब से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। उनके घर के बाहर मरीजों की भीड़ भी नहीं दिखी। कल दोपहर को लंच के बाद उसने सेकंड फ्लोर से डॉक्टर कार्तिक की खिड़की की ओर देखा तो विंडो पर काले पर्दे लगे हुए थे। ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सच ही तो कहा था डॉक्टर कार्तिक ने कि मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दरवाजा ना खुलने पर गरिमा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। दरवाजा खोलो कार्तिक, ओपन द डोर। तुम सही थे कार्तिक, मैं अपने बच्चों के प्यार में बहुत लालची हो गई थी, जिसने आपके प्यार की गहराई को नहीं समझा। सही कहा था डॉक्टर कार्तिक आपने, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अंधेरे में भी रोशनी खिल जाएगी। वी लव यू कार्तिक, वी ऑल लव यू।

0: थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज आती है। गेट पर कार्तिक खड़े हैं। गरिमा तुरंत डॉक्टर कार्तिक के गले लग जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक गरिमा का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। बहुत ठंड है बाहर। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट फाड़ ही दी तुमने, चाय का कप थमाते हुए कार्तिक ने कहा। गरिमा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर लौटोगी, कल शाम को कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी। देखो मैंने आज दोपहर की 2 एयर टिकट चेन्नई के लिए पहले से ही बुक की हुई है। तभी कार्तिक का मोबाइल रिंग करता है। हेलो कार्तिक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। सुन, प्रोफेसर गरिमा को कांग्रेस कह देना। कार्तिक अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर देता है। क्यों कांग्रेस कह दूं गरिमा जी को? अरे उनके आर्टिकल्स ने हंगामा मचा दिया है। मैंने उनके आर्टिकल्स का एक कोलाज बनाया था और वो स्टोरी इतनी हिट हुई कि एक बहुत बड़ी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ काम करना चाहती है और एक डॉक्यूमेंट्री कंपनी उनके बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाना चाहती है। और तुझे पता है सबसे खास बात क्या है? क्या है कि वो सभी भारत में रहकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सच कहूं कार्तिक, मैं भी विदेश में रहकर थक गया हूं। मुझे भी अपने देश की मिट्टी बुलाती है। मैं भी अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। मैं भी अपने देश के लिए लिखना चाहता हूं। अच्छा सुन, मैं मीटिंग में हूं। मैं तुझसे और गरिमा जी से बाद में डिटेल में बात करता हूं। कार्तिक और गरिमा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कार्तिक एयर टिकट्स की ओर इशारा करके कहते हैं, हम इनका क्या करूं? गरिमा टिकट्स को कार्तिक से छीनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कार्तिक के गले लग जाती है। मन ही मन बुदबुदा रही थी, सभी ने आधी रात के बाद होने वाले उजाले को पा लिया है। मिस्टर अंकुर को अपना देश मिल गया, डॉक्टर कार्तिक को उनका प्यार, गरिमा के बच्चों को उनका पिता और गरिमा को अपने हिस्से के और नए बच्चे। दोस्तों, कुछ लोग सूरज की तरह होते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन में उजाला फैलाना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी, मंजू बत्रा की लिखी, उन्हीं की जुबानी, उजाले की ओर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldairdelhi@gmail.com।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी। बेहद प्यारी सी ये कहानी सुनकर हर किसी को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, लोग मोटिवेट होते हैं और इसी तरह हर किसी की मदद करते हैं। मैं हूं श्रेयसी और पानी पर लिखी कहानी के बाद अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्यारे से नगमे के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी

0: अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April.

0: नजराना भेजा किसी ने प्यार।
1: नजराना लेकर हाजिर हूँ मैं श्रेयसी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने और संग हूं मैं श्रेयसी इस गाने के नजराने के साथ। तो इसी तरह हम अपने इस गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर छेड़ते हैं वो रात गीतों वाली।

वो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

खुशबू फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आपने अभी सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज में बोल सजाए गुलजार ने और म्यूजिक दिया आरडी बर्मन साहब ने। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग, हूं मैं श्रेयसी और पूरी कोशिश है कि आपको एक से एक प्यारे सुहाने गीतों का संकलन यहां मिल सके। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

गतिग्रह लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

देश परदेश फिल्म से ये गीत हमने लिया दोस्तों, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए अमित खन्ना ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने। जब हम बात करते हैं किसी प्यारे, किसी बड़े ही दिल को छू जाने वाले नगमे की, तो कहीं ना कहीं वो नगमा हमारे किसी पुरानी यादों के झरोखों से होकर गुजर जाता है और फिर बस दिल यूं ही कह उठता है, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, देर से इंतजार है अपना, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है अपना। बढ़ते हैं अब हम इस अगले गीत की तरफ। फिल्म साथ साथ से ये गीत लिया हमने, आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

प्यार मोहब्बत जब अपना सही रूप ले लेता है, जब प्यारा सा दिल एक सही नाम पे आ जाता है, एक सही पहचान में आ जाता है, तो एक प्यारा सा घर यूं ही बसता जाता है। बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, चीखता हुआ उनका जमीर देखता रहता है। तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, रोज रहता है परेशान, रोज झूमता हुआ एक मस्त फकीर देखता रहता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से ये नगमा हमने सुना। बोल सजाए थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आनंद बख्शी जी का ही एक और प्यारा सा गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। फिल्म सुहाग का ये गीत है। बोल आवाजें हैं शैलेंद्र, आशा भोसले और रफी साहब की, और गीत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म उमराव जान से ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज, खयाम के सजाया संगीत और बोल शहरयार के। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी और गीतों का सिलसिला एफएम गोल्ड पर यूं ही जारी है।

और इसी गीत के साथ दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने को हमें देना होगा विराम। जल्द आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के पार फिर से मैं श्रेयसी जुड़ूंगी आपके साथ। धन्यवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक

0: लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 114 Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम रात सुरमई लेकर आपके संग हूं मैं श्रेयशी। तो आइए इस रात को बेहतरीन बनाएं कुछ बेहतरीन गीतों के संग। शुरुआत करते हैं हम इस गीत से, फिल्म मन मंदिर का ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत भी कितने अजीब होते हैं ना। कुछ गीत हमें किसी यादों में ले जाते हैं तो कुछ गीत हमें फ्यूचर प्लानिंग में लगा देते हैं। इसी तरह से कई सारे गीत हमें किसी के करीब भी होने का एहसास कराते हैं। कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

फिल्म मेरा साया का ये गीत दोस्तों आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के सजाए बोल थे और संगीत मदन मोहन का। अगला नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं, फिल्म पत्थर के सनम का ये बेहतरीन गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत ही तो हैं जो हमारे जज्बातों को शब्दों में पिरो करके और बस बयां कर जाते हैं। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

फिल्म अजनबी का ये नगमा दोस्तों सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के सजाए बोल और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो आपके साथ साझा कर रही हूं, दाग फिल्म से लिया हमने किशोर कुमार की आवाज और लता मंगेशकर की आवाजों में। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। बोल सजाए मजरूह सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है एसजी बर्मन साहब ने। आइए अब चलें अगले गीत की तरफ। फिल्म वो कौन थी का ये नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं लता मंगेशकर की आवाज में है, बोल है अनजान के और संगीत दिया है आरडी बर्मन साहब ने।

किसी ने खूब कहा है, अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है। अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है। लिखने वाले ने लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है।

गीत भी कितना अजीब है दोस्तों। कुछ कहने के लिए तो हमेशा ही हमारे पास एक से एक बेहतरीन गीत होते हैं, कुछ बयां करने के लिए, कुछ जताने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, हर चीज के लिए हमारी बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन नगमे हैं। अब ये गीत भी अपने आप में एक उम्दा मिसाल है उन फनकारों की जो कुछ ना कहने पर भी, किसी जज्बात को ना बयां करने पर भी एक गीत बना बैठे। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा बोल सजाए गुलजार साहब ने, म्यूजिक दिया खयाम ने और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। लता मंगेशकर का ही एक और नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं जो मेरे लिए काफी प्रिय है। फिल्म चुपके चुपके का ये गीत आनंद बख्शी के सजाए बोल और एसडी बर्मन साहब का संगीत। आइए सुनते हैं ये नगमा।

गीतों का सिलसिला बस इसी तरह जारी है। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूं मैं श्रेयसी। किसी से रूठो तो संभल कर रूठो। जी हाँ जनाब, किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठो। आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है।

फिल्म प्रेम पुजारी का ये नगमा दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, बोल सजाए नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन साहब का। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रात सुरमई को हमें देना होगा विराम। जल्द मिलने के वादे के साथ मैं श्रेयसी लेती हूं अब विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना

0: कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बाला सुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April 2026. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की सागर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में दिल एक ही सवाल दोहराता है, क्या ये धड़कनें सिर्फ मेरी हैं या इनमें तुम्हारा भी कोई राज बसता है। प्यार कभी पूछता नहीं, प्यार कभी पूछता नहीं, वो तो बस महसूस होता।

मेरे हम सफर, ये रातें गवाह हैं हमारे साथ की। चांद भी ठहर जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो। सफर लंबा हो या छोटा, सफर लंबा हो या छोटा, अगर साथ हो तुम तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। वादा रहा सनम, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। हर खुशी हर ख्वाब अब तुमसे ही जुड़ा है। चाहे वक्त बदले या हालात, चाहे वक्त बदले या हालात, ये मोहब्बत कभी कम ना होगी।

हमें कितनी हसरत थी इन राहों में हर मोड़ पर बस उनका ही इंतजार था, और जब वो सामने आए तो लगा जैसे किस्मत खुद मुस्कुरा उठी हो।

मुलाकात जैसी अधूरी दुआ का पूरा हो जाना, और वो पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए धड़कन में बस से जाते हैं।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही देर के लिए आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।

0: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April 2026. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है अब प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यार से गीत के साथ। गीत है फिल्म सफर से मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दिल तुझको दिया से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेश रोशन और संगीतकार भी राजेश रोशन।

अभी गीत आपने सुना सहरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रामलाल और गीतकार जो है वो है हसरत जयपुरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म उपहार से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से।

जिसे अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने, और गीतकार और संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार हजरत जयपुरी।

और छोड़ी जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं आपसे मिलूंगी 5:10 पर लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी, और आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को और कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये गीत है फिल्म सपने से और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है हिमा असर देसाई ने और मलाइसिया वासुदेरा ने। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार एआर रहमान। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held tomorrow. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 p.m. and will conclude by 5 p.m. According to the NEET's information bulletin, last entry to the examination center will be allowed till 1:30 p.m. The NEET UG is being conducted by National Testing Agency since 2019 for admission to the undergraduate medical education with the approval of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Education. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. The Government of India has appointed Rohit Jain as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India, according to an official notification released yesterday. Currently serving as Executive Director at the Central Bank, Jain will hold the post for a period of 3 years. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is embarking on an official visit to Jamaica, Suriname

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस प्यारे से भजन के साथ।

जीवन में कभी धूप है तो कभी छांव है, और उस धूप और छांव में हमें वो पल ढूंढना है जिसमें नए तराने छुपे हों, जिसमें जीवन के परेशानियां, जीवन की दुख तकलीफ से निकलने का तरीका छुपा हो।

आजकल की भागदौड़ में खुद को कभी खोना नहीं है, अपने सपनों से कभी समझौता भी नहीं करना है। नई सुबह में नए सपने, और जो सपने रह गए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है।